FM 103 MHz पर हम आकाश वन के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संबत 1948 की भाद्रपद मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 17 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

FM 103 MHz पर हम आकाश वन के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी।

0: और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के संसद सदस्य हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की यह सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी वे बातचीत करेंगे। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। जबलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ के स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है।
2: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। सितंबर माह के कृषि कार्य पर जानकारी दे रही हैं प्रतिमा वर्मा।
3: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, आज बातें सितंबर माह के मुख्य मुख्य कृषि कार्य की। सितंबर माह सब्जियां और बागवानी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कुछ खेतों में फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, गाजर, मूली सब्जियां लगी हुई हैं और कुछ में लगाने की तैयारी है। इस माह कुछ अन्य सब्जियां भी लगा सकते हैं। आलू जो जल्दी पकते हैं उसे बोया जाता है। देशी मटर, प्याज, मूली, गाजर, चुकंदर, सेम, सौंफ, देर से आने वाली गोभी, पालक की बुआई करते हैं, धनिया की बुआई करते हैं। किसान भाई, अगर हम बैंगन फसल की बात करें तो बैंगन यदि पाला से पौध की रक्षा हो सकती है तो सितंबर में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। विशेष स्थितियों में टमाटर सितंबर में बोया जाता है यदि पाले से बचाव संभव है। टमाटर में निराई गुड़ाई अधिक पैदावार के लिए बहुत जरूरी है। सूत्रकृमि की रोकथाम के लिए पूसा 120 किस्म लगाएं। किसान भाइयों, इस माह खरीफ की फसलें फूल, दूध और पकने की अवस्था में होती हैं और जायद फसलों के लिए उचित माह है। बरसीम फसल एक गुणकारी चारा फसल है। सितंबर में लगी फसल नवंबर से मई माह तक 4 से 6 कटाइयों में 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा देती है, जिसे पशु बड़े चाव से खाते हैं और अधिक दूध देते हैं। इसे हल्की खारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, धान में जल प्रबंध ठीक रखें और 2 इंच से अधिक गहरा पानी ना दें। सिंचाई के पानी की भी समय समय पर जांच करवाते रहें। सितंबर में पत्ता

0: टिड्डे और तना छेदक का आक्रमण होने की संभावना रहती है। इससे फसलों की सुरक्षा आवश्यक है। धान में ब्लास्ट रोग में पत्तियों पर आंख के आकार के धब्बे बनते हैं। यह रोग फसल के फुटाव के समय होता है। समय पर रोकथाम जरूरी है। मई और जून में बोए गए मक्का में भुट्टे पकने लग गए हैं और खड़ी फसल में भुट्टे तोड़कर सुखा लें ताकि दाने में 17% तक नमी कम हो जाए। तनों को पशुओं को हरे चारे के लिए प्रयोग करें। ग्रामीण भाइयों, गन्ना के लिए बसंतकालीन तथा मोटी फसल को गिरने से बचाने के लिए बंधाई पूरी कर लें। सितंबर में सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसकी रोकथाम जरूरी है। रत्ता रोग लगने की स्थिति में गन्ना बीज से लाल हो जाता है, ऐसी फसल को जल्दी काट लें और एक वर्ष उस खेत में गन्ना ना लगाएं। शरतकालीन फसल बीजने का समय सितंबर के आखिर से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक है। जी हाँ किसान भाइयों, बाजरा सितंबर में पकने की स्थिति में होता है और खेत में वर्षा का पानी ठहरना नहीं चाहिए। मूंगफली में फूल आने पर सिंचाई जरूर दें। जमीन गीली होने पर फलों से निकली सुई जिससे मूंगफली बनती है आसानी से जमीन में चली जाती है। कीड़ों और बीमारियों पर नजर रखें और समय पर इनका उपचार करें। किसान भाइयों, बरसीम चारे के लिए सर्वोत्तम फसल है जो कि नवंबर से मई तक चारे की कई कटाइयां देती है। बिजाई का उचित समय सितंबर के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर से पहले सप्ताह तक है। किसान भाइयों, सितंबर माह में सदाबहार पेड़ जैसे नींबू जाति के फल, आम, बेर, लीची, अमरूद लगा सकते हैं। बाग लगाने से पहले गड्ढे तैयार कर लें। गड्ढे के ऊपर की मिट्टी को बराबर सड़ी गली देसी खाद से मिलाकर और 2 किलोग्राम जिप्सम भी डालें। अमरूद की इलाहाबादी सफेदा, बनारसी सुरखा किस्मों को सितंबर में रोपा जा सकता है। नए बागों की नियमित सिंचाई करें। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें सितंबर माह के मुख्य मुख्य कृषि कार्य की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का। ये सुनते हैं कड़ी संख्या

दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवी भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान। समय हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आए सुनते हैं निर्मला तिवारी को। विषय है पौष्टिक भोजन और मानव स्वास्थ्य।

स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया। कोई आदमी तभी अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा सकता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य है। ऋषियों ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन यानी जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स और विटामिन पाए जाएं। और जब ऐसा होता है, संतुलित आहार मिलता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है तो फिर सभी प्रकार के कार्य करने की हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, अन्यथा मन बुझा बुझा सा रहता है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता, क्योंकि शरीर रोगों से ग्रसित होता है। शरीर में स्वस्थ पोषण की आवश्यकता बचपन से ही पड़ती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तभी उसे कुपोषण से बचाने के लिए माता को संतुलित पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जिससे आने वाला बच्चा स्वस्थ हो, हृष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ रहे।

माँ के गर्भ से ही बच्चे को उचित संतुलित भोजन दिया जाना चाहिए। माता को उचित संतुलित भोजन मिलेगा तो बच्चा अपने आप स्वस्थ रहेगा, और जब वह इस दुनिया में आ जाता है तो फिर उसे उचित आहार देने की आवश्यकता बचपन से ही पड़ जाती है। जो लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वो बच्चे आगे चलकर स्वस्थ रहते हैं। उनका शारीरिक विकास होता है तो मानसिक विकास भी होता है। वो स्वस्थ रहते हैं तो अच्छा सोचते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, पढ़ने लिखने में उन्हें ऊर्जा मिलती है और वो अच्छा करते हैं। इसके विपरीत जो कुपोषण का शिकार होते हैं वो बच्चे हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, उन्हें तरह तरह की बीमारियाँ घेर लेती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है और कई बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन का मिलना बहुत ही आवश्यक है। उचित पोषण होगा तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके लिए सरकार भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाती रहती है, लोगों को जागरूक करती है, उन तक उचित पौष्टिक आहार पहुंचाने का काम भी करती है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि वैसे लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। भागती दौड़ती जीवन शैली में वो भागते रहते हैं और खाने के नाम पर कुछ भी खाकर अपना पेट भर लेते हैं, खासकर फास्ट फूड, जो कि सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। इससे शरीर कमज़ोर होता जाता है और बाद में कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और एक बीमार व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, अवसाद से घिरा रहता है, वह अच्छा सोच नहीं पाता है। अच्छी सोच के लिए, अच्छे विचार के लिए मनुष्य का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। कई विद्वानों ने कहा है, संतों ने कहा है, स्वस्थ शरीर वह धन है, वह पूंजी है जो सबको नहीं मिलती है, और जिसे यह पूंजी मिल गई वह सचमुच में बहुत ही धनवान व्यक्ति है, क्योंकि स्वस्थ काया बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है। और इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता भी नहीं है। यदि हम अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, व्यवस्थित रखें, उचित खान पान को रखें, हमारे आसपास जो मौसमी फल पाए जाते हैं उसे हम ग्रहण करें, हमारे देश में कई तरह के अनाज पाए जाते हैं उसका सेवन हम करें, तो हमें सभी प्रकार के प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स प्राप्त हो जाएंगे। और इसके लिए हमारे आसपास जो भी फल होते हैं, मौसमी फल होते हैं, वो हमें लेना चाहिए, लेकिन लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे उनके शरीर में कई तरह के तत्वों की कमी हो जाती है और फिर विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो आइए हम लोगों को जागरूक करें, स्वयं भी अच्छे खान पान को अपनाएं और लोगों को भी इस दिशा में आगे लेकर जाएं, ताकि हमारा देश स्वस्थ रहे। क्योंकि जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे वह देश उन्नति पथ पर आगे बढ़ेगा, और इसके लिए हम सब मिलजुल कर कार्य करें।

0: अभी आप सुन रहे थे आराधना कार्यक्रम। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग और आंखों पर पड़ता दुष्प्रभाव, इस विषय पर भेंट वार्ता डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल से।
1: बात करें तो जमाना मोबाइल का है, हर समय हम मोबाइल के सहारे रहते हैं, सर्फिंग करते हैं और ज़्यादातर समय हमारा मोबाइल पर निकलता है। ज़्यादा समय तक यदि हम मोबाइल देखते हैं तो आँखों में बहुत सारी परेशानियाँ होना शुरू हो जाती है। और ख़ासकर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों में, जिन्हें मोबाइल की लत लगी हुई है, वो मोबाइल देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, उनमें भी आँखों की विकृतियाँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो लगातार स्क्रीन टाइमिंग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है और खासकर बच्चों पर हम किन किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन।

0: माथे में दर्द और भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
1: देखिए, एक बात तो है कि अभी के समय में बिना मोबाइल का आप कल्पना नहीं कर सकते, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए सम्मिलित है। लेकिन मोबाइल के साथ साथ इसकी जो खामियां हैं वो भी आपके सामने है, और हर घर में सभी लोग इससे परेशान हैं। इसका मुख्य कारण है आप आँख को बिना पलक झपकाए एक टक देखते हैं, उसके कारण कॉर्निया ड्राई होता है, और मेन कारण कॉर्निया ड्राई होना ही है बाकी आँखों के लक्षण का। तो अगर हम आँख को ड्राई होने से बचा सकते हैं तो फिर मोबाइल कोई हानि की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं बचा पाते हैं और लगातार स्क्रीन टाइम पौन घंटे एक घंटे या उससे अधिक होता है तो उसकी जो भी खामियां हैं उसे हम पाते हैं, देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शुरू में तो लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धुंधलापन बढ़ने लगता है। अगर हम उसका पावर टेस्ट करते हैं तो देखते हैं उसका विजन 6x6 नॉर्मल विजन है, लेकिन उसे शिकायत है कि हमें धुंधलापन हो रहा है। इसका अगर आप हिस्ट्री और लेंगे तो दो बातें मिलती हैं। एक तो मिलता है कि वह व्यक्ति या बच्चा मोबाइल का उपयोग अधिक कर रहा है, और दूसरा उसका खान पान प्रॉपर नहीं है। ये दोनों खामियां हैं, खान पान प्रॉपर नहीं होना और मोबाइल का देखना, ये दोनों उस आँख की परेशानी का मुख्य कारण है। और छोटे बच्चों में तो इसका और अधिक प्रभाव पड़ता है, और उसी कारण लगता है माँ बाप को कि आँख पे पावर आ गया है। और हमारी प्रैक्टिस में हम पाते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं दिखाने के लिए, उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब देखेंगे, चश्मा लिख देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक उसके लिए आवश्यक प्रिकॉशन नहीं लेगा या बच्चे नहीं लेंगे, तब तक उन्हें जितना आराम मिलना चाहिए वो नहीं आराम होगा। तब दो तीन बातें हैं, एक तो है एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन। कई बार जैसे बैंकिंग सर्विसेज में, ऑफिशियल में, आजकल मैक्सिमम लोग सब नेट से ही काम होता है, बैंक मोबाइल और लैपटॉप से ही काम होता है, तो ये प्रैक्टिकल है कि उन्हें काम करना है, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल है कि वो काम अगर लगातार कर रहे हैं बिना प्रिकॉशन लिए तो उनका लाइफ स्कैन, आई का लाइफ स्कैन काफ़ी हद तक कम जाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हर 45-50 मिनट में वो 2-5 मिनट गैप करें, उस गैप में आप स्क्रीन से अपने आप को हटाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप देहात में कहते हैं आँख मारना, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग। तो दैट मीन्स कि आप गेजिंग या टक एक टक ताकना, उसे आपको अवॉइड करना है। आप कोशिश करिए कि ब्लिंक करते रहिए बीच में, तो कॉर्निया ड्राई नहीं होगा और आपको आँख में पेन नहीं होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चों से हम पूछते हैं कि उसका विजन नॉर्मल है, उसके बाद भी दिख नहीं रहा है, तो अगला क्वेश्चन मुझे ये रहता है कि क्या खा के आए हो, तो उसके गार्जियन का भी हंसता है कि बच्चा भी हंसता है, और नहीं बोल पाता है तो माँ को देखता है क्या खाए हैं, नहीं पता है। तो जब और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, जब उसको ये समझाते हैं कि खाना आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना चश्मा टेस्ट करवाना, तब पाते हैं कि या तो चाय रोटी खा कर आया है, या पास्ता खा कर आया है, या फास्ट फूड खा कर आया है, और ये लगातार खाता रहता है। तो बीच में हमारी सलाह उन लोग की रहती है कि भाई ठीक है, तुम सब खाओ, मना नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी फल पसंद है उसको खाओ, जो भी सब्जियां पसंद है उसको खाओ, और अगर नहीं पसंद है तो माँ को बोलते हैं कि भैया गाजर टमाटर और इस टाइप का जो भी है उसको पीस के पिला दो बच्चे को, कोई उपाय नहीं है उसका। और कई बार ये नौबत

0: इन्हें काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। आज के समय काउंसलिंग ना डॉक्टर के पास समय है ना माँ बाप के पास समय है। उन्हें भी लगता है कि आसानी से मोबाइल दे दो, बच्चा अपना इंगेज हो गया, अब अपना काम करते रहो। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जो 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपको दिखाई पड़ने लगता है। हमारी अपनी मान्यता है और अनुभव है कि सारे ऑफिशियल्स स्टाफ से काम चाहते हैं। आप अपना काम करते रहिए, अगर 5 मिनट 7 मिनट जो करते हैं ना, कहीं कोई पूछने नहीं जा रहा है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आप काम नहीं करते हैं, फाकी मारते हैं। तो दूसरा कि आप अगर ब्रेक करना है और नहीं मिल रहा है, थोड़ा बीच में पानी पी लें, कभी काम टॉयलेट चल जाएँ, बाथरूम चल जाएँ, एक आध अपने दोस्त से 1 मिनट बात कर लें, इस तरह करके हम टाइम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और पाते हैं कि अभी नए युग में, चूँकि सरकारी जॉब बहुत कम है, लेकिन नया जनरेशन जॉब के पीछे पागल है। हम देखते हैं कि 28 साल, 30 साल, 32 साल हो गया है, लड़कियां लड़के बहुत क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? कंप्यूटर से तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं? तो मोबाइल पे, क्यों? अधिकांश घरों में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है। तब पूछते हैं फिर नेक्स्ट रात को क्या, कैसे करती हो? सो के पढ़ती हो? सो के पढ़ते हो? तो हाँ सर। तो उस हालत में उनके लिए सलाह होता है कि तुम कोशिश करो एक टाइम मेंटेन करने का, फिक्स टाइम पे सो, फिक्स टाइम पे उठो, और सो कर नहीं बैठकर मोबाइल देखो बीच में इंटरप्शन। तो इस तरह करें, कोशिश करते हैं उन लोग कंसोल करने का, कोशिश समझाने का, अधिकांश केस में रिजल्ट मिलता है। ऐसे मरीज का दो शिकायत होती है, एक होता है आँख में दर्द, दूसरा होता है माथे में दर्द। और जब हम स्क्रीन टाइम कम करते हैं, चेंज करते हैं, इनकी शिकायत अपने आप ठीक हो जाती है। प्लस कुछ लोग का जेन्युइनली ड्राई आई सिंड्रोम होता है, जिसमें उसका आंसू कम बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बाहर से आंसू जोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल टीयर, और वो हम डालते हैं जिससे कॉर्निया हमारा वेट भींगा हुआ रहे। इस तरह हम मरीज को समझाते हैं, कंप्लेन करते हैं, दूर करते हैं उसकी।
1: जी डॉक्टर साहब, प्राय लोग सोने के समय रात में मोबाइल देखते हैं, और खासकर अंधेरे में मोबाइल देखते हैं रातों में, ये कितना नुकसान पहुंचाता है हमारे?
0: ये बहुत नुकसानदेह है। आजकल आप देखोगे कि पेपर में या मीडिया में भी हेल्थ संबंधी जो आता है प्रोग्राम, उसमें बताता है कि रात को आप मोबाइल एकदम मत देखो, अंधेरा में देखने की बात ही नहीं है, उसके बदले आप म्यूजिक सुना करो। ये रात को देखने का ही कारण है कि अधिकांश लोग आजकल डिस्निया या एपनिया, लॉस ऑफ स्लीप से परेशान है। मैक्सिमम लोग को अच्छी नींद नहीं आती।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए समाचारों के लिए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 8.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीति सम्बद्ध गतिरोधात् नीति सम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यद् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः सङ्घर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अथ च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तर भारत पर्यन्तं शान्तिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: निरन्तर क्रियमाणानाम् आलोचनानाम् प्रत्युत्तर रूपेण प्रधानमन्त्री सुदृढार्थिक तथ्याङ्कान् प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन् इत्येतस्य निर्यातः अधुना 15.2 लक्ष कोटि रूप्यकाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालय विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रान् अतिविशिष्टान् वर्णयन् तान् ओजीज इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्व वित्त मन्त्री अरुण जेटली अपि एसआरसीसी महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रः आसीत्। असौ एतदपि

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों द्वारा बनाई गई कंपनियां भी विश्व का नेतृत्व कर सकती हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो कि आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: श्री शाह 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी।

0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह चार दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वीडियो अप्रैल 2024 का है जब दुबई हवाई अड्डे पर तेज बारिश हुई थी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर में सीतापुरा स्थित आयन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर नीट पीजी की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्यों को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05
2: रेड बाय निशित कुमार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अर्ज्ड यंग इंडियंस टू ड्रीम इवन बिगर देन प्रीवियस जनरेशंस एंड बिल्ड ग्लोबल कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड लीगल फर्म्स कैपेबल ऑफ लीडिंग द वर्ल्ड। Mr. Modi said today, Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world? Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce at Delhi University last evening. Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy.
3: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
2: Presenting hard economic data to counter persistent critics, Prime Minister detailed that between April and June, electricity production increased by 9%. Mr. Modi said overall vehicle sales surged by over 20% during the period, driven by a 20% growth in two-wheelers and nearly 30% in three-wheelers. He stressed that an 8% increase in steel and cement consumption proves that construction, housing and commercial activity are rapidly expanding. Mr. Modi shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral Devendra Kumar Joshi, retired, who was serving as Lieutenant Governor of the islands since October 2017. Dr. Sharma is presently a Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh and has also served as Deputy Chief Minister of the state. More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural IBRICS summit on the sidelines. of the BRICS summit in New Delhi on the 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. Discussions are also expected on linking national fast payment systems such as India's Unified Payments Interface UPI and Brazil's PIX, along with interoperability between central bank digital currencies. Union Home Minister Amit Shah arrived in Goa last night on a three-day visit, during which he will chair the 28th meeting of the Western Zonal Council. Today, he is scheduled to chair a Home Minister meeting, address a press conference and inaugurate the BJP's new state office. We have more details in this report.
4: Amit Shah will begin his engagements today with a meeting to review important matters related to Goa. He will then address a press conference before inaugurating BJP's newly constructed state office, Atal Bhavan. Mr. Shah will also meet party's state core committee during the day. Tomorrow, his engagements include the Western Zonal Council meeting and the presentation of the President's police colour to Goa police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Parji.
2: Russian President Vladimir Putin met with U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner at the Kremlin yesterday. Russian President Vladimir Putin held more than 3 hours of talks with U.S. envoys in an effort to revive stalled efforts to end the Russia-Ukraine conflict. The meeting came amid continued aerial attacks between Russia and Ukraine. During the talks, President Putin ordered a three-day pause in Russian strikes on Kyiv, while Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Ukraine is ready to hold strikes on Moscow until Monday. And in women's cricket, India defeated Pakistan by 7 wickets in a one-sided Women's Asia Cup T20 match in Dubai. Pakistan were bowled out for just 55 in 18.1 overs, their lowest ever total in T20 internationals. Young spinners Sri Charani and Prema Rawat took 3 wickets each, while Deepti Sharma claimed 2. India chased down the target in 8.4 overs, with captain Harmanpreet Kaur remaining unbeaten on 18. And with that, we end this news bulletin.
5: समाचारों के बाद स्वागत है आपका। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समय हो चुका है कार्यक्रम विवरण का।

अब से बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। 7:30 का समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग का। सुबह के 8 बजे दिल्ली केंद्र से ही समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर पुराने फिल्मी गीतों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। सुबह के 9 बजे आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम यादों की झरोखों से। संकलन में वाचन स्वर होगा सैकत चट्टोपाध्याय का। संयोजन में प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। 9:45 पर फिल्म गीतों के कार्यक्रम के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। सुबह के 10 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से हम जुड़ेंगे उसे हिंदी समाचार रिले होंगे। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर हमारे रांची केंद्र से शाम 5:30 पुनः आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम विवरण। 5:35 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा युवावाणी। चर्चा होगी स्वच्छ वातावरण क्यों जरूरी, स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और वार्ता होगी नीता चौहान की नेत्रदान से दृष्टिदान संभव। शाम 6 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे। 6:30 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम जननी। शाम 7 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी श्रोताओं की वाणी। संकलन में वाचन स्वर होगा संजय कुमार सिन्हा एवं संतोष कुमार सिन्हा। संयोजन में प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। रात्रि 7:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा महुआ। रात्रि 8 बजे फिल्म गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे चित्रपट से। रात्रि 8:30 गीत संगीत कार्यक्रम। 8:45 पर हम दिल्ली केंद्र आपको लिए चलेंगे समाचारों के लिए। रात्रि 9:30 पर विविध भारती

कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंबई के अंदर से रात्रि 10 बजे आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम होगा आकाशवाणी स्वर्णिम यात्रा 2026। संकलन एवं वाचन स्वर होगा संतोष कुमार एवं प्रतिमा वर्मा की, प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

बाल सभा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, अभी अभी कल शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस हम सभी ने मनाया और हम सभी को यह पता है कि हमारे जीवन में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है और हमारे जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने में शिक्षा का क्या महत्व है। सचमुच बच्चों, शिक्षा मानव जीवन का सबसे मूल्यवान और शक्तिशाली आधार है जो व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करती है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाती है। शिक्षा से हमारे ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाती है। शिक्षित व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर लेता है। शिक्षा हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। यह बेहतर रोजगार और करियर के नए अवसर खोलती है। शिक्षा से सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह समाज में समानता और भाईचारा बढ़ाती है। शिक्षित समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। शिक्षा हमें अच्छे संस्कार, शिष्टाचार और मानवीय मूल्य सिखाती है। यह हमारे सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता को भी बढ़ाती है। शिक्षा गरीबी और अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए भी जरूरी है। शिक्षा तकनीकी और आधुनिक दुनिया के साथ हमें चलना सिखाती है। यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। शिक्षा से स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़े बेहतर फैसले लिए जाते हैं। यह जीवन भर सीखने और निरंतर आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का समान अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा ही एक उज्जवल और शांतिपूर्ण भविष्य की कुंजी है। लेकिन शिक्षा हमें कभी यह नहीं सिखाती कि हमें आपस में बंटना है, हमें आपस में वैमनस्य और कटुता रखनी है, बल्कि शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हम सभी मिलजुल कर रहें तो हमारा जीवन, हमारा देश, हमारा आसपास का वातावरण बिल्कुल सुंदर और खूबसूरत बन सकता है। छोटी छोटी बातों में हम सभी को बट

0: अक्षिता बहुत ही प्रतिभावान लड़की थी। वह सभी विषय में अच्छी थी, परंतु गणित में कमज़ोर थी। इस कारण उसकी रिपोर्ट खराब रहती थी। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो बहुत उदास थी। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? माँ ने बड़े प्यार से अक्षिता के सिर पर हाथ फेरा। माँ, क्या मैं गणित का सवाल हल नहीं कर सकती? क्या हुआ, आज इतने गुस्से में क्यों है मेरी रानी बेटी? माँ ने प्यार जताते हुए कहा। प्यार पाते ही अक्षिता फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ कक्षा में मुझे सब फिसड्डी कहते हैं। अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा है, मुझसे गणित के सवाल हल नहीं होते, इस वजह से मुझे खराब अंक मिलते हैं। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ जानती थी कि उसकी बेटी परेशान है, उससे उसकी परेशानी का हल तो सुझाना ही होगा। उन्होंने सही करती तो उसकी प्रशंसा भी करती। इतना ही नहीं, जब वे देखती कि अक्षिता गणित के सवाल कर रही है तो उसके साथ साथ स्वयं भी सवाल हल। अक्षिता की सफलता की आशय मजबूत हो गई। जिस गणित के सवाल से वह दूर भागती थी, वही गणित के सवाल उससे अब अच्छे लगने लगे। वह अपने प्रयासों से बहुत प्रसन्न थी। उसने गणित के सवालों का अभ्यास निरंतर जारी रखा। कुछ दिन बाद वार्षिक परीक्षा आई। सभी बच्चों ने खूब मेहनत की। देखते देखते वार्षिक परीक्षा के परिणाम का दिन आ गया। सभी बच्चे अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। ठीक 10 बजे मुखिया अतिथि का आगमन हुआ। बच्चे उनके सम्मान में खड़े हुए। प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। प्रधानाचार्य जी ने कुछ देर बाद परीक्षा परिणामों की घोषणा की। अक्षिता ने पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुख्य अतिथि ने उसे शील्ड प्रदान की। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पुरस्कार पाकर अक्षिता की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह बहुत खुश थी। सभी लोग अक्षिता की प्रशंसा करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अभ्यास पर एक श्लोक भी है। करत करत अभ्यास के जयमति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्प परत निशान। जिसका अर्थ है, किसी भी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें सफलता अवश्य मिलती है। जैसे कि कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी जब कुएं में बार बार डाली व खींची जाती है तो उससे वहां पर रखे गए पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं।
1: आपने बच्चों के ही मुख से सुना वंदना गीत मैं भोला ठोर के साथियों से, और अभी आप कहानी सुन रहे थे आराध्या लहर से। उम्मीद है बच्चों आपको हमारा यह कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि आपको हमने शिक्षा से संबंधित जानकारी दी, खूबसूरत सा गीत भी सुनवाया और वंदना गीत, और आपने आराध्या लाठ की कहानी भी सुनी। तो इसके साथ ही अब कार्यक्रम का समय भी यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते यानी अगले रविवार हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दी, नमस्कार। बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम

0: कीर्तिवर्धन सिंह चार दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट। संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
5: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप

0: में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
1: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमेरिका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमेरिका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोके और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेश

0: And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
3: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से हुआ आकस्मिक निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता 15 सितंबर तक मतदाता सूची में करा सकते हैं संशोधन। SIR के तहत तैयार मतदाता सूची को रखा जाएगा स्थायी अभिलेख के रूप में। रांची नगर निगम ने सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरू। पहले चरण में जोड़ा गया 5 भवनों को। रांची मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा राज्य के 16 जिलों में आज बादल छाए रहने और बारिश का अलर्ट किया गया। और शहीद एतवा उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट में SK ब्रदर्स ने जय मसीह गिरजा टोली लोयो को ट्राईब्रेकर में 5-3 से हराकर खिताब किया अपने नाम। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया। मंत्री के निधन की खबर से गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में शोक की लहर है और बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता तथा शुभचिंतक अस्पताल पहुंच रहे हैं। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के अनुसार मंत्री के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पहले झामुमो जिला कार्यालय और फिर उत्सव उपवन में रखा जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदेव्य कुमार सोनू के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया है। गिरिडीह में राजकीय सम्मान के साथ राज्य के शिक्षा मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गिरिडीह DC रामनिवास यादव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम स्थानांतरण और विवरण सुधार के लिए फॉर्म 8 तथा आपत्ति या नाम विलोपन के लिए फॉर्म 7 जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है। उन्होंने साहिबगंज के बरहड़वा में सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम तथा विवरण की
5: आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि है। किसी का नाम SAR में दर्ज करना है, तो किसी के ऊपर में आपत्ति है, आपका बूथ में परिवर्तन चाहिए, आपका नाम में कोई परिवर्तन चाहिए, कुछ सुधार करना है, आपका फॉर्म 8 भराना है। फॉर्म 6, 7, 8 जरूर भरा दीजिए ताकि रोल में नाम आना बहुत महत्वपूर्ण है।
4: गिरिडीह के बगोदर में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पर भाकपा माले के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सत्यापन कैंप प्रखंड कार्यालय के बजाय उनके संबंधित पंचायतों में ही आयोजित किए जाएं। वहीं गिरिडीह DC रामनिवास यादव ने सरिया में BLO के साथ बैठक कर सभी पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का निर्देश दिया है।
6: 18 वर्ष जिनका उम्र अधिक हो गया 1 अक्टूबर 2026 को, उन सभी का हम लोग फॉर्म 6 मंगवा रहे हैं। उनको आ रही कुछ भी समस्या, प्रॉब्लम, अड़चन को दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ SIR का भी हम लोगों ने यहाँ देखा, नोटिस और क्लेम ऑब्जेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है, सुनवाई

0: पंचायत बात चल रही है, सभी लोग एडिशनल एआरओ लोग कर रहा है, उसमें क्या समस्या आ रही है, डॉक्यूमेंट्स बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, उसकी भी हम लोगों ने सुना।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अल्बर्ट एक्का चौक पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन आस्था, कर्मयोग और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने दही हांडी प्रतियोगिता को टीम भावना, सहयोग और संतुलन का प्रतीक बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। रांची नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है, जिसके तहत पहले चरण में 5 भवनों को जोड़ा गया है। आज से बुकिंग शुरू होगी। शहर के इंदिरा गांधी चौक, ईस्ट जेल रोड, न्यू पुंदाग, इलासिया कम्युनिटी हॉल और ग्वाला टोली स्थित भवनों को स्वर्ण रेखा और पलाश श्रेणी में बांटकर क्रमशः 25,000 रुपये और 15,000 रुपये जीएसटी के साथ बुकिंग दर तय की गई है। साथ में 5,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा होगी। नागरिक नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि जल्द ही शेष 11 भवनों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में बुंडू में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान विभिन्न सामाजिक और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीना सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम चला, उसके लिए कार्यकर्ता के बीच एक कार्यशाला था, क्या क्या कार्यक्रम है उन सारे चीजों के बारे में, ताकि कार्यक्रम जन जन तक पहुँच सके।
1: राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितता, पेपर लीक, ओएमआर लीक, लेन देन और सेटिंग के आरोपों को लेकर आंदोलन करने वाले छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग के संबंध में कल मुख्यमंत्री सचिवालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों पर दर्ज मामलों को तत्काल रद्द करने और आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ कथित मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी दूर कराने और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कल सिमडेगा के बानों में छात्रों से मुलाकात की और कहा कि सरकार भर्ती व्यवस्था

शहीद एतवा उरांव स्मारक न्यास द्वारा रांची में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के फाइनल में एसके ब्रदर्स ने जय मसीह गिरिजा टोली लोयो को ट्राई बेकर में 5-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उद्घाटन किया। विजेता एसके ब्रदर्स को मुखिया सोहंती एक्का ने 80,000 रूपये नकद व ट्रॉफी और उप विजेता जय मसीह गिरिजा टोली लोयो को विमला देवी ने 50,000 रूपये नकद व ट्रॉफी देकर सम्मान किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने अलग अलग खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने रांची में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति का आयोजित दही हांडी प्रतियोगिता की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, जीएसटी संग्रह में देश से आगे झारखंड, फिर भी राज्य को नुकसान। दैनिक जागरण का शीर्षक है जेएनजी से बोले पीएम, बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने में जान लगा दें। और हिंदुस्तान ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से हुआ आकस्मिक निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, मतदाता 15 सितंबर तक मतदाता सूची में करा सकते हैं संशोधन। एसआईआर के तहत तैयार मतदाता सूची को रखा जाएगा स्थायी अभिलेख के रूप में। रांची नगर निगम ने सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरू, पहले चरण में जोड़ा गया है 5 भवनों को। रांची मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा राज्य के 16 जिलों में आज बादल छाए रहने और बारिश का अलर्ट किया गया। और शहीद एतवा उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट में एसके ब्रदर्स ने जय मसीह गिरिजा टोली लोयो को ट्राई बेकर में 5-3 से हराकर खिताब किया अपने नाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

समाचारों के बाद स्वागत है आपका। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। अपने कार्यक्रमों के साथ उपस्थित हैं, हम आपकी सेवा में पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक यश जौहर, जिनका है आज जन्मदिवस, उन्हें हम याद करते हुए उनके गीतों को सुनवाएंगे। उन्होंने

ये कई हिट फिल्में दी थीं, कल हो न हो, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, डुप्लीकेट, गुमराह, अग्निपथ जैसी तमाम कई फिल्में हैं जिनके लिए वे हमेशा याद किए जाते रहे हैं। जन्म हुआ था 6 सितंबर 1929 को पंजाब में। यश जौहर ने अपने करियर की शुरुआत 1950 और 1960 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और मैनेजमेंट से की थी। उन्होंने मुझे जीने दो और देवानंद की प्रसिद्ध फिल्म गाइड जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना 1976 में की गई थी और उसके जरिए कई फिल्में बनी जो मील का पत्थर साबित हुई। दोस्ताना फिल्म का यह गीत हम आपको आइए सुनवाते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, हमारा और आपका दोस्ताना भी यूं ही कायम रहे। आकाशवाणी डाल्टनगंज की 34वीं स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए। आज 34वीं स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र के कार्यक्रमों से जुड़कर आप हमारे हम सफ़र बन चुके हैं और हमारी और आपकी यह दोस्ती यूं ही सदा कायम रहे, यही कामना है हमारी। गीत गुंजन कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपको हम सुनवा रहे हैं यश जौहर साहब की फिल्मों के गीत, जिनका है आज जन्मदिन। उनकी एक फिल्म थी कुछ कुछ होता है, सुपर डुपर हिट रही थी और गाने भी सभी बेहद कमाल के थे। आइए आपको उसी फिल्म का यह गीत आपको सुनवाते हैं।

यश जौहर साहब ने अपने करियर की शुरुआत 1950 और 1960 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और मैनेजमेंट से की थी। उन्होंने मुझे जीने दो और देवानंद की प्रसिद्ध फिल्म गाइड, जो कि 1965 में आई थी, इन महत्वपूर्ण फिल्मों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना भी इन्होंने की थी 1976 में, और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले कई बेहतरीन फिल्में दीं यश जौहर साहब ने। इन्हें हम आज भी याद करते हैं इनके योगदान के लिए। यश जौहर, जिनका कि निधन हुआ 26 जून 2004 को, आज उनके जन्मदिवस पर हम आपको सुनवा रहे हैं उनके फिल्मों के गीत। उन्हें हिंदी सिनेमा में अपनी शानदार मेहमान नवाजी, पारिवारिक मूल्यों और भव्य सेटों वाली फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाता है और किया जाता रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। श्रोताओं, आज है आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र की 34वीं स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और आकाशवाणी डाल्टनगंज की 34वीं स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आपके लिए, यादों की झरोखे सी। संकला निर्वाचन स्वर है सैकत चट्टोपाध्याय का, संयोजन में प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। आइए सुनते हैं यादों की झरोखे सी।

भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, क्योंकि आज का दिन भी है विशेष। आज है 6 सितंबर, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र का स्थापना दिवस, और इस विशेष कार्यक्रम में मैं चलूंगा साथ साथ इस सफर में आपका दोस्त, आपका होस्ट सैकर चैटर्जी। ये आकाशवाणी डाल्टनगंज है, कोयल नदी की कलकल धारा, पलामू की ऐतिहासिक किलों की मूक गवाही, और बेतला पलामू टाइगर रिजर्व के सघन जंगलों से छन कर आती हवाओं के बीच जब ये आवाज़ आपके घरों, आंगनों और खेत खलिहानों तक पहुंचती है, तो ये केवल सुनना का आदान प्रदान ही नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मीय रिश्ता बन जाती है। आज 6 सितंबर है, आकाशवाणी डाल्टनगंज का स्थापना दिवस। 3 दशकों से भी अधिक का ये सफर इस पूरे अंचल की आशाओं, संघर्षों, लोक संस्कृति और विकास का जीवंत दस्तावेज है। आइए दोस्तों, भाइयों बहनों, यादों के झरोखे से पलटते हैं इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को जिसने पलामू के संचार जगत में एक नई सुबह की नींव रखी थी। तारीख थी 6 सितंबर 1993।

0: यादों के पन्नों को पलटते हुए आइए सबसे पहले चलते हैं जेबियर कंडूलना सर के पास, जो वर्तमान में आकाशवाणी रांची के सहायक निदेशक हैं और डाल्टनगंज केंद्र से उनका पुराना नाता रहा है।
1: मैं सहायक निदेशक आकाशवाणी रांची आप लोगों को आकाशवाणी डाल्टनगंज की स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। मैं जब आकाशवाणी डाल्टनगंज में 2015 से 2018 तक था, उस समय स्टूडियो में पहली बार उरांव लोकगीत मुंडारी लोकगीतों का रिकॉर्डिंग कर प्रसारण किया गया एवं पहली बार ब्रिज्य जनजाति के लोकगीत नेतरहाट के तराई से रिकॉर्डिंग कर लाया गया एवं आकाशवाणी डाल्टनगंज से प्रसारण किया गया। यह एक जनजातियों के गीतों को संरक्षित करने की पहल एवं सफलता थी।
2: यह ब्रिजिया कर्मा लोकगीत है। इस कर्मा गीत में ब्रिजिया समुदाय के जीवन उनके रहन सहन का जिक्र है। वस्तुतः हल बैल खेती बारी एवं जोत की जमीन नहीं होने के बावजूद यह समुदाय अपने परिश्रम के बल पर लकड़ी अथवा टाट पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर जंगली खेर से छत बनाकर घर निर्माण करता है और गुजर बसर करता है।

दोस्तों बात लोकगीतों की करे तो आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से उस वक्त मगही भोजपुरी लोकगीतों की भी खूब रिकॉर्डिंग हुई, जो यहाँ के श्रोताओं द्वारा काफी पसंद किया गया और सीमाओं को लांघता हुआ ये गया तक भी जा पहुंचा और वहां के श्रोताओं ने भी इसे खूब सराहा, प्यार दिया। ऐसे ही एक गीतों की रिकॉर्डिंग हुई थी आकाशवाणी के डाल्टनगंज स्टूडियो में। कलाकार थी रंजना वर्मा और उनके साथ थे दिग्गज लोकगीत गायक और म्यूजिक डायरेक्टर विनोद सिन्हा जी, और उनके साथ संगत कलाकार के रूप में भी राम श्याम बंधु और अन्य संगीतकार मौजूद थे। आइए सुनते हैं उस वक्त आकाशवाणी के डाल्टनगंज स्टूडियो में रिकॉर्ड की हुई ये खूबसूरत लोकगीत।

भाइयों बहनों, आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र के स्टूडियो में सिर्फ लोकगीत गायकों की ही रिकॉर्डिंग नहीं हुई, बल्कि एक से एक दिग्गज वाद्य यंत्र कलाकारों की भी रिकॉर्डिंग हुई। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं पलामू लोक कला मंच के अध्यक्ष प्रसिद्ध तबला वादक शिशिर शुक्ला द्वारा बजाए गए इस शानदार तबला वादन के टुकड़े को।

भाइयों बहनों, पलामू, गढ़वा और लातेहार की समृद्ध माटी को अपनी पहचान और अभिव्यक्ति देने के लिए एक ऐतिहासिक समारोह का आयोजन हुआ। इस केंद्र का औपचारिक उद्घाटन असम के पूर्व राज्यपाल, पलामू के धरती के लाल क्षेत्र के वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ था। दिन था 6 सितंबर 1993। समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कामाख्या प्रसाद सिंह देव। इस गौरवशाली क्षण के गवाह बने थे पलामू के तत्कालीन सांसद रामदेव राम सहित कई गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, पत्रकार और कला प्रेमी। मंच से जब औपचारिक रूप से आकाशवाणी डाल्टनगंज की शुरू होने की घोषणा हुई तो उपस्थित जनसमूह की तालियों की गूंज ने यह भरोसा दिलाया कि अब पलामू प्रमंडल की अपनी आवाज होगी, अपना एक मंच होगा। 6 सितंबर 1993 को रोपा गया वह नन्हा पौधा आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। आकाशवाणी डाल्टनगंज की सबसे बड़ी ताकत रही है अपनी जड़ों, अपनी माटी से निरंतर जुड़ाव। इस केंद्र ने मगही, भोजपुरी, नागपुरी और जनजातीय समाज की कुड़ुक व बिरहरों बोलियों को सम्मान के साथ माइक्रोफोन तक पहुंचाया। दूर दराज के गांवों में जाने जाने वाले पारंपरिक चैता, कजरी, सोहर, झूमर और कर्मा धुरिया गीतों को रिकॉर्ड कर आकाशवाणी ने लुप्त होती लोक परंपराओं को नवजीवन दिया। दोस्तों, हम जब बात करते हैं लोक कलाकारों की, लोक गीतों की, तो इस कड़ी में उस समय एक खूबसूरत लम्हा जुड़ गया जब पलामू के मिट्टी से उपजी गायिका नीलम सहाय इस केंद्र में पदाधिकारी के रूप में अपना योगदान दिया और केंद्र अधीक्षक तक जा पहुंची। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई लोक कलाकारों को ढूंढ निकाला और आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें एक मंच दिया। वो खुद भी बहुत खूबसूरत लोक गीतों का रिकॉर्डिंग करती रही। लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आया कि एक सड़क हादसे में हमने उन्हें खो दिया। आज आकाशवाणी के स्थापना दिवस के अवसर पर हम उन्हें याद करते हैं और उन्हें याद करते हुए सुनते हैं उनकी आवाज में आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्टूडियो में रिकॉर्ड की हुई ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, भाइयों बहनों, आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र को आगे बढ़ाने में यहाँ मौजूद यहाँ पदस्थापित महिला पदाधिकारियों का भी काफी योगदान रहा। इसी कड़ी में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं देवी राय मैम से कि वो आज भी आकाशवाणी डाल्टनगंज को याद करते हुए क्या कहती हैं।
1: नमस्कार, मैं देवी रॉय आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं डाल्टनगंज आकाशवाणी में बहुत साल पहले, जैसे 2002 से 2005 तक मैं थी, और उस समय का मतलब जो माहौल था स्टेशन का वो बहुत ही अच्छा था। और सबसे अच्छा हमको लगता था वहाँ के जो कैजुअल असाइनीज थे उनके कार्य कुशलता और ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण। एक से एक अच्छे कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किए और कुछ कार्यक्रमों में मुझे भी भाग लेने का सौभाग्य हुआ था, तो वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं। और जहाँ तक डाल्टनगंज आकाशवाणी का सवाल है, इसके आसपास इतने सारे दर्शनीय स्थल हैं कि उन पर भी हम लोगों ने कई रूपक बनाए थे। एक तो मुझे याद है कि हम लोग बेतला नेशनल पार्क पर बनाए थे, जो सैकत आपने ही बनाया था और वो बहुत अच्छा लगा था। और दो सीरीज हम लोगों ने बनाया था, एक है कोयल की धारा, यानी डाल्टनगंज के आसपास जो कोयल नदी है उस नदी के किनारे के जीवन शैली और जो उल्लेखनीय स्थल स्थित है उस पर ये था। और एक और था धारावाहिक जो था पलामू के किले, उसमें भी हम लोग कई पुराने किले लिए थे, जैसे पलामू के अंदर, पलामू बेतला फॉरेस्ट के अंदर जो पलामू किला है वो भी था, रंका का किला था। इस तरह से हमारा आकाशवाणी डाल्टनगंज का सफर बहुत ही यादगार था और बहुत ही अच्छा था।
0: भाइयों बहनों, आइए इसी कड़ी में हम याद कर लेते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में पदस्थापित महिला पदाधिकारी अनीता तिर्की मैम को भी।
2: आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र से जुड़े सारे लोगों और श्रोताओं को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। हम सब मिलकर आकाशवाणी डाल्टनगंज की इस परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें और इसे एक नई पहचान दें। मैं अनीता तिर्की, कार्यक्रम अधिशासी, कार्यक्रम प्रमुख के रूप में वर्तमान में आकाशवाणी क्योंझर, जो कि उड़ीसा में है, पोस्टेड हूँ। मैं जब 2018 से 2021 तक आकाशवाणी डाल्टनगंज में पदस्थापित थी, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, कलाकार बहुत अच्छे अच्छे थे, ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था, लोग बहुत सहयोग करते थे। आकाशवाणी आज YouTube, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहा है, जिस पर हम सभी गर्व कर सकते हैं। आज भी आकाशवाणी से मिली प्रतिष्ठा और पहचान का जवाब नहीं।
0: महिला पदाधिकारियों में मेरी क्लौडिया सोरेंग का कार्यकाल भी स्वर्णिम रहा।
3: मैं मेरी क्लौडिया सोरेंग, पूर्व कार्यक्रम अधिशासी एवं कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी डाल्टनगंज, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस पर आप सबों को बधाई। 2019 से 2023 जनवरी तक मेरा कार्यकाल रहा। उस दौरान आकाशवाणी डाल्टनगंज में जो अनुभव हुआ वो पूरी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। कल्चर है वो बड़ा रिच है, इससे परिचय हुआ और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जीवन में बहुत कुछ सिखा गई। बहुत सारा ऐसा अनुभव है जो शायद आकाशवाणी के दूसरे केंद्रों पर शायद नहीं मिलता। कुछ कार्यक्रम कोरोना के दौरान बने, जिनकी चूँकि तब तक प्लेटफॉर्म आ गया था, AIR ओन न्यूज़ ऑन AIR, ये ऐप आ गया था, तो देश विदेशों तक हमारे कार्यक्रमों की पहुंच रही। एक बहुत ही यादगार क्षण है जब अमेरिका से एक पलामू वासी ने, मतलब बॉर्डर वाले एरिया से जो बिलोंग करते हैं अमेरिका से, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मैंने आपका कार्यक्रम सुना, वो हमारे वीर शहीदों को समर्पित था। तो उस कार्यक्रम के लिए विदेश से प्रशंसा मिलना ये एक उपलब्धि है, और इसके लिए आकाशवाणी डाल्टनगंज के हर व्यक्ति इसके लिए बधाई का पात्र है।
0: दोस्तों, पदाधिकारियों की बात करें तो गिरेंद्र प्रसाद ऐसे केंद्र निदेशक थे जिन्होंने पत्रकार जी की डायरी कार्यक्रम चलाया। पत्रकार जी के रूप में पत्रकार रामेश्वरम ने इस तरह से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कि वो जन जन की डायरी बनकर रह गई। गनौरी राम जब आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में योगदान दिया तो उन्होंने कई कार्यक्रम चलाए, खासकर उनके द्वारा निर्मित चला गांव की ओर कार्यक्रम जन जन तक प्रसिद्धि लाभ की। अनिल किशोर सहाय ने भी अपने कार्यकाल में कई उम्दा रिकॉर्डिंग किए। इसी तरह से मनोज कुमार, संजीव कुमार लाल, आत्मेश्वर झा, टी के नंदी ऐसे पदाधिकारी रहे जो यहां के कर्मचारियों के साथ मिलकर उम्दा कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और आकाशवाणी की आवाज को आप श्रोताओं तक पहुंचाया। इसी कड़ी में दोस्तों हम जिक्र करेंगे डॉक्टर अभ्रु चौधरी की, जिन्होंने 2 बार यहाँ कार्यक्रम प्रमुख के रूप में अपना योगदान दिया।
4: डाल्टनगंज में मैं लगभग 2 पोस्टिंग थी मेरी। मैं 2005 में था और उसके बाद मैं कुछ एक पोस्टिंग एक ट्रेनिंग और मेरा 2005 से रहा, दूसरी पोस्टिंग मेरी रही 2013 से मैं रहा। और इस दौरान काफ़ी अच्छा अनुभव मेरे डाल्टनगंज का केंद्र का रहा है। लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है और पूरा पूरा इलाका नेतरहाट रहा, महुआ डांड, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा, जपला, हुसैनाबाद जिसको कहते हैं, मैंने पूरा इलाका का कार्यक्रम किया है। सिर्फ स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो के बाहर में भी किया है। स्टूडियो में अगर बोला जाए तो मैं काफ़ी कार्यक्रम किए हैं। उसके बाद उस कार्यक्रम के तहत मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जो था रूबरू कार्यक्रम, जिसमें वहाँ के MP, MLA, मिनिस्टर, इनका 1 घंटे का मैंने कार्यक्रम मैं करता था, खुद करता था।
5: आज हमारे स्टूडियो में है पलामू के आदरणीय सांसद श्री विष्णुदयाल राम। इनको आप सबको ही जानते हैं, आपने भी वोट दिया है और ये आपसे चुने हुए सांसद हैं यहाँ के। इसके अलावा भी इनका एक परिचय पहले से भी रहा है, ये यहाँ के DGP भी रह चुके थे, इनका कुशल नेतृत्व यहाँ पर रहा है। आज ये हमारे संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पलामू क्षेत्र का। विष्णुदयाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के साथ एक चुनौतीपूर्ण आपको बहुत काम मिला है, क्योंकि बहुत दीर्घकालीन यहाँ पे बहुत से समस्याएं, पानी की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, कुछ ज्योग्राफिकल उसके कारण भी, पृष्ठभूमि के कारण भी ऐसा हुआ है, इसका क्या निदान है?
6: देखिए, पलामू संसदीय क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या
5: जी है।
4: फिर नेतरहाट विश्वविद्यालय जो है, नेतरहाट विद्यालय जो एक ऐतिहासिक विद्यालय है, झारखंड का एक इज्जत है या शान है, वहाँ पर जाके मैंने कार्यक्रम बनाया था। नेचर, ये सब जो कार्यक्रम जितने होते थे ये हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के तहत होते थे और सभी केंद्र उसको सुनते थे, केंद्र के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी लोग सुनते थे। और किसान वाणी के तहत हमने काफ़ी कार्यक्रम किया, चारों तरफ जाते रहे पूरे इलाके में। डैम पर संतोष जी के साथ हमने कार्यक्रम किया है, जितने तरह के डैम हैं, अभी हाल में अभी डैम की समस्या समाप्त हो रही है डाल्टनगंज में, लोगों को अच्छा सरकार के साथ कुछ समझौता हो रहा है बिहार सरकार के साथ, वो अलग बात है। पर हम लोगों ने उस दौरान, जिस दौरान काफ़ी खंग जल संकट था, 2013 या 2005 का विषय मैं बोल रहा हूँ, इस दौरान हमने वहाँ का कार्यक्रम किया और तरह तरह के कार्यक्रम किए। ये मेरा पूरा समय जो हमने 2 टेन्योर मैंने किया डाल्टनगंज आकाशवाणी में, और ये दोनों टेन्योर काफ़ी यादगार रहा है। इस टेन्योर में मैं बहुत ज़्यादा दिन तक वहाँ पर केंद्र अध्यक्ष और उसके बाद कार्यक्रम प्रमुख भी था, और दोनों कार्यक्रम प्रमुख और केंद्र अध्यक्ष का किया। लोगों का सहयोग, वहाँ के लोग, कार्यरत लोग, वहाँ के कैजुअल अनाउंसर, जिन लोग हमारे आकस्मिक उद्घोषक रहे हैं, जो रीडर रहे हैं आकाशवाणी के, उनके साथ हमारा बहुत सहयोग रहा है। हम आशा करते हैं आकाशवाणी डाल्टनगंज दिनों दिन और ऊँचाई छूते रहे और नाम करते रहे। धन्यवाद।
0: भाइयों बहनों, आइए इसी कड़ी में सुनते हैं आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र के पूर्व कार्यक्रम प्रमुख मनोज कुमार को।
7: मैं आकाशवाणी डाल्टनगंज में 2 टर्म पोस्टेड रहा, कार्यालय प्रमुख यानी कि हेड ऑफ ऑफिस, और दूसरा कार्यक्रम प्रमुख के रूप में। मैं दोनों ही टर्म में वहाँ के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। वहाँ के लोगों का समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, लगन और उत्साह से परिपूर्ण सभी कंपियर और उद्घोषक को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। पलामू दर्पण का कार्यक्रम मैंने शुरू किया था, जिसमें पलामू यानी कि लातेहार, गढ़वा और डाल्टनगंज से जुड़ी सारी घटनाओं का विवरण साप्ताहिक वीकली लेवल पर इसकी एक रिपोर्ट बनती है। सबसे पहले मेरे सीनियर प्रलय सरकार से मैंने चार्ज लिया था, प्रलय सरकार के द्वारा मुझे वहाँ का हेड ऑफ द ऑफिस का चार्ज मिला था। उस दौरान में अनेक VIP रिकॉर्डिंग्स हुई, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का कवरेज हुआ, गवर्नर साहब का कवरेज हुआ, दीक्षांत समारोह हुआ 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडोत्तोलन का कवरेज हुआ, और बंसीधर समारोह हुआ, रेडियो रिपोर्ट कई बार कई राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रसारित हुए। विशेष रूप से बहुत सारे कार्यक्रम जो कि डाल्टनगंज से जुड़े हुए रहे, कई प्रमुख अतिथियों को बुलाया गया, फायर सर्विस वाले लोगों को अग्निशमन सप्ताह पर बुलाया गया। और उस दौरान में सबसे बड़ी बात हुई कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन का भी आगमन हुआ, और उनके कवरेज का, उनकी व्यवस्था का पूरी तरह से, अच्छी तरह से हम लोगों ने, पूरे डाल्टनगंज केंद्र के लोगों ने मिलके काम किया। तो इसलिए ये आज बधाई का दिन है, हमारी स्थापना दिवस का समारोह है। 6 तारीख डाल्टनगंज के सितंबर में महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसे स्थापना का, बधाई का। और मेरा चूंकि उस केंद्र से बहुत जुड़ाव रहा है, हम सारे लोगों को, जितने लोगों का नाम ले सका, जो लोगों का नाम नहीं ले सका, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और विशेष रूप से डाल्टनगंज क्षेत्र के, पलामू क्षेत्र के सभी श्रोताओं का हृदय से आभार, और उन सभी को शत शत नमन करता हूं।
0: भाइयों बहनों, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र को आगे बढ़ाने में सिर्फ पदाधिकारियों का ही योगदान नहीं रहा, इस केंद्र में पदस्थापित तकनीकी पदाधिकारी और कर्मचारियों का भी भरपूर मदद रहा, जिससे उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम का निर्माण होता रहा। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाने में हमारे कैजुअल अनाउंसर और कॉम्पेयररों की भी काफी अहम भूमिका रही। इनमें से कुछ आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, और इन रेडियो दोस्तों की आवाज आप कई कार्यक्रमों में सुन सकते हैं। कुछ ऐसे भी कार्यक्रम संचालक, कार्यक्रम उद्घोषक हमारे साथ रहे, जो आज दूसरे काम में व्यस्त हो गए हैं और आकाशवाणी संस्थान को छोड़कर दूसरे संस्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी हमें याद करते हैं और हम उन्हें याद करते हैं। और हमारे प्यारे प्यारे श्रोता भाइयों बहनों, आप भी जरूर उन्हें याद करते होंगे। उन चंद नामों में से कुछ नाम हैं: राकेश सहाय, राकेश रंजन कटरियार, जावेद अहमद इदरिशी, स्मृति लाल, सुषमा श्रीवास्तव, अनुराधा सिंह, संजय कुमार मिश्र। ये सब ऐसे नाम हैं जिन्हें हर रोज आप रेडियो के साथ अपने पास पाते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन हम उनकी आवाज को आज भी अपने पास संजो कर रखे हैं।
8: कार्यक्रम कल्याणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे अपेंडिक्स पे। अपेंडिक्स का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन इससे संबंधित ढेर सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। आइए आज उन तमाम सवालों का जवाब आपको हम दिलवाएंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने चिकित्सक, सर्जन और पलामू जिला अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर सुशील कुमार पांडे। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
0: जब इस कड़ी में हमने आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक गंगेश गुंजन

0: से बात की तो उन्होंने कहा,
1: यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। ये वही जादुई शब्द थे जिससे पूरा शहर जैसे रोमांचित हुआ हो। जिन लोगों में ये रोमांच पहुंचा उनमें एक मैं भी था, और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ आकाशवाणी केंद्र आने जाने। बात इस पर आकर पहुंची कि क्यों ना वहां की लाइब्रेरी पर कोई रिपोर्ट तैयार की जाए। उस समय वहां मौजूद आकाशवाणी रांची के वरिष्ठ अनाउंसर कुमार ब्रजेंद्र ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी और पहली बार माइक भी उन्होंने मुझे पकड़ा दी, और आकाशवाणी से पहला तजुर्बा काफी हड़बड़ाहट भरा रहा, मगर ये पारी बड़ी लंबी चली। उस समय के हमारे जितने भी अनाउंसर्स थे उन सब ने न सिर्फ अपनी पहचान रेडियो के जरिए बनाई बल्कि बहुत बड़ा योगदान भी रेडियो को दिया। डाल्टनगंज को समझने वाले लोग बहुत सारे वो इस आकाशवाणी केंद्र से जुड़े और इसलिए वो मिट्टी की आवाज बन। LRS का मतलब होता है, लोकल रेडियो स्टेशन का मतलब होता है, वहां जिस जगह पर यह केंद्र खोला गया है वहां की सांसों को महसूस करना। और आकाशवाणी डाल्टनगंज की जीवंतता यही थी कि वहां की सांसें जैसे उसमें चलती हुई महसूस होती थी, वहां की धड़कन धड़कती हुई। और इस तरह से 6 सितंबर को जब ये रेडियो स्टेशन एक और साल पूरा कर रहा होगा तो रेडियो की अपनी एक पहचान या डाल्टनगंज रेडियो स्टेशन की अपनी एक पहचान फिर से वहीं पुनर्स्थापित होगी, हम उम्मीद करते हैं। रेडियो से हमारी दूरी, आकाशवाणी डाल्टनगंज से दूरी हो सकती है कुछ बन गई हो, लेकिन वो पहचान, वो जज्बा, वो आत्मीयता शायद अब तक हम महसूस करते हैं, उसकी गर्माहट अभी तक हम महसूस करते हैं।
0: जी हाँ भाइयों बहनों, ये वही रिश्ता है, ये वही रिश्तों का डोर है जो हम सबको, यानी कि हमको, आप श्रोताओं को, यहाँ के पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, हर किसी को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। ये वही यारी है जो मीटे नहीं मिटती।

0: दोस्तों, हम आपके पसंदों का ख्याल करते हुए एक से एक कार्यक्रम आपके लिए सालों भर प्रस्तुत करते रहते हैं। हम आपके लिए ख्याल रखते हैं फिल्मी संगीत का, तो प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम गीत गुंजन, एक रंग, रजनीगंधा। तो शास्त्रीय संगीत सुनने वालों के लिए हमारा कार्यक्रम होता है राग रंग। हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं जोहार पलामू जैसे कार्यक्रम भी। हम ख्याल रखते हैं अपने किसान भाइयों का भी, खेत खलिहानों का भी। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी और किसान वाणी।
1: किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पाटन प्रखंड के बरवाड़ी पंचायत के एक सफल किसान जंग बहादुर मेहता, जो कई दिनों से मछली पालन करते आए हैं। मछली पालन का कार्य इनका अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनता है, क्योंकि खेती बाड़ी के अतिरिक्त ये मछली पालन का कार्य करते हैं और इनसे इनके परिवार का भरण पोषण होता है। आज हम विस्तृत बातें साझा करते हैं इनसे, किस प्रकार मछली पालन को ये अपने पंचायत में, अपने गांव में बढ़ावा दे रहे हैं।
0: भाइयों बहनों, आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम याद करना चाहेंगे अपने दो वैसे पदाधिकारियों की, जिन्होंने अपने कर्म जीवन की शुरुआत यहीं से, यानी कि आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से की।
2: आकाशवाणी डाल्टनगंज के श्रोताओं को रंजन कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं आपसे आकाशवाणी डाल्टनगंज से जुड़ी अपनी कुछ पुरानी यादें और अनुभव साझा करना चाहता हूँ। कई वर्ष बीत गए, लेकिन आकाशवाणी डाल्टनगंज में बिताए वे दिन आज भी मेरी स्मृति में उतने ही जीवंत हैं। आकाशवाणी डाल्टनगंज में मेरी पहली पदस्थापना प्रसारण अधिकारी के रूप में हुई थी। ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां मुझे बहुत कुछ सीखने, समझने और अनुभव करने का अवसर मिला। उन दिनों डाल्टनगंज से प्रसारित होने वाले अनेक कार्यक्रम अपने आप में विशेष थे। लोकगीतों पर आधारित माटी के संग, ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामीण सभा, महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, युवाओं के लिए युवाणी, बच्चों का बाल मंडली, फिल्म संगीत के कार्यक्रम, खेल गतिविधि कार्यक्रम, ये सभी ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक भी थे। डाल्टनगंज में मेरे लिए सबसे सुखद अनुभवों में एक था क्विज कार्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत करना। यह कार्यक्रम युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। स्थान भले ही बदल जाएं, लोग बिछड़ जाएं, लेकिन वहाँ की आवाज़ें, बिताए हुए दिन, खुशनुमा माहौल और उन दिनों की स्मृतियाँ आज भी हमारे भीतर लगातार प्रसारित होती रहती हैं। आकाशवाणी से जुड़े उन सभी साथियों, कलाकारों, श्रोताओं और उन अनगिनत आवाज़ों को मेरा सादर नमन, जिन्होंने उन दिनों को मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय स्मृति बना दिया। इन्हीं स्मृतियों के साथ आकाशवाणी डाल्टनगंज के सभी श्रोताओं को रंजन कुमार का पुनः नमस्कार।
0: जी हाँ भाइयों बहनों, लोग आते रहें, जाते रहें, यादों की गलियारों में बीते हुए लम्हों का कसक वक्त बनकर भटकता रहा, पर आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र का ये सुहाना सफर अनवरत जारी रहा और आपके लिए, यानी कि हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के दिल की धड़कन बनकर आगे भी यूं ही जारी रहे।

जी हाँ प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आपने आकाशवाणी को बेशुमार प्यार दिया और हमने भी उसे दिल से लगा कर रखा, संजो कर रखा।

है तो प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आपका और हमारा ये रिश्ता, ये बंधन प्यार का है, मोहब्बत का है, जज्बात का है। और इसी बंधन के सहारे, इस रिश्ते के सहारे हमारा और आपका ये कारवां लगातार पिछले 33 वर्षों से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों, हमारा प्रातःकालीन सभा और सायंकालीन सभा में आपकी उपस्थिति, आपकी भागीदारी हमें ऊर्जावान बनाती है, उत्साहित करती है और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपका और हमारा ये साथ यूं ही बना रहेगा।

दोस्तों, आपका और हमारा साथ सिर्फ मनोरंजन का नहीं होता, बल्कि हम आपको साथ लिए चलते हैं राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यवसायिक गतिविधियों के साथ भी। साथ लिए चलते हैं शैक्षणिक, देश विदेश, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ भी। हम आपको जोड़ते हैं, सुनाते हैं चिंतन, रामचरितमानस गान, स्वर सरिता, महफिल कव्वाली, स्वास्थ्य चर्चा, कल्याणी जैसे कार्यक्रमों को भी। हम बच्चों का भी रखते हैं ख्याल और सुनाते हैं बाल सभा कार्यक्रम भी। और आपके लिए होते ही हैं ढेर सारे फिल्म गीतों से भरा कई कार्यक्रम। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए तो कहते हैं कि आकाशवाणी डाल्टनगंज महज एक नाम नहीं, कोई संस्थान या सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, ये तो रूह से रूह का, दिल से दिल का राबता है। वक्त का पहिया थमेगा दोस्तों, चेहरे बदलेंगे, शायद कल हम यहाँ रहें न रहें, मगर ये रेडियो सेट यूं ही सजे रहेंगे, आपकी वफा और आपका प्यार बनकर महकते रहेंगे। और यकीन मानिए भाइयों बहनों, आपके इस निश्चल प्यार की खुशबू से आकाशवाणी का ये आंगन ता उम्र यूं ही

0: इस तरह से दोस्तों हमारा कारवां चल रहा है। वर्तमान में आकाशवाणी डाल्टनगंज के कार्यक्रम प्रमुख प्रशांत गौरव के निर्देशन में, नेतृत्व में हम सभी आपके लिए सदैव तत्पर हैं।
1: आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्षों से आकाशवाणी डाल्टनगंज ने अपनी विश्वसनीय आवाज के माध्यम से लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया है। ये यात्रा हमारे श्रोताओं के स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं थी। विशेष अवसर पर हम अपने पूरे श्रोता परिवार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह संकल्प दोहराते हैं कि भविष्य में भी आकाशवाणी डाल्टनगंज विश्वसनीय, सार्थक और रोचक प्रसारण के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। आपका प्रेम, विश्वास और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आकाशवाणी डाल्टनगंज परिवार की ओर से स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक

तो फिर दोस्तों, प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम से मुझे यानी कि आप सबका रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट साइका चटर्जी को दीजिए विदा। आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहायक थे संतोष कुमार और संयोजन करता निर्देशन था प्रशांत गौरव का। दोस्तों, हम तो आपसे ले रहे हैं विदा, लेकिन आप वादा करें कि जुड़े रहेंगे इस केंद्र के साथ आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के साथ। ये है

अभी आप सुन रहे थे हमारा खास कार्यक्रम आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वीं स्थापना दिवस के अवसर पर। यह था विशेष कार्यक्रम यादों की झरोखे से। संकलन एवं वाचन स्वर था सैकत चट्टोपाध्याय का, संयोजन एवं प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। और अब पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम।

फिल्म गीतों के तहत आप सुन रहे थे अभी मोहब्बतें फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में। उसके पहले हमने आपको सुनवाया लगान फिल्म का गीत उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाज़ में। इसके साथ ही फिल्म गीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है।

0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
1: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है, और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के एक अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज तड़के उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1344 हो गई है। इस घटना में 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। नोवाकोट जिले में 10 दिनों तक कीचड़ और मलबे के नीचे दबी एक 60 वर्षीय महिला को बचा लिया गया। मृतकों की पहचान के लिए कई मामलों में डीएनए परीक्षण का सहारा लिया जा रहा है। महिला क्रिकेट में दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां टी20 मैच था। वो पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान है। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के ही हे जी टिंग और रेन जियांगजू की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अर्जियन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया था। मौसम विभाग ने बिहार, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, कर्नाटक के भीतरी हिस्सों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has urged young Indians to dream even bigger than previous generations and build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. Mr. Modi said, "Today, Indians are leading the top companies of the world, so why can't companies built by Indians lead the world?" The Prime Minister was addressing centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce (SRCC) at Delhi University yesterday evening.
3: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
2: Mr. Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. He said the world is watching India become the fastest growing major economy.
3: देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है.
2: The Prime Minister said SRCC has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. Prime Minister Modi travelled by the Delhi Metro as he headed to SRCC to participate in the college's centenary celebrations yesterday evening. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma has been appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Dr. Sharma will succeed Admiral D.K. Joshi, retired, who took over as Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands on October 8, 2017. Dr. Sharma, 62, earlier served as Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. His Rajya Sabha term was to end on November 25th. A Rashtrapati Bhavan communique issued last night said that Dr. Sharma's appointment will come into effect from the date he assumes charge of his office. In Chhattisgarh, the National Investigation Agency's special court in Jagdalpur has convicted all 10 accused in Jhiram Valley Maoist attack case under various charges. A total of 11 accused were tried in the case, of whom one died during the trial. The court found all 10 accused, including two women, guilty of the murder of 29 people and attempt to murder 15 others. The order of the quantum of punishment has been reserved for September 16th. In May 2013, Maoists attacked a convoy of Congress leaders in Jhiram Valley. 29 people, including senior Congress leaders, were killed in this dastardly attack. Jharkhand Urban Development Minister Sudhir Vikumar Sonu passed away at Mercy Hospital in Giridhi after suffering a heart attack. He reportedly complained of ill health late at night and was brought to the hospital at around 2 a.m., where he passed away at around 4 a.m. More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS Summit on the sidelines of BRICS Summit in New Delhi on 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. As BRICS Chair 2026, India will be hosting the 18th BRICS Summit on September 12 and 13 at Bharat Mandapam in New Delhi. In women's cricket, India defeated Pakistan by 7 wickets in a one-sided Women's Asia Cup T20 match in Dubai. Pakistan were bowled out for just 55 in 18.1 overs, their lowest ever total in T20 internationals. Young spinners Sri Charani and Prema Rawat took 3 wickets each, while Deepti Sharma claimed 2. India chased down the target in 8.4 overs, with captain Harmanpreet Kaur remaining unbeaten on 18. In badminton, India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty have entered the China Masters final for the third time. The world number 5 pair defeated Malaysia's Noor Mohammad Azirin Ayub and Tan Wee Kyong 21-15, 18-21, 21-11 in the semi-final. And that is the end of this news bulletin.

0: तो ये गाना हमने सुना, गंगा मैया तो है पीले चढ़ेबो, और बिहारी लड़की यहाँ आते आते अभिनय के मैदान में भी उतरने वाली थी, ये कैसे हुआ है?
1: ये गजेंद्र सिंह जो हैं, हाँ, जो सारे गामा
0: जो उसके प्रोड्यूसर थे,
1: डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका अचानक एक दिन फोन आया। उस समय भोजपुरी का एक नया चैनल लॉन्च हुआ था और उन लोगों को नए शोज बनाने थे और
0: बड़े धूमधाम धड़ाम तरीके से शुरू हुआ,
1: बहुत धड़ाम, मतलब बंबई में बहुत बड़ा ऑफिस था भोजपुरी चैनल होने के बाद भी जितना बड़ा उनका ऑफिस था, हिंदी वाले भी दंग रहते थे कि ये क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उस वक्त का जो दौर था,
0: सीरियल बनने लगे, रियलिटी शो बनने लगे, जाने क्या क्या हो रहा था।
1: तो ये उन्होंने गजेंद्र सिंह ने ही एक दिन फोन किया, और ये वो गजेंद्र सिंह है जो दीपाली के दिमाग में सारे गामा के डायरेक्टर हैं, जो जिनको सोनू निगम एक जमाने में होस्ट करते थे और हम बचपन में देखा करते थे। तो फोन आया कि गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था, अच्छी बात है, ओके बाय, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हुआ कि खुद गजेंद्र सिंह ने फोन किया। फिर दोबारा कॉल आया, दीपाली मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, साईं बाबा प्रोडक्शन, सारे गामा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब हमको समझ आया कि अरे ये तो असली वाले गजेंद्र सिंह है। तो हम बोले
0: no
1: हाँ जी सर, हाँ जी जी सर बोलिए, तो हम एक शो बना रहे हैं भोजपुरी में है, तो हम चाहते हैं कि तुम उसमें एक्टिंग करो। बोले सर हमको एक्टिंग नहीं आती है। तो बोले वो तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना, तुम्हारा काम है हाँ बोलना, तुमको आती है कि नहीं आती है ये तो डायरेक्टर बताएगा, हम बताएंगे तुमसे कराएंगे, हम करा लेंगे, हमको पता है। एंड दैट्स हाउ दिस बड़की मलकाई नाम था इस सीरियल का, ये शुरू हुआ मेरे जीवन में। और एक्टिंग का हमको सच में, मतलब ठीक है कि मूड इंडिगो में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। बट क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे पैसे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि पर डे बेसिस पे सीरियल में पेमेंट होते हैं, सो आई थॉट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हुआ क्या कि इंडियन आइडल में मेरे ना वोकल कॉर्ड्स फट गए चिल्लाने की वजह से। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब तुम जीवन भर कभी गा नहीं सको, तो तुम गाना तो भूल ही जाओ, ये तुम्हारा करियर यहाँ पे गाने का खत्म होता है। और मेरे वोकल कॉर्ड्स का जो उस समय जो एक वो लैरिंजोग्राफी या कुछ कहते हैं उसको, उसके पिक्चर्स देखे उन्होंने, तो पिक्चर्स में वोकल कॉर्ड्स लिटरली फट चुके थे और खून बह चुका था, पूरा रेड, सोर रेड था मेरा वोकल कॉर्ड। तो हम भी डर गए, हमको लगा कि, तो वो ही उन्होंने बोला कि कुछ दिन तक तो तुमको बिल्कुल साइलेंस पे रहना होगा, क्योंकि उसको रेस्ट देना जरूरी है। और फिर उन्होंने बोला कि सिंगिंग एज अ करियर भूल जाओ, क्योंकि अब तुम अपने वोकल कॉर्ड्स को फाड़ चुकी हो चिल्ला चिल्ला के वो रियलिटी शो होस्ट करने के चक्कर में, तो गाना तो तुम गा नहीं सकती हो, और अगर बहुत बोलोगी तो जो बोलने वाली आवाज है वो भी चली जाएगी। तो हो सकता है वो उनका डराने का तरीका हो एक छोटे बच्चे को, इस बहाने शायद ठीक हो जाए, बट आई टुक इट वेरी सीरियसली। तो जब ये एक्टिंग का ऑफर आया तो हमको लगा ठीक है, करियर सिंगिंग में तो है नहीं जीवन अब मेरा, मेरा तो गला चला गया है गाने के हिसाब से, तो एक्टिंग कर लेते हैं। तो एकदम शिद्दत से हम उसमें घुस गए एक्टिंग करने में, और फिर मतलब फिर बाकी जगह से भी ऑफर्स आने लगे और हम करने लगे, रियाज और गाना तो कहीं चला गया जीवन से।
0: और ये जो गले की समस्या थी, इसके बारे में पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता
1: नहीं
0: है।
1: नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद, पर अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि इतना बड़ा रियलिटी शो होस्ट करना है आपको लेकिन आपके गले पे असर पड़ेगा, तो भी हम ना नहीं बोलते,
0: बिल्कुल
1: नहीं बोल पाते।
0: कैसे संभाला फिर अपना गला उन दिनों में, जबकि ये कहा गया कि पूरी तरह से साइलेंस रहना है वगैरह वगैरह।
1: वो कुछ दिन तो हम बहुत परेशान रहे क्योंकि बहुत दर्द होता था गले में, तो हम बहुत रोते भी थे, माँ थी मेरे पास यहीं पर अंदर ही अंदर अब समझ आ गया था कि मेरा करियर तो है ही नहीं म्यूजिक में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा दिमाग, क्योंकि हम आई वॉज अ डूअर होता है ना, कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो

0: हमको करना था कुछ। अब हम आ चुके थे मुंबई और शोज जो थे वो पैसा दे रहे थे। हमको नहीं पता था कि शोज से पैसे आएंगे, पर अब तो आ चुके थे। चस्का तो वहां से भी लग चुका था। और यहाँ पे म्यूजिक करियर जाता रहा, तो ऐसे में एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ। तो हमको लगा ठीक है, मतलब तो कुछ कला से रिलेटेड करने में है ना, तो ये भी तो
1: एक रूप
0: इसी
1: है।
0: का, आर्ट का ही एक रूप है ना एक्टिंग। और अच्छा है, डिसेंट है। भोजपुरी का जो उस समय इमेज था, मतलब वल्गर गानों का, ये शो उस इमेज को भी तोड़ रहा था। एक अच्छा डिसेंट पारिवारिक एंटरटेनिंग शो, तो हमको लगा सही है। तो पहले कुछ दिन, कुछ ही हमको लगता है कुछ है ही महीने का डिप्रेशन रहा होगा, और उसके बाद फिर चीजें पलटने लगी। आई
1: क्या बात
0: स्टार्टेड
1: है।
0: एंजॉइंग दैट।
1: और उसके बाद फिर वो जो एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा,
0: करेक्ट।
1: उसमें कौन कौन से सीरियल्स आए वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए।
0: सबसे पहले तो बड़की मलकाइन था, फिर उसके कुछ दिन बाद दूरदर्शन नेशनल पर अनुदामिनी करके एक शो आया, वो भी बहुत हिट हुआ। उसमें मेरा वैम्प का रोल था।
1: ये अलग चैलेंज हो गया।
0: सो मेरे लिए, बट ये चैलेंजेस बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपको वो करनी पड़े तो आप अपने आप को फिर और बेहतर पहचानते हैं कि अच्छा ये भी सक्षमता है, ये भी करने में सक्षम होंगे हम, ये भी, ये सारी चीजें आप, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है। जब आपने अपने ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है कि हम यही करेंगे, तो फिर आप एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं इंसानी तौर पे। तो वो मेरा शुरू हो गया था अनजाने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी अपनी तरह से,
0: अपनी तरह से आई वॉज अलाउइंग कि जीवन को जैसे बहना है बहू। क्योंकि अब तो हम जो सोच के आए थे कि हम बहुत जल्द, मेरे पापा बोले थे कि अब ये मुंबई जाएगी और हिंदी फिल्मों में गाने का कोशिश करेगी, वो तो मेरा चूर हो गया 2 ही महीने में, जब डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल है। तो फिर हमने एक्टिंग को एक्सेप्ट किया, और भारत की शान, दूरदर्शन पे ही एक रियलिटी शो होता था भारत की शान, उसको भी होस्ट किया। जय हनुमान एक सीरियल आता था सोनी एंटरटेनमेंट पे, उसमें एक्टिंग की, उसमें भी वैम्प का रोल था, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, महाराणा प्रताप, बस थोड़े से अनजाने, नीम नीम शहद शहद, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, इस तरह के छोटे छोटे शोज में अच्छे इंपॉर्टेंट रोल्स कर करके आई थिंक मेरे कुछ 6 साल निकले।
1: और ये जो गायकी वाला मामला था
0: वो तो बस महीने में जैसे 20 दिन की शूटिंग और 10 दिन जो बचा है उसमें कभी कोई शो मिला तो कर लिया।
1: और गला तब तक संभल गया था।
0: संभल गया था, पर रियाजी गला नहीं था वो। वो तो उसके अंदर का चोट हील हो गया था। वो मेरे दिमाग का फितूर था कि वो चोट हील नहीं होगा, अब कभी कुछ नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम शोज जो उस समय होते थे, उस समय शोज में प्रायोरिटी ये नहीं होता था कि सुरीला गाओ, ऑडियंस नाचनी चाहिए। तो गाने के ऊपर उतना प्रेशर है नहीं, कोई भी गाना चला दो ऑडियंस नाच रही है। तो शोज अच्छे कट, अच्छी मतलब मेरी अच्छी कट रही थी कि शोज भी चल रहे थे और एक्टिंग भी चल रहा था। और अब करियर तो है नहीं म्यूजिक में, सिंगिंग में, तो रियाज तो करने की जरूरत है नहीं। ऐसा जीवन चल रहा था मेरा।
1: और मम्मी पापा तब तक पटना में ही थे?
0: वो लोग पटना में ही थ्रू आउट रहे, मतलब पूरे टाइम वो लोग पटना। पापा क्योंकि सरकारी नौकर थे तो वो शहर तो नहीं छोड़ सकते थे। माँ आना जाना करती थी, ऑफकोर्स वो बेचारी बट गई थी अपने पति और अपने बच्चे के बीच, क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो बैंगलोर में LLB कर रही थी।
1: okay.
0: और वो प्रॉपर लाइफ जी रही थी जो एक उस उम्र का बच्चा जीता है, हॉस्टल लाइफ, क्लास जा रहे आ रहे। पर उनकी ये बेटी जो थी वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी। मतलब एक बंदा है उस रियलिटी शो के बाद, उसने बोला चलो बेटा मैं तुमको मोंटी शर्मा से मिलवाता हूँ। हम लोग पहुंच गए यशराज के स्टूडियोज में, मोंटी शर्मा उनके सामने बैठ के, सांवरिया फिल्म आई थी तब, आने वाली थी या आ गई थी, और उन्होंने गाना भी सुना। और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रणबीर कपूर से भी मुलाकात हो गई। तो ऐसा लगा कि वाह अब तो बस प्लेबैक मिल ही जाएगा। और वो ही टाइम था जब जो रियलिटी शो उसको होस्ट करने के ठीक पहले का टाइम, जब मेरा गला बिल्कुल रेडी था, जब माँ बाप को लगा था कि ये प्लेबैक में कुछ करेगी। और हमने मुलाकात की, हम जब घर वापस आए तो उस बंदे ने जिसने हमें मिलवाया बिना मांगे, उसने हमारी जो मीटिंग करा दी उसके एवज में उसने बोला कि उसकी कोई विदेशी मित्र मेरे पास रहेगी 3 महीने के लिए। तो मेरी माँ को ये बात खटक गई, क्योंकि ये बात उसने तब नहीं बोला जब वो हमें मिलवाने ले जा रहा था,
1: ये बाद में बोला गया
0: जब उसने हमें मिलवा दिया। और जब मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं, अनजान कोई लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तो उसने बोला पर मैंने तो तुम्हें मोंटी शर्मा से मिलवा दिया था, तब भी तुम मना कर रही हो मुझे। तो

0: हमें ये गेम समझ आए कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले फेवर्स, कोई फ्री में
1: समीकरण
0: कोई,
1: बनते हैं।
0: हाँ यहाँ कोई आपके लिए फ्री में नहीं कुछ करेगा, वो आपको लेके, और वो बहुत क्लियरली उसने बोला कि बट हम तो अभी तुमको मोंटी शर्मा से मिलवा के ला रहे हैं भाई,
1: तो ये तो मानना ही
0: तो ये
1: पड़ेगा।
0: तो तुम कैसे मना कर रही हो, मतलब तुम ये मना कर रही हो तो मतलब हम तुमको अब जीवन में कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तो अब हम लोग पटना से उठ के यहाँ आए हुए, हमारा तो हमारी तो दुनिया हिल गई, और मेरे पिताजी वैसे भी बहुत पुलिस वाले हैं, वो दुनिया के एक उस आयाम को देखते होंगे जो हम नहीं देखे हैं, तो उनको डर भी बहुत लगता है अपनी बेटियों के लिए, हर बाप को लगता है, पर पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा गंदगी देखते हैं, जो गंदा साइड है, जो
1: जी
0: कठिन साइड है जीवन का, वो ज्यादा देखते हैं। तो मेरे पापा हमको उस दिन एक बात समझाए कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए अगर झुकना पड़े तो मत जाना, अपनी इज्जत अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखना, और अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि उस जगह पे तुमको डर लग रहा है तो वहां से हट जाना, निकल जाना, काम नहीं मिले मत करना, पर कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये छोटी बच्ची है ये काम मांगेगी तो एवज में उससे क्या मांग ले, ये पता नहीं जज कर पाए कि नहीं कर पाए, और क्योंकि दीपाली एक किताबी बच्ची थी,
1: अक्षरशः मान लिया उसने।
0: शब्दशः उस बात को हमने कर लिया फॉलो। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद वोकल कॉर्ड्स फट गए, ये सब कुछ ये अपने आप ये चीजें होती चली गई कि सिंगिंग से मेरा नाता रिश्ता टूट गया पूरी तरह से 2012 तक।
1: और ये सारा समय आपको जो है ये ले जा रहा था एक्टिंग की दुनिया में।
0: एक्टिंग की दुनिया में एक्टिंग करते करते ऐसा लगने लगा कि ये एक्टर जो है उसको तो सारा काम वही करना होता है जो डायरेक्टर बोलता है, तो बनना तो हमको डायरेक्टर है, आई एम अ लीडर।
1: यानी
0: ये
1: मंजिल जो है वो हर एक पड़ाव पर नई नजर आती रही,
0: बिल्कुल
1: और यहां से एफटीआई दिखने लगा।
0: बिल्कुल
1: मतलब ये बहुत बड़ा टर्न नहीं था कि सिंगिंग, सिंगिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से डायरेक्शन।
0: हाँ टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था, लेकिन हम बोले ना कि ये मेरा सौभाग्य है कि कभी कोई, मेरे माँ बाप मेरी बहन कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम करना चाहती क्या हो, कभी
1: तो
0: कोई नहीं हमको ये सवाल पूछता था।
1: आपने एक दिन ये तय कर लिया कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर
0: हाँ
1: डिप्लोमा लेना है।
0: हाँ और इसके लिए एक्टिंग छोड़ के बाकायदा, और तब तक इधर पैरेलली, हाँ पैरेलली मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ मुंबई में,
1: हाँ, अरे वो तो एडमिशन ले लिया यहाँ कॉलेज में, ये तो मैं
0: करेक्ट,
1: भूल गया बात करना।
0: यहाँ हमने एडमिशन ले लिया और मेरा ग्रेजुएशन हुआ मास मीडिया में।
1: तो ये क्लासेस,
0: ये क्लासेस जो थे, ये प्रिंसिपल काफी दयावान थी, वो रियलिटी शो देखती थी और शी वॉज अ फैन, शी वॉज अ सपोर्टर, तो उन्होंने इतनी छूट दे दी कि तुम
1: रेगुलर क्लासेस
0: रेगुलर
1: नहीं आओगी
0: क्लासेस
1: तो
0: नहीं आओगी
1: चलेगा।
0: तो चलेगा, तो वो वहां पे आई थिंक मेरा लक फेवर्ड मी
1: हाँ
0: एंड ग्रेजुएशन, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, क्योंकि माँ बाप का ये भी था कि बेटा डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री के बिहारी जीवित नहीं रह
1: लेकिन ये बहुत
0: सकता है।
1: बढ़िया बात है, ये बहुत
0: हाँ
1: जरूरी बात है, और उसमें आपने इस पर फोकस किया ये
0: हाँ
1: भी उतनी ही बड़ी बात है
0: हाँ
1: कि एक तरफ जब एक्टिंग का मामला चल रहा है, प्रोफेशन सेट है, उसके बाद
0: प्रोफेशन
1: भी
0: सेट है,
1: पढ़ना
0: पैसे
1: है।
0: सेट है,
1: हाँ
0: मतलब एक 18-20 साल की लड़की के लिए जितने पैसे हम कमा रहे थे, अभी भी सोच के हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते कैसे नहीं गए, ये कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर,
1: ये सारे संस्कारों का
0: ये
1: खेल होता
0: सारों
1: है।
0: सारे संस्कारों का खेल है, ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे। और 6 साल बाद जब हम सोचे कि हमको और पढ़ना है, एफटीआईआई जाना है, तो वो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, तुम घर आओ, मेरे पिताजी मेरे साथ बैठ के एफटीआई की तैयारी शुरू कर, एक
1: और एक
0: साल
1: गजब, तो आपने तब एक्टिंग भी छोड़ दी।
0: छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुंबई से वापस घर पटना।
1: ये तो बहुत बड़ा टर्न था।
0: हाँ ये काफी बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था, और
1: एफटीआई की तैयारी किस तरह की?
0: एक तो पता नहीं था कि फिल्म देखा कैसे जाता है, फिल्म देखना हमें मसाला फिल्में देखने आती थी, मनमोहन देसाई जी की जो ग्रैंड सक्सेस फिल्में जो बिहार में चलती थी, हम मेरे लिए फिल्म देखना मतलब एंटरटेनमेंट, बट एफटीआई वाज अ सीरियस बिजनेस, और वहां पे जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो मेरे अंदर ये था कि डायरेक्टर जो बोल रहा है वही करना पड़ता है, तो भैया जो लीडर है हमको वही बनना है, जिस भी प्रोफेशन में हम काम करें जो लीडर है हमको तो वही बनना है, ये छोटा जो क्या बोलते हैं बाल मन जिसको कहते हैं, वो अपना ही कुछ इन्फ्लुएंस निकालता रहता है, तो जैसे एज अ कैरेक्टर हमको ऐसा लगता था कि मेरे कैरेक्टर को ये लोग रुलाते बहुत है, इतना नहीं रो सकती है कोई, वो पलट

0: क्यों नहीं बोल रही है जब उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है, तो ये जो कहानी लिख रहा है ना, हमको वहां बैठना है सो दैट आई कैन टेल माई ओन स्टोरी. मे बी यू नो ये मेरे दिमाग में ये
1: टू कंट्रोल द थिंग्स करेक्ट एंड टेल योर स्टोरी
0: करेक्ट टू टेल माई स्टोरी इन माई वेज. क्योंकि आप जो दिखाते चले जा रहे हैं ये सच नहीं है. इतनी प्रताड़ना कोई इंसान जीवित तो नहीं सह सकता है. वो कभी तो रिटेलिएट करेगा. तो वो रिटेलिएशन भी वो उस कैरेक्टर का बहुत सीमित दिखाते थे कि वो बस उसने एक बार ऐसे देख लिया चौंक के. बट मेरे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा था. तो हमको लगा ये कर कौन रहा है, ये खेल क्यों हो रहा है. और मेरी डायरेक्टर से बहस भी होती थी कि सर कभी तो आप पलट के मुझे जवाब देने दो इनको. तो डायरेक्टर ने बताया कि भैया जो राइटर लिखेगा और जो डायरेक्टर बोलेगा यही होगा. तो मेरे दिमाग में अच्छा तो हम अपनी कहानी बनाएंगे तो हम जाएंगे डायरेक्टर बनने. तब पता भी नहीं था कि FTII नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है. इंटरनेट पे दुनिया खोल के पढ़ के पता चला हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें तैयारी लगेगी, रिटन होगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू होगा. ये मतलब एक छोटा UPSC का छोटा सा फॉर्मेट.
1: तो उसकी तैयारी के लिए दीपाली यहाँ से एक्टिंग वैक्टिंग सिंगिंग विंगिंग सब छोड़ के चली गई पटना और तैयारी शुरू कर दी.
0: बिल्कुल.
1: ये कहानी बहुत गजब की है भाई.
0: हाँ.
1: इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं. पिताजी तैयारी करवा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं.
0: हाँ फिल्में देखी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के लिए फिल्में देखी जाती हैं. आप सोचिए हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कितने कमाल के हैं ये लोग जिनके बीच हम पैदा हुए हैं. इनको कुछ नहीं पता है.
1: नहीं ये एक
0: लेकिन ये लगे हुए हैं.
1: हाँ
0: लगे हुए हैं. हमको भी नहीं पता है कि FTII में घुसने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी. हमको ये पता है क्रिएटिव होना जरूरी है एंड आई एम क्रिएटिव. तो जब मेरा रिटर्न हुआ तो उसमें जो एंड जनरल नॉलेज मेरा अच्छा था, जनरल अवेयरनेस अच्छा था, तो वो चीजें तो सॉर्टेड थी. क्रिएटिव राइटिंग करना था जो डायरेक्शन के कोर्स के लिए था वो सॉर्टेड थी. किसी एक फिल्म की समीक्षा अगर आ जाए, किसी स्पेसिफिक फिल्म का एक सीन डिस्क्रिप्शन आ जाए या एडिट पे बात आ जाए, वहां हम थोड़े अटकते. बट आई वॉज रेडी कि उसमें भी हम कुछ बात बना के लिख सकते हैं. इतने भी बेवकूफ नहीं है. वर्ल्ड सिनेमा तो पता भी नहीं था. सिनेमा देखना भी नहीं आता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा उसको एज अ एक्टिंग शूटिंग वही दिमाग में रहा. इसलिए शायद हम थोड़े डेड इमोशन थे. मतलब मेरे अंदर जो जज्बात थे ना वो काफी डेड थे. तो तैयारी शुरू की हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सिर्फ पढ़ के, क्योंकि फिल्में नहीं थी मेरे पास देखने को. मेरे लैपटॉप में वो CD प्लेयर नहीं था. मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं था जिसमें हम CD लगा के वर्ल्ड सिनेमा की बात देख लें
1: या किसी अलग अलग जरिए से सिनेमा को डाउनलोड कर लें और जमा कर लें और
0: वो
1: शान
0: सब
1: बगा लें.
0: कुछ भी नहीं आता था. मेरे हाथ में बस इतना ही था कि वो रिटर्न क्लियर करना है जैसे भी, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हमको उसमें से नहीं छांट सकता है. तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी. एक्चुअली मेरा विश्वास था कि हम कभी रिजेक्ट नहीं होंगे. वो रियलिटी शो हारने की वजह थी क्योंकि हम मन से हारे हुए थे. एक लड़की नहीं जीत सकती थी इसलिए वो लड़की नहीं जीती. एक लड़की सोच रही थी वो FTII में निकाल लेगी इसलिए उसने निकाल लिया. यही है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये सत्य है.
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं क्योंकि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं. तो अब दीपाली कौन सा गाना सुनाएगी?
0: अब दीपाली के जीवन में जो मोड़ आया है वो है

0: इजाजत तक का सफर तय कर लिया। यहाँ से दीपाली चली आती है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन हो जाता है।
1: करेक्ट।
0: इंटरव्यू सब तोड़
1: सब सब सब सब
0: है ना,
1: सब सब।
0: तो मतलब दीपाली
1: जो लिस्ट निकलता है वो लिस्ट में सबसे नीचे का नाम है, क्योंकि वो रैंक

0: सबसे नीचे का नाम है।
1: 12 जो 12 सीट्स होते हैं, हाँ। जिनमें से 6 जनरल कैटेगरी और 6 रिजर्व्ड कैटेगरी, तो वो जो 6 सीट है उनमें सबसे नीचे मेरा नाम है, मतलब हमने जस्ट क्वालिफाई कर लिया,
0: जस्ट बच गए,
1: बच गए हूँ।
0: हाँ। और कौन कौन लोग हैं हमारे साथ वहाँ पर?
1: अलग अलग, अच्छा ये एक अच्छी बात थी कि 12 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट अलग स्टेट का था।
0: बिल्कुल,
1: ये आई थिंक ये कॉन्शियस प्रोसेस है उनका सिलेक्शन का, क्योंकि मेरे बैच में केरलाइट भी था, कर्नाटका भी था, हम बिहारी, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक एन a representation of Indian state. तो अब क्या होता है, आप अपने प्रांत में, अपने स्टेट में, अपने ही तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। शायद इसलिए FTII जैसा इंस्टीट्यूट बनता है, बहुत बहुत सोच विचार के। अभी इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं तो हमको FTII के मेरे दिन याद आ रहे हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ भी ऐसे ही स्टूडियोज है, बिल्कुल। हाँ। यही है ही वो,
0: बिल्कुल
1: वो प्रभात खबर स्टूडियो हुआ करता था, प्रभात स्टूडियोज शांताराम जी का। तो अभी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस ऑफिस की तरह ही, हमारे ऐसे ही स्टूडियोज होते थे, हमारे ऐसे ही क्लासेस होते थे।
0: हाँ।
1: तो बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के थे, सारे ग्रेजुएट्स थे। तो आप एक उम्र, अब आप एक जीवन का एक नजरिया, एक एक्सपीरियंस, एक एहसास, आपका दिल टूट चुका है अब तक, आपको प्यार हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप जीवन में फिनेंशियल स्ट्रगल समझ चुके हैं, आपने वो सारी चीजें, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हैं तो आपने एक उम्र तो जी ली है, एक हिस्सा एक्सपीरियंस कर लिया है, और उसके बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही है, और सिर्फ सिनेमा, सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हो रही है, ये देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे अंदर जो एहसास चल रहा है, इटली में बैठा 100 साल पुराना डायरेक्टर भी उसी एहसास को दिखाने में कामयाब हो रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ये समझ आया, सिनेमा इज केपेबल, व्हाट इज सिनेमा केपेबल ऑफ, ये FTII ने समझाया कि इंसान जीना कैसे है, पर्सपेक्टिव क्या होता है।
0: देयर इज नो बाउंड्री इन ह्यूमन इमोशंस,
1: देयर इज नो बाउंड्री, और आप अपने जीवन का कैमरा कहाँ रख रहे हैं और अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं।
0: बहुत सही,
1: नॉट जस्ट लिटरली, फिजिकली आप कैमरा कहाँ रख के एक सीन लगाते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है कि क्यों इस वक्त हम इस लड़ाई को छत से देखा जा रहा है, इस लड़ाई को डायरेक्टर ने नीचे से क्यों नहीं दिखाया। ये चीजें, ये जो पर्सपेक्टिव है, जो फिजिकली और नॉन फिजिकली, मेंटली ऑल्सो, हमको समझ आया कि अच्छा नजरिया होता क्या है एक्चुअली, ये FTII ने सिखाया हमको।
0: और यहाँ वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में था, कुछ भी देख सकते थे, डिस्कस कर सकते थे।
1: बिल्कुल, हमारे जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टीज थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े समझदार लोग थे, बहुत सहनशील समझदार लोग थे, क्योंकि ये सारे जो बच्चे

0: नॉर्मल दिखता था, ये उल्टा देखते थे उन चीजों को। और
1: बा
0: ऐसे लोगों के साथ मेरा सौभाग्य हुआ कि हम इन लोगों के बीच में गए। मेरे जैसा सीधा चलने, सीधे रास्ते चलने वाला इंसान एक बोले तो एक खुले पिंजरे में घुस गया था। और वहां पर लोगों का सिनेमा देखने का तरीका, उस पर डिस्कशंस, अपनी फिल्में बनाना है आपको, आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो मेरा एक साल का जर्नी था एफटीआई में, आई डिड टेलीविजन डायरेक्शन फ्रॉम देयर। एक साल बाद जो नाम सबसे नीचे था वो वहां से टॉपर बन के निकलता है।
1: वाह वाह वाह
0: और हमारे यहाँ जो टॉपर होता था उसको विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप मिलती है। सो आई रिसीव्ड दैट स्कॉलरशिप इन एफटीआई। तो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो जर्नी होगा।
1: पूरा ट्रांसफॉर्मेशन
0: पूरा पूरा मतलब दीपाली कई फेजेस में बनी और टूटी है। एफटीआई उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत दीपाली को अडल्ट बनाया एफटीआई ने इन टर्म्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस। वहां पे हम पहली बार रोना सीखे पब्लिकली।
1: अच्छा
0: दूसरों के सामने भी रोया जा सकता है, यह अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ। और एफटीआई के अंदर पहली बार हुआ जब हम किसी के साथ बैठकर कुछ बात करते हुए और हम रो पाए। और वो एक इतना कथार्टिक फीलिंग था, वो इतना अच्छा है महसूस हुआ जब ये
1: हल्का
0: हुआ,
1: हो जाना।
0: इतना हल्का महसूस हुआ। तो समझ आया कि जीवन कुछ और ही है, मतलब आप कुछ और ही समझ रहे थे अब तक।
1: तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, और वहां पूना में सिनेमा की दुनिया में रहकर एक तरह से खुद से मुलाकात हुई दीपाली
0: बिल्कुल
1: की, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।
1: यहां एक गाना सुन लें,
0: बिल्कुल
1: उसके बाद मुंबई की तरफ आते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो कौन सा गाना होगा?
0: लिए

0: एकदम सत्य है ये।
1: दीपाली के साथ बिल्कुल यही हो रहा था,
0: बिल्कुल यही हो रहा था।
1: ये जावेद साहब की बोले हैं।
0: हाँ,
1: मशाल फिल्म का गाना है और हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक है
0: जी,
1: है ना, सुनते हैं ये गाना।

0: यहाँ से फिर बम्बई आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ चूंकि अब कैमरे के पीछे रहने की ट्रेनिंग हो गई है,
1: करेक्ट,
0: तो अब क्या करना है?
1: अब टारगेट तो यही था कि बड़े किसी डायरेक्टर को पकड़ लिया जाए और उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, जीवन धन्य है यहाँ से। अब यही तो, अब करना क्या है, FTI से निकल के सिनेमा बनाना है, करेक्ट। तो एक साल वही छोटे मोटे एड्स, म्यूजिक वीडियोस असिस्ट करने का काम शुरू हो गया,
0: कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह,
1: कॉर्पोरेट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, या यू नो किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ प्री प्रोडक्शन का 15 दिन में लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी नाम नहीं है मेरा। वो इंडियन आइडल वाली दीपाली यहाँ नहीं चलने वाली है,
0: बिल्कुल,
1: वो जो फेमस वाली है जो सिंगर बनी थी या जिसने होस्ट किया था। और एक अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ, जो कि उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी, कि कोई हमको पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो इतना एवरेज इंडियन फेस है कि आप यू नो जैसे एक एक एक पर्सनालिटी होती है ना, एक अलग किस्म की खूबसूरती, जैसे ऐश्वर्या राय है, वो एवरेज इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो स्टैंड आउट इंडियन ब्यूटी है। वो कहीं भी खड़ी होंगी, हजारों लाखों की भीड़ में भी, तो आपकी नजर उनके चेहरे पर चली जाएगी। पर एक एवरेज इंडियन बिल्ट फेस मेरा वो है, तो रियलिटी शो से निकले भी थे तो भी लोग हमको जल्दी पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा वैसा कुछ है नहीं, वो पहचानने वाला कोई फीचर नहीं है स्ट्राइकिंग। तो वो मेरे फेवर में काम करता था, क्योंकि फिर हमको ताने कम सुनने पड़ते थे कि अरे तुम तो रियलिटी शो जीत के या जो भी करके आई हो, तो तुम ये काम क्यों कर रही हो,
0: तो
1: ऐसा भी सुनने मिलता था।
0: एक एनोनिमिटी मिली,
1: एक अनोनिमिटी मिली, और वो एक अज्ञातवास जो मेरे जीवन का बहुत सुंदर अज्ञातवास था, क्योंकि अब हम उस लेवल पे थे कि हम कुछ भी कर सकते थे, कोई नहीं पहचानता है हमको। वो इतना एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब आप जब जस्ट रियलिटी शो से निकले तो आपको सब जान रहे हैं, अगले एक दो साल तो डेफिनेटली आपको लोग जान रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 स्टार्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप रोज फ्लाइट ले रहे हैं, आपका जीवन अलग चल रहा है। और अचानक से करियर जो है वो धीरे धीरे अपना मोड़ लेने लगता है, और आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जब आप FTI से निकलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप यू आर रेडी टू बी अ स्पॉट बॉय टू अ डायरेक्टर, आप उस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, आप
0: बहुत सही,
1: खुल चुके हैं, आप बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हैं, आप हर काम करने को तैयार हैं, क्योंकि टारगेट ध्येय ये है कि आपकी फिल्म बननी चाहिए,
0: हाँ।
1: या जिसकी फिल्म बन रही है उसका पूरा सहयोग होना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: वो पैशनेट लोग ही कर सकते हैं,
0: टीम की तरह काम करना
1: चाहते। अब जो इंडिविजुअल दीपाली, इंडिविजुअलिस्टिक दीपाली थी, अब वो समाज के साथ जिसके कोई दोस्त नहीं होते थे, अब उसके दोस्त बनने शुरू हुए, अब दीपाली एक अलग आयाम में घुस रही थी अपने जीवन के, और यहाँ पे दोस्ती आई मेरी लाइफ में। इसके पहले तक हम बहुत अकेले थे, बहुत अकेले थे। तो जब हम मुंबई वापस आए तो क्योंकि बैचमेट्स, और FTI का तो हम मशहूर हैं बैचमेट्स, और
0: अलुमनाई
1: हमारा काफी तगड़ा है,
0: वहाँ एक तरह का कनेक्शन जो है जोरदार होता है,
1: बहुत जोरदार होता है। और वो क्या है, वो बिल्कुल इतना इतना गहरा है कि समय की सीमा उसमें मायने ही नहीं रखती। कम से कम समय में आप इतनी गहराई से, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे ही उस लेवल पे। तो वहां से मेरी लाइफ में दोस्ती शुरू हुई, दोस्तों के साथ काम शुरू हुआ, कुछ ऐसे दोस्त बने जो मतलब मेरे जीवन से भी प्यारे हैं, मेरे जान से भी प्यारे हैं मेरे दोस्त। वो लोगों के साथ मुंबई में मेरा असिस्टेंट बनने का सपना और स्ट्रगल और जो भी रास्ता है वो शुरू हो गया था, और एक साल तक

0: ये बड़ा अच्छा चला। इस बीच एक दिन कैफी आजमी साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल शबाना
1: पृथ्वी
0: आजमी
1: में।
0: जी और बाबा आजमी जी। ही दे वर लुकिंग फॉर सिंगर्स जो गाना गा सके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और एक अच्छा मंच कई नए टैलेंट को भी जगह देने का, क्योंकि वो आंगन ऐसा है कि यू नो हर कोई वहां बैठना चाहता है। वो आप गए होंगे आई एम श्योर जानकी कुटीर में,
1: पृथ्वी हाउस में होता है
0: पृथ्वी हाउस में,
1: जी,
0: पर पृथ्वी हाउस के ये इधर जो जानकी कुटीर है उसका नाम,
1: बिल्कुल,
0: हाँ उस वो उन्हीं का आंगन है जहाँ कैफी
1: यस,
0: साहब रहते थे। तो वहीं पे एक छोटा सा स्टेज लगा के, और
1: वहां करते हैं।
0: उनकी मंशा भी यही है कि नए टैलेंट को, क्योंकि वो इतना प्योरिटी से और इतनी शिद्दत से और इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम है कि इतने बड़े बड़े समझदार गुणी लोग वहां बैठते हैं कि वहां कोई भी गाने को तैयार हो जाएगा। बट ये देखिए, ये उनका बड़प्पन है कि उनको नए टैलेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि वो भी अपना टैलेंट नए लोग भी दिखा सके। और मेरे एक दोस्त को, क्योंकि हम गाते थे तो उसको पता चला कि बाबा आजमी को असिस्ट करता था, तो उसने बोला चल तू भी चल, गाना चाहिए उनको, सिंगर्स चाहिए। तो हम बोले मेरा क्या काम है वहां पे, हम तो शोज वोज करते हैं, अब उनको अच्छे सिंगर चाहिए होंगे। नहीं नहीं तू चल। और हम पहुंचे और बाबा आजमी आए बाहर, एक तो वो दिखते भी कैफी साहब जैसे ही है तो काफी ऐसा फील हो रहा था, ओ माय गॉड यू नो बाबा आजमी। एंड उन्होंने बोला आप सुनाइए, आप क्या सुना सकती हैं। तो हमने गाना गाया कैफी साहब का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बाबा आजमी डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बोला आप करती क्या है, क्योंकि आप जिसके साथ आई है वो तो मेरा असिस्टेंट है, तो ये आपका दोस्त है, तो मतलब आप सिंगर तो नहीं है, तो आप करती क्या है। तो आई सेड कि सर हम अभी डायरेक्शन पास आउट हैं FTI से और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगी, मतलब आप गाना क्यों नहीं गाती हैं। तो आई सेड सर वो एक डॉक्टर ने बोला था कि हम गाना नहीं गा सकते हैं जीवन भर। तो बोले वो पागल है, वो डॉक्टर पागल है जिसने ये बात आपको बोली है। अब हुआ ये कि वो इतने साल में ये दीपाली की आवाज हील कर चुकी थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो दीपाली के पास नहीं था क्योंकि आवाज तो पैदा हुई है
1: यस
0: जिसके
1: यस
0: साथ
1: यस,
0: आप, वो आवाज तो वैसी ही रहेगी ना, गला खराब हो सकता है, आवाज नहीं जा सकती छोड़ के, आप पैदा हुए हैं उसके साथ, उस मशीन के साथ। तो जब बाबा आजमी ने ये बात बोली ना, तो पता उनके एक अनजान इंसान, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से कुछ महसूस कर रहा है तो वो उनकी आंखों में दिखता है। तो बाबा आजमी की आंखों में दिखा कि उनको इस बात की छटपटाहट हो गई कि ये बच्ची अपना जीवन बाकी कामों में व्यर्थ कर क्यों रही है जब ये ऐसा गाती है। और ये बात मेरे साथ रह गई, और उन्होंने उस साल हमको वहां मौका भी दिया कैफी साहब के
1: महफिल
0: कुछ
1: में गाने
0: महफिल
1: का।
0: में, ये गाना उनका सबसे फेवरेट गाना है बाबा आजमी सर का, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
1: अनुपमा फिल्म का
0: अनुपमा
1: गाना।
0: फिल्म का। और वो उनको मेरी आवाज इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि इस गाने के लिए भैया मार्केट में बहुत बवाल होता है कि हम गाएंगे तो हम गाएंगे, सिंगर्स लूटने के लिए दौड़ते हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव दिस सॉन्ग टू यू।
1: वाह वाह वाह
0: ये
1: वाह,
0: कॉन्फिडेंस जब बाबा आजमी सर ने मेरे अंदर दिखाया तो हमको लगा कि यार ये हम सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं
1: फिर
0: ना।
1: से एक दो रहा गया।
0: फिर एक दो रहा गया
1: आगे बढ़ने से पहले वो ही गाना सुनना चाहिए।

कितनी सुंदर पंक्तियों को चुना आपने गाने के लिए, बहुत शानदार गाना है। और ये इस गाने के सबसे अच्छे अंतरों में से एक है, पलकों की ठंडी सेज पर। क्या बात है, क्या बात है।

0: लकी खाना कहता है ऐसी भी बातें होती हैं और दीपाली की जिंदगी में ऐसी ही बातें हो रही थी। गाना वापस लौट गया था
1: बिल्कुल। वम्मी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज में। जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
2: डूपर है।

0: दुविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार। मनीषा जी,
1: जी जयंत जी,
0: बस एक दिन पहले हमने शिक्षक दिवस मनाया।
1: जी हाँ, सभी शिक्षकों को हमारा प्रणाम।
0: और शिक्षक की बात होती है तो कबीर का एक दोहा बरबस याद आ जाता है,
1: जी।
0: सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समंद की मसी करूं, गुरुगुन लिखा न जाए।
1: वाकई ये बात तो बहुत सच है कि गुरुगुन लिखा न जाए, इसीलिए तो गुरु को और शिक्षक को भी बहुत महत्व हमारे जीवन में दिया गया है। सबसे पहली शिक्षक तो माँ होती है, जो उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, और कई बार तो जो पहला अक्षर होता है वो भी बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है।
0: और जैसे घर में माँ चलना सिखाती है, समाज में कैसे चलना है,
1: जी हाँ,
0: ये गुरु से ही सीखा जा सकता।
1: और वही जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो सब वही जाकर संस्कारित होते हैं और समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके, इस योग्य बनते हैं। और उसका पूरा दायित्व शिक्षक का होता है, क्योंकि बच्चे अपना ज्यादातर वक्त तो स्कूल में ही बिताते हैं और बड़ा एक्टिव वक्त बिताते हैं। जयंत जी,
0: जी
1: एक बात और मैं कहना चाह रही थी कि 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस भी है।
0: देखिए कितना अच्छा संयोग है।
1: जी हाँ, और विश्व साक्षरता दिवस आरंभ हुआ था 1967 में, तब से लेकर अब तक हम निरंतर इस दिन को मनाते आ रहे हैं। और आज भी कहते हुए कई बार अफसोस भी होता है कि हमारे देश का भी कुछ हिस्सा अभी तक साक्षर पूर्णतया हो नहीं पाया है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी है।
0: अवश्य, और आज की तारीख में, आज के जमाने में जिस साक्षरता की बात की जाती है वो है डिजिटल लिटरेसी।
1: जी हाँ, अगर डिजिटली लिटरेट होंगे, यानी अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स के जरिए डिजिटल दुनिया में कदम रखेंगे, तो वो भी बहुत जरूरी है। और कई बार तो घरों में हमने देखा है कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने दादा दादी नाना नानी को डिजिटली साक्षर कर रहे हैं, तो इस चीज का अवश्य ख्याल रखा जाए कि न केवल साक्षरता बल्कि डिजिटली साक्षर होना भी आज के युग में तो बहुत आवश्यक हो गया है।
0: बेहद आवश्यक है। और मनीषा जी, श्रोताओं को इंतजार है कि हम क्या लेकर के आए हैं इस सुंदर संयोग पर उनके लिए।
1: जी हाँ, ये एक योग है। और मैं ये चाह रही थी कि हमने जब इतनी सारी बातें की साक्षरता पर और शिक्षकों पर, तो शिक्षकों के प्रति हमारा जो सम्मान है विविध भारती की ओर से, हम उनको जो सम्मान देना चाह रहे हैं वो होगा गीतों का एक छोटा सा पुष्प, क्योंकि कई फिल्मों में आपको याद होगा जैन जी, बहुत सुंदर कुछ गीत पिक्चराइज किए गए हैं कई अभिनेत्रियों पर, कई कलाकारों पर, जहां शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में सीधे सीधे बातचीत है और वो गीत बहुत मीठे हैं।
0: तो चलिए गीतों का ये गुलदस्ता नजर करते हैं अपने श्रोताओं को,
1: और आइए याद करते हैं उन पुराने गीतों को जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का प्यारा सा संबंध हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है।

0: जी,
1: जी।
0: भारतीय मनीषा में अक्षर को ब्रह्म माना गया है और नाद को भी ब्रह्म माना गया है। नाद ब्रह्म की भी हम उपासना करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आज इन गीतों के जरिए और हमने अपने अक्षरों के जरिए जो आपके समक्ष ध्वनि के रूप में आए, हमने उसके जरिए सम्मान दिया है उन शिक्षकों को जिन्होंने अपना जीवन अहर्निश लगा दिया उन छात्रों को शिक्षित करने में।
1: जी, और इन शिक्षकों का सम्मान होता है हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को, जो हमने मनाया
0: जी
1: शिक्षक दिवस के रूप में। और मनीषा जी, शिक्षा का ये तो एक चलन हुआ
0: जी,
1: मगर शिक्षा के और भी कई साधन हैं, बहुत से मार्ग हैं, माध्यम हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, और फिल्म भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है।
0: जी हाँ, बल्कि मैं तो कहूंगी कि जिंदगी के पग पग पर हमें शिक्षा मिलती है, लेकिन जैसे जयंत जी ने कहा ना कि मनोरंजन की जो हमारे साधन है उनके जरिए भी हम निरंतर शिक्षित होते हैं। जीवन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा है। किसी ने कहा है ना कि जीवन सिखाती बाद में है, पहले परीक्षा ले लेती है। तो ऐसी ही कुछ कहानियां हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कई ऐसे किरदार हैं जिनको हमने पर्दों पर देखा है और उनके जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वाकई बहुत एजुकेट होते हैं और बहुत इंस्पिरेशन, यानी उनसे बहुत ज्यादा हमें प्रेरणा भी मिलती है। फिल्मों में यूं तो नायक नायिका और निर्देशक निर्माता संगीत इन तमाम लोगों से बनकर तैयार होता है एक सुंदर सा गुलदस्ता, और फिल्में हमारे सामने आती हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है कॉमेडियन का।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से हंसते खेलते हुए
0: हाँ।
1: कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं ये हास्य अभिनेता।
0: जी हाँ, और एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक जमाने में हास्य अपने उच्चतम स्तर पर था। उस जमाने में जयंत जी जो फिल्में बना करती थी उसमें जो हास्य अभिनेता होता था वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता था, और उन पर कुछ डायलॉग्स तो ऐसे बने हैं जिन्होंने उन कलाकारों को अमर कर दिया। अब आप मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं
1: बिल्कुल,
0: किस
1: बिल्कुल, और हम
0: की बात कर रही हूं।
1: आज याद करने वाले हैं जाने माने अभिनेता मुकरी साहब को।
0: वाह,
1: और मुकरी साहब का जिक्र होते ही मनीषा जी बताइए कौन सा डायलॉग याद आता है।
0: अरे शराबी फिल्म का सदी के महानायक अमिताभ जी द्वारा कहा गया वो डायलॉग कौन भूल सकता है कि मुझे हो तो नथु लाल जैसी हो
1: वरना ना हो,
0: वरना ना हो। और देखिए हमारे चेहरों पर भी हंसी खिल गई क्योंकि
1: और
0: वो...
1: अपने श्रोताओं को बता दें मनीषा जी, उनका असली नाम था मोहम्मद उमर मुकरी
0: जी,
1: और उनका महाराष्ट्र का जो कोकण इलाका है वहाँ अलीबाग में 5 जनवरी 1922 को उनका जन्म हुआ था और 4 सितंबर है उनका स्मृति दिवस।
0: हम आज मुकरी जी को याद कर रहे हैं, और श्रोताओं मुकरी जी के बारे में कुछ और भी हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्हीं फिल्मों में जो पहला ब्रेक दिया था
1: जी,
0: वो ब्रेक दिया था देविका रानी जी ने, और उनके बारे में जो सिफारिश की थी वो थे उनके स्कूलमेट दिलीप कुमार साहब। उन्होंने देविका रानी जी से कहा था कि इन्हें मौका मिले, और उनकी पहली फिल्म आई थी प्रतिमा जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार जी के साथ अभिनय भी किया था।
1: जी बिल्कुल, बॉम्बे टॉकीज की ये फिल्म थी और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो 600 फिल्मों में हमने उन्हें देखा।
0: बताइए इतने बड़े कलाकार और तकरीबन 50 वर्ष तक का उनका जो फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूशन है उसे कौन भूल सकता है।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से नथुलाल याद आते हैं वैसे एक और किरदार है, फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी
0: तैयब अली। ऐसे बहुत ही अमर किरदारों को उन्होंने पर्दे पर उतारा जयंत जी।
1: तो मुकरी साहब की कौन सी नायाब रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं के लिए आप लेकर आई हैं मनीषा जी?
0: एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास जयंत जी, और देखिए इस रिकॉर्डिंग में, बल्कि सुनिए इस रिकॉर्डिंग में मुकरी जी ने किस बेबाकी से और कितनी जिंदा दिली के साथ अपनी बात कही है कि सुनते सुनते आपको बहुत आनंद आएगा। तो पेश खिदमत है ये खास रिकॉर्डिंग मुकरी साहब की, आइए श्रोताओं सुनते हैं। ये हम आपके लिए खास तौर पर लाए हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनकर।
2: सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप तो मेरी आवाज से पहचान गए होंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मुकरी। आप तो समझ गए होंगे, कद वगैरह तो आपने पर्दे पे देख लिया है। वैसे मेरा जो गानों का टेस्ट है वो एक अजीब किस्म का है। मैं गानों में शायरी और धुन को बहुत ही नजाकत और उसके अंदर सही अल्फाज वगैरह चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता वो जैसे आजकल गाने तूने देखा मैंने देखा मैंने सुना तूने सुना आप पीपल के झाड़ के नीचे प्यार करेंगे वो ये चीजें मुझे साहब बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि गाना हो तो जरा मजे का कि तबीयत खुश हो जाए, यानी एक मूड आ जाए, एक किसी चीज में खो जाए। ये वो गाने जैसे मसलन एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन गाना सुनाने से पहले मैं उसका जरा आपको उसकी स्टोरी सुनाऊं कि क्या हुआ। जब साहब मेरी शादी हुई, मतलब शादी हो रही थी, तो उसमें शादियों में जो रस्म और रिवाज होते हैं, तो हमने हमारी बीवी को कभी देखा ही नहीं। हमारे माँ बाप ने हमारी शादी हमारे फिल्म लाइन में होते हुए भी, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने अपनी बीवी को ही नहीं देखा और शादी कर दी। अब हमको ये फिक्र रही उसके पता नहीं कितने लंबे दांत होंगे, कितनी ना बड़ी नाक होगी, क्या होगा, चीख चीख के दाग होंगे, पता नहीं। इंसान अपने अपने ख्याल में कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन जब हमारे सामने उस रस्म में आईना ला के रखा तो हमने देखा वाह वाह हमारी बीवी गोरी चट्टी है, मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन जब उसने मेरा मुंह देखा तो उसने ये गाना शुरू किया।

थे। महमूद साहब ने एक पिक्चर का प्रोग्राम बनाया, महमूद साहब मुझे बड़ा तकदीर वाला समझते हैं। वैसे वाकई में मेरी कुछ कुदरत की बड़ी मुझ पर मेहरबानी है और मैं बड़ा खुदा से और भगवान से और जो ईश्वर से जिससे आपका आप हर एक के अपने अपने जो है उससे मैं बहुत डरता हूँ। और न किसी का दिल दुखाना, न किसी का गीबत करना, न किसी की बुराई करना, इन चीजों से अपने को कोई लेना देना नहीं। काम अपने को मिलता है, रोटी अपने को मिलती है, रहने को अच्छी तरह से मिलता है, तो फिर इन तमाम चीजों से मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात कि अपने को किसी किस्म की लालच भी नहीं है। तो महमूद साहब जब प्रोग्राम में वो कहते हैं यार तू तो बड़ा लक्की है, मैं हर मेरी पिक्चर तेरी वजह से हिट हो जाती है क्योंकि मैंने उसके पड़ोसन में काम किया, कुंवारा बाप में काम किया। तो जब ये महमूद साहब पिक्चर बना रहे थे जनता हवलदार, तो बस बार बार मेरे आ रहे रोज खाने बीने खा रहे कहने लगे कि मैं और तू दोनों इस पिक्चर में क्या तेरा रोल होगा और ये होगा वो होगा। तो जो राजेश खन्ना साहब ने जो रोल किया था वो तो बोले मैं कर रहा हूँ और मेरा रोल तू कर रहा है। बाद में गोलियों के चक्कर में उन्होंने उनका रोल जो था वो राजेश खन्ना को दिया और मेरा रोल जो रोल था वो खुद ने कर दिया। उसके बाद पिक्चर हो गई फ्लॉप, पिक्चर की डिलीवरी भी नहीं गई। तो जिस दिन आए फिर मेरे यहाँ

तो मेरे उनका यहाँ फैमिली रिलेशन है, तो मेरी बीवी ने खाना भी ना लगा। मैंने कहा महमूद तू बड़ा उदास मालूम हो रहा है, तो कहने लगा यार वो मैं गाना लगाता हूँ, वो मुझसे कहा भूल हुई जिसकी सजा मुझको मिली। मैंने बोला वो सजा ये मिली कि तूने मेरे को नहीं लिया ना पिक्चर में, इसलिए वो तेरे को सजा मिली कि डिलीवरी नहीं गई।

जब मैंने हीरा के अंदर सुल्तान अहमद साहब की पिक्चर में काम किया हीरा में, तो कल्याण जी आनंद जी साहब ने कहा कि भाई जो ये गाना मुकरी का है ये किसी गाने वाले से नहीं, हम मुकरी से गवाएंगे। सुल्तान अहमद कहने लगे साहब मुकरी कैसे गा सकेगा, ये वो तो गाना गाता ही नहीं। कहने लगा नहीं हम उससे गवा लेंगे। तो किशोर कुमार साहब ने जो मेरे साथ जो सुनील दत्त का प्लेबैक दे रहे थे वो गाना किशोर साहब ने मेरे साथ जरा मेहनत की उस गाने में और मैंने वो खुद गाना गाया। वैसे पहले बॉम्बे टाकीज में मुझे जब बॉम्बे टाकीज में दिलीप कुमार साहब के साथ काम मिला प्रतिमा में, जो मेरा रोल था जिससे मैं फिल्म आर्टिस्ट बन गया, तो एक गाना था ठुमक ठुमक चूम छनन मेरे अंगना आवजी अजी आवजी अजी आवजी आवजी ठुमक ठुमक। ये गाना साहब महमूद के वालिद मुमताज अली साहब ने मुझे बराबर इसकी रिहर्सल वगैरह करवा के मुझे तैयार किया और ये मैंने खुद अपने से गाया। वैसे मैं कोई गाना बिना गाने वाला तो मुझे आता नहीं है, ना मुझे ताल सुर का पता रहता है, लेकिन ये एक गाना गाया था और मैंने फिर ये गाना गाया जो हीरा के अंदर मैंने गाया, वो सुन लीजिए। मैंने मेरी अपनी आवाज है।

0: जयंत जी,
1: जी बड़े चाहिए।
0: मुखर्जी की आवाज सुनकर उनकी पूरी शख्सियत सामने आ गई और बहुत आनंद आया उनकी इस रिकॉर्डिंग को सुनकर। बहुत बेबाक और बहुत हंसते हुए उन्होंने अपनी बात कही थी, बहुत
1: बिल्कुल
0: खुश
1: सही
0: मिजाज व्यक्ति।
1: मनीषा जी, हास्य अभिनेता जिस तरह से बहुत जरूरी हिस्सा होता है फिल्मों का, वैसे ही फिल्मों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है फिल्म का संगीत।
0: वो तो मैं कहती हूँ फिल्मों की आत्मा है।
1: बिल्कुल, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जहां बात हो रही है, आज के दिन याद आ रहे हैं विशेष रूप से संगीतकार आदेश श्रीवास्तव।
0: बहुत कम उम्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जो हमारे दौर के थे, आदेश श्रीवास्तव जी, उन्हें हमने खो दिया। ये भी एक बहुत दुखद पहलू रहा।

0: कि 4 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है और 5 सितंबर उनका स्मृति दिवस। बहुत कम उम्र में, मैंने कहा ना जैसे 51 वर्ष की उम्र में वो हमारे बीच से चले गए। कुछ एक बार विविध भारती को ये मौका मिला था इस युवा संगीतकार से मिलने का, और आदेश श्रीवास्तव साहब एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे जिनका संगीत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।
1: जी, जाने मानी गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की छोटी बहन विजेता पंडित से उनका विवाह हुआ था।
0: जी हाँ, और सुलक्षणा पंडित जी और विजेता पंडित जी पंडित प्रताप नारायण की पुत्रियां हैं, तो पूरा जो परिवार है उनका वो संगीत में रचा बसा है। इसके अलावा उनके जो भाई हैं सुलक्षणा पंडित जी के, जतिन ललित, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाद में जतिन पंडित जी ने भी बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया। आदेश श्रीवास्तव जी उसी परिवार से थे। जन्म उनका हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर में।
1: जी, और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन भी किया था, सना नाम की ये शॉर्ट फिल्म थी। और आपको बता दें कि सबसे पहली बार उन्हें जो ब्रेक मिला था फिल्म संगीत के लिए वो थी फिल्म कन्यादान 1993 में, और उसमें लता जी और उदित नारायण का गाया हुआ एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, आगे आओ प्यार करें। इस फिल्म से सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत सी फिल्में हमें मालूम है, चलते चलते, बागवान, कभी खुशी कभी गम, आंखें, रहना है तेरे दिल में भी एक गीत उनका था।
0: फिल्मों में उनके गीत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए, और आज हम श्रोताओं उनकी वो रिकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी। विविध भारती तशरीफ लाए थे आदि जी, और उनसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। उनकी स्मृतियां हमारे पास हैं और वो हमारी धरोहर हैं।
1: तो चलिए सुनते हैं ये नायाब रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म लाइन में आने से पहले मैं बता दूं श्रोताओं को कि मैं जबलपुर का रहने वाला हूं, और जबलपुर में मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था। तो हमारे एमपी के पूरे स्कूलों का कॉम्पिटिशन था म्यूजिक, तो उसमें मैं एक ही गाने में ड्रम्स बजा रहा था और एक कोंगा होता है वो बजा रहा था, और उसमें जज आए थे श्री सपन जगमोहन जी। तो उन्होंने मुझको वहाँ पे देखा, देखा कि एक ही गाने में एक दो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कभी टर्न वो चेयर होती थी रिवॉल्विंग चेयर, उसमें पलट के ड्रम्स बजा रहा हूँ। फिर टीचर बेचारे मेरे स्टिक लिए खड़े रहते थे, वो स्टिक पकड़ाते फिर मैं ऐसा सब चेंज होता था। तो मेरे को जगमोहन अंकल ने बुलाया, बोला कि आर यू प्रोफेशनल? आई सेड नो, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो स्कूल का स्टूडेंट हूँ, बस स्कूल की तरफ से आया हुआ।
3: क्या उम्र रही होगी?
2: आई थिंक 13 साल का हुआ मैं। तो बाद में जब सपन अंकल से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला तुम बॉम्बे आना चाहोगे? तो मैं ऐसा सब बोलते हैं बट कोई बुलाता नहीं है। बोले नहीं, एक शर्त पे, तुम जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे उसके बाद तुम बॉम्बे में आ जाना, मैं तुमको रखूंगा अपने साथ। तो अब उन्होंने एक जो थी एक लालच तो दे दी थी बॉम्बे की, और मुझको अपने सपने आने लगे बॉम्बे के कम उम्र में ही। तो मुंबई के मुझको समय सपने आने लगे, और मैं भी सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो वाकई में मुझको यहाँ बुलाएंगे। और मैं मेहनत पढ़ाई में मैंने चालू कर दी, और वो दिन आ गया जब मैंने 11th का एग्जाम दिया, एंड तो मैं सीधा बॉम्बे आया। वाकई मैं रिजल्ट के लिए वेट नहीं किया, मैंने एग्जाम्स दिए और आ गए। मेरे को जब आया तो मैं यहाँ अंकल के पास आया तो बोले अरे तुम तो सचमुच में आ गए। तो मैं कहा आपने बोला था इसलिए आ गया मैं।
3: रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा आपसे?
2: पूछा उन्होंने कि रिजल्ट, मैं कहा रिजल्ट तो अभी नहीं, मैं एग्जाम दे के आया हूँ, तो दो महीने अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर चला जाऊंगा। तो बोले अच्छा। फिर उन्होंने काफी समझाया, और इधर के हिसाब से ट्रेनिंग, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह चालू हुई। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, इतनी स्ट्रगल की है इस लाइन में। जो आज मेरे सीनियर म्यूजिशियन है, जो आज मेरे साथ बजाते हैं एज ए म्यूजिशियन, वो हमेशा उनकी हर किसी की मैंने दुआएं लेके और आशीर्वाद लेके इस लाइन में कदम रखा।
3: पहली फिल्म कौन सी मिली आपको?
2: सबसे पहली फिल्म मैंने की एक कन्यादान, जो सुधाकर बोकाडे जी ने फर्स्ट ब्रेक दिया मुझको। और जैसा कि हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, एक आदमी का नाम इसमें हमेशा लेता हूँ जिसने मेरे को ये फिल्म दिलाई थी, वो थे जैकी श्रॉफ। फिर सुधाकर बोकाडे जी आए एंड सिटिंग की, और एक ही दिन की सिटिंग में उन्होंने कुछ 32 सॉन्ग्स निकाले मेरे से, उसमें से फिर हमने सेलेक्ट किए। तब जाकर उनकी लगातार मैं तीन फिल्म उनकी कर चुका हूँ, अभी चौथी फिर उनकी लॉन्च होने वाली। सेकेंड फिल्म थी फिल्म आओ प्यार करें, रिलीज पहले वो हो गई, तो उसका गाना था बहुत पॉपुलर हुआ था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, ये काफी हिट हुआ उस। बट एक और गाना था चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, और क्योंकि एक गाना और था जिसमें पूरी पोएट्री थी क्यों फूल खिलते हैं, स्पेशली वो गाना इसलिए अच्छा था लगा मुझको क्योंकि बहुत अच्छा लिखा था श्याम राज जी ने, और गाया था इसको कुमार शानू और विजेता ने।
3: आपकी बहुत सारे जो गीत उनमें विजेता जी का बहुत नाम आया, और आपकी वो जीवन संगिनी है, और ये माना जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का भी हाथ होता है, ऐसी जीवन संगिनी

0: करके आपको अपने जीवन में क्या बदलाव, रचनात्मक बदलाव महसूस हुआ?
1: विजेता का, जैसे आपको बताऊं मैं कि विजेता से शादी करने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, मेरा करियर चेंज हो गया। और कई लोग उससे इस मामले में चिढ़ते भी हैं कि इसने जो है इसको चेंज कर दिया। अच्छा था, म्यूजिशियन था, हमारे साथ काम करता था, अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। तो म्यूजिक डायरेक्टर बनाने में उसका हाथ नहीं है, लेकिन मेरे को चार्जअप करने के लिए कि तुम जिंदगी भर म्यूजिशियन बन के क्या करोगे। और जब अच्छा, मेरा क्या था कि मैं गाने, आपको बताऊं, मैं एज ऑफ व्हेन आई वाज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड, और मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम चले थे तब गाना बनाया था मैंने इंदिरा जी के लिए जबलपुर में। तो मेरे को एक था कंपोजिशन का, एक शुरू से शौक था। फिर बॉम्बे आके मैं 79-80 से मैं गाने बना के रखता जा रहा था। मेरे पास स्टॉक में कम से कम 2000 गाने थे उस समय,
0: अपना एक बैंक
1: कि बना के रखता। मेरी मम्मी पूछती थी तू बुला किसी को सुनाता तो है नहीं, तू बनाता ही रहता ऐसा क्यों? मैं कहा अभी नहीं, जब होगा तब सुनाऊंगा मैं। तो ये ऐसा होता था शादी के पहले, माँ मेरे को काफी वो करती थी,
0: कंट्रोल करती थी।
1: शादी के बाद विजेता आ गई तो विजेता ने बोला कि, तो फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा फिर मैं एज अ म्यूजिशियन कहीं पे भी काम नहीं करूंगा। बड़े भाई हैं, उनने भी काफी मुझको इसमें सपोर्ट किया। मेरे स्ट्रगल पीरियड में जब मैं बॉम्बे आया तो वो मेरे साथ थे यहाँ पे, और आज भी उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। बट वो जबलपुर में है, मैं बॉम्बे में हूँ। आज भी मैं जैसे बनारस अभी गया था मैं बीच में, तो बनारस में इतना प्यार, वहाँ पे एक इंटीरियर में इतना प्यार मिलता है जब इनको पता चलता है तो, कि फिल्म लाइन से जुड़े हैं, गाना सुनते हैं लोग, तो इतना वो लोग इज्जत और इतना मान सम्मान देते हैं और उससे ज्यादा प्यार देते हैं।
0: आदेश जी, आपकी यादों में कहीं बचपन के किसी उम्र के हिस्से में रेडियो किसी रूप में जुड़ा रहा?
1: मैं जबलपुर में था तो एक शाम को 6 बजे प्रोग्राम होता था युववाणी का। वो युववाणी में होता था कि एमपी के सब कलाकारों को मौका मिलता था, फिर उसमें मैंने भी गाया था। लेकिन जब तक गाया नहीं था तो मैं शाम को 6 बजे वो बैंड वाला रेडियो होता था, वो धागा रखता था उसमें से, और मेरे मोहल्ले में भाई के बगीचे में सबसे बड़ा रेडियो मेरे घर में ही था। सब आ जाते थे सुनने के लिए, फिर मैं उसको लाउड करके तमाम उसमें एम्पलीफायर वगैरह लगा के मैंने और स्पीकर एक्स्ट्रा लगा के लगाता था। इंटीरियर में आज भी हमारे जो देहाती खुशबू है जिसको बोलते हैं, जो गाँव में, आज भी रेडियो को ही ज्यादा महत्व देते हैं और आज भी विविध भारती ही सुनते हैं। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अपने चाहने वालों से बात करूं और उसका जरिया है विविध भारती का ये प्रोग्राम।
0: मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अपने बचपन के और कॉलेज के जमाने में वो कौन से गीत खास उससे आप गुनगुनाया करते थे?
1: मेरा एक फेवरेट गाना था, मैं बहुत गाता था, वो कांटों से खींच के आंचल।
0: अच्छा, क्या वजह थी इसकी?
1: ये उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता था मुझको, और फिर उसके बाद मेरे को मदन मोहन जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। मुझको सबसे ज्यादा पसंद थे किशोर दा।
0: अच्छा,
1: किशोर दा के गाने बहुत गाता था मैं, स्टेज पे भी गाता था और फिर रफी साहब के गाता था। किशोर दा के मैं एक्सप्रेशन का बहुत, वो जो एक उनमें एक कला थी, जिस आर्टिस्ट के लिए गाते थे ऐसा लगता था वो वही आर्टिस्ट गा रहा है।
0: मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि संगीत के सुरों के लिए वो जो एक लगाव होता है वो आपके अंदर पहले से था, और घर में ऐसा कोई माहौल था जिससे आपको और ज्यादा प्रेरणा मिली?
1: ये क्या था कि बचपन से ही घर में ऐसा था कि म्यूजिकल माहौल था मेरे, बट शौकिया तौर पे था। और उसके बाद फिर वहाँ जब जबलपुर से यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने जो गुणी जनों के साथ जो काम करने का मुझको मौका मिला, मैं सोचता हूँ मैं बहुत लकी था। बिगनिंग में साल दो साल भर पंचमदा के साथ भी था मैं, और मैंने काम किया शंकर जी के साथ भी एज ए म्यूजिशियन, ओपन डियर साहब के साथ, सलील दा के साथ भी मैंने मौका मिला मुझको। और उसके बाद फिर मैंने 1982 में ज्वाइन किया था अपना श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, जो कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी का जो काम करने का जो एक तरीका, एक जो ढंग, वो एक ऐसा लगता था कि ये स्कूल है, और वहाँ इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। और मैं सोचता हूँ कि उसी के कारण आज वही प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो जितनी लंबी इनिंग उन लोग ने खेली है और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि आज के जितने भी नए संगीतकार हैं वो कोई भी सोच भी नहीं सकता उनके बारे में। जब मैंने ज्वाइन किया था उनको तो उत्सव की रिकॉर्डिंग, बेला महका रे महका,
0: बहुत खूबसूरत गीत।
1: फिर बैकग्राउंड म्यूजिक था उत्सव का, उसमें मैं जब बजा रहा था तो उसमें लयकारी थी पूरी, और जो प्यारे जी ने किया था अरेंजमेंट उसमें 9 मात्रा 6 मात्रा ये सब कुछ आवर्तनों के बाद आके एक साथ सम आता था, और मुझको जो सौंपा गया था वो था सम देना। तो अगर मैं किसी कोई आड़े को सुन रहा हूँ, अगर कान मैंने ध्यान दिया तो मेरा सम गया। और फिर पंचमदा की जो मैं मजा आया, उनके एक रिदम का एक अलग था क्लियरिटी, उनकी हर रिकॉर्डिंग में क्लीननेस बहुत थी। अगर एक खंजरी टैमरिन बज रही है तो एक उसका कुछ अगर बीट रखी उन्होंने तो उसकी एक अहमियत उस बीट की है। दिखने में छोटा इंस्ट्रूमेंट है बट वो आपको रजिस्टर हो जाएगा, कभी बोल ना बोल के साथ वो आएगा ही आएगा। जैसे ट्रायंगल एक था, ट्रायंगल का यूज बहुत किया पंचमदा ने अपना हम किसी से कम नहीं के गानों में भी किया था, और पहाड़ी तो खैर बहुत उन्होंने यूज किया पहाड़ी राग में।
0: आपके म्यूजिक की जो विशेषता क्या है जिसमें आदेश श्रीवास्तव एक मौलिक संगीतकार के रूप में नजर आता है?
1: देखिए मेरा क्या है कि मैं बहुत ओरिजिनल आदमी हूँ, मैं आर्टिफिशियल चीजों से बहुत चिढ़ता हूँ मैं, तो वही चीज मैंने अपनाई है अपने म्यूजिक में भी। तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा अपना अलग गाना छाप छोड़ूं। लोगों ने खूब आइटम दिए, लोगों ने डबल मीनिंग्स गाने दिए, बट मैंने कहा कि नहीं, उस दरमियान जो था मैंने कहा नहीं, मेरे को मेलोडी पकड़नी।

0: श्रोताओ, मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी की ये रिकॉर्डिंग हमने सुनी। आपसे बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने। ये रिकॉर्डिंग जो थी ये हमारे संग्रहालय से हम ढूंढ कर लाए थे और आदेश जी को याद कर रहे थे। हमने आज आपको इस कार्यक्रम का संपादित अंश सुनवाया। कभी मौका मिला तो आपको इस कार्यक्रम को पूरा भी सुनवाएंगे। आज के विविधा के अब हम अंतिम सेगमेंट पे आ गए हैं जहां एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है।
1: जी मनीषा जी, हमने एक संगीतकार को याद किया और एक और संगीतकार को याद करेंगे जो अपने आप में बहुत महान संगीतज्ञ थे, डॉक्टर भूपेन हजारिका।

0: अमरगीत के गायक
1: जी
0: असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका, बल्कि मैं कहूंगी असम ही क्यों, पूरे भारत वर्ष के हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका, पूर्वोत्तर के संगीत को पूरे भारत वर्ष में प्रतिष्ठित करने और लोकप्रिय करने का महत्वपूर्ण दायित्व डॉक्टर भूपेन हजारिका ने संभाला था।
1: जी, इस महान कलाकार का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था असम के सदियां ग्राम में।
0: हाँ।
1: और हम उन्हें इसी उपलक्ष्य में आज याद कर रहे हैं। मूलतः इन्होंने असमी भाषा में बहुत से गीत तैयार किए और ये बाद में अनुवादित हुए बांग्ला और हिंदी में।
0: वैसे कई भाषाओं में उनका रचना संसार अनुवादित हुआ, लेकिन बांग्ला में बहुत अधिक पाया जाता है और बांग्ला के बहुत अच्छे जानकार थे डॉक्टर भूपेन हजारिका।
1: और इनके गीतों में विश्व बंधुत्व और एकात्मिकता की बात हमेशा ये करते रहे।
0: जी हाँ, संगीत तो वैसे सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है और जब ऐसे सुदूर पूर्वोत्तर के अंचल से आई हुई खुशबू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महकने लगी, तब हमारा हिंदी का जो सिने संसार है वो और अधिक समृद्ध हुआ। डॉक्टर भूपेन हजारिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसे हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। वैसे इस रिकॉर्डिंग की एक खासियत है, इसमें भूपेन जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हम उसका चूंकि कुछ अंश अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। उन्होंने उसमें संगीत के, खासतौर पर लोक संगीत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है इसके लिए हम हमेशा याद करते हैं छाया गांगुली जी को, जिन्होंने डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की ये इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग हमें दी है, विविध भारती के लिए की है, तो उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और आइए सुनते हैं इस अमर रिकॉर्डिंग को, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी धरोहर है, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी से बातचीत की है राम सिंह पवार ने।
2: भूपेन जी, अपने उभरते बाल्यकाली के बारे में कुछ कहेंगे?
3: मैं एक साधारण सांस्कृतिक मजदूर हूँ और हमारा सदिया गांव जो है उत्तर पूर्व भारत सीमांत में है
2: जी।
3: अभी अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर में है
2: जी।
3: तो वहाँ यहाँ नदी, वहाँ पहाड़, सब के बीच हम कूद के खेल के बड़े हुए थे। हमारे माता जी बहुत अच्छा गाते थे, वो बंगाली रविंद्र संगीत गाती थी
2: जी
3: माँ, और पिताजी वैष्णव संगीत गाते थे, मतलब स्कूल टीचर थे
2: जी।
3: पिताजी स्कूल टीचर थे
2: जी।
3: तो वातावरण संगीत का था घर में, तो इसलिए यहाँ पारिपार्शिक जितना छंद है, जितना सुर है, वो तो आया उसी के,
2: ये तो विरासत में
3: जी। हाँ, अभी भी याद है माँ गाती थी ललेबाई।

इमीडिएट गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में किए हैं। उसके बाद लड़ाई आया, महायुद्ध आया, अंधेरा हो गया आसाम, तो हम आके कलकत्ता में चले आए थे। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए थे। बीए एमए पॉलिटिकल साइंस में एमए किए थे।

0: के पहले कुछ अपने जीवन की अनुभूतियाँ।
1: गांधी जी जी हमारा आसाम में कभी कभी आते थे, जब तब मेरे पिताजी का नाम है नीलकंठ हजारिका, तो गांधी जी आके कहते कि वो हजारिका का दो बच्चा है, हैं भूपेन और बहन का नाम था सुदक्षिणा, ये दोनों का भजन सुनना चाहते हैं। तो पहले हमें आशीर्वाद मिला था महात्मा गांधी दोनों, वो क्या गाए थे वो भी एक ब्रजावली भाषा में, आसाम के पुराना असमिया में थे।

0: दाना शंकर देव की अनुभूति, गांधी जी की अनुभूति, इसमें बड़े हुए हैं हम लोग। इसके ऊपर और दो महान कलाकार थे, असम के ज्योति प्रसाद और विष्णु प्रसाद
1: जी।
0: ये दोनों बहुत बड़ा विप्लवी कवि थे और कंपोजर थे। ये दोनों हमें ऐसा इंस्पायर किया था कि 13 साल में हमने भी लिखना शुरू किया। अग्नि युगर फिरिंग अतिमय नतुन अहम गढ़ीम नतुन भारत गढ़ीम नतुन भारत गढ़ीम सर्वहारार सर्वस्व पुनर्फिलाय आनीम। सर्वहारा का सर्वस्व हम फिर लोटा के ले आएंगे, एक नया भारत बनाएंगे जहाँ धर्म व्यवसायी था नहीं था, जहाँ धर्म व्यवसायी का जगह नहीं रहेगा इत्यादि। तो 13 साल उम्र में वो लिखे थे। एक बात है कि हमारा असम पूर्व प्रांत में है और वहाँ है चाइना, इधर बर्मा है, यहाँ तिब्बत है। तो हम लिखे थे कि हम कुछ प्रतिध्वनि सुन रहे हैं और ट्यून भी ऐसा किए थे, दर डा डा डा डा डा डे, प्रतिध्वनि सुनो प्रतिध्वनि सुनो प्रतिध्वनि सुनो मैं प्रतिध्वनि सुनो मोर गाँव रे सीमारे पहाड़ तीर सीपार नतुन सियार तीर प्रतिध्वनि सुनो। I listen to the new sounds that is coming beyond, from beyond the hills. I don't know what are there. Pratidhani, ek Indian youngster ka, ye man ka ek ichha hai ki Asia mein aur kahan kahan kya hai charo taraf. आज सुनाना चाहता हूँ। ये असमिया गाना का ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन किए थे हमारा शिवदास बैनर्जी, बंगाल के कवि, गीति कवि। प्रतिध्वनि सुनी और प्रतिध्वनि सुनी।

0: आजादी से पहले स्वतंत्रता के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे थे। गीत, संगीत, अभिनय, फिल्म और रंगमंच ने भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। और आप भी उस समय इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस समय के कुछ संस्मरण और उस दिशा में आपके प्रयास।
1: अमेरिका में हम जब डॉक्टरेट कर रहे थे
0: जी,
1: तब सौभाग्य हुआ था पॉल रॉबसन से मिलने का। उसके बाद उनके पीपल सॉन्ग जो थे सारा दुनिया, जैसे ओल्ड मैन रिवर, यू डोंट से नथिंग, यू जस्ट कीप रोलिंग अलोंग, ये सब जब सुना वहाँ, सारे चार साल के बाद जब ब्रह्मपुत्र के किनारे फिर चले आए, तब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर। उसमें कैफी आजमी साहब थे, सलील चौधरी थे गाने में, हम लोग क्रिएट कर रहे थे, भूपेन हजारिका आसाम में, सुरेंद्र कौर पंजाब में, जसवंत ठाकुर बड़ौदा में, इसके बाद थिएटर में शंभु मित्र, उत्पल दत्त, बलराज सहनी यहाँ बॉम्बे में। तो उसमें हम लोग एक नया कंटेंट देना चाहते थे, लोक संगीत वगैरह को फिर उद्धार करके, पुनरुद्धार करके उसको ठीक से फिर नया क्रिएशन में लोक संगीत के ऊपर रचनाएं करके हम लोग स्टेज, फिल्म, माइक्रोफोन, मोशन पिक्चर, स्टेज,
0: तो आजादी के आंदोलन में सबके द्वारा आपने
1: वो तो स्वाधीनता के बाद के बाद इप्टा ज्यादा ये हुआ था।
0: हाँ जी।
1: और हम आके ज्वाइन किए थे अमेरिका से लौट के आए थे 52 साल में, आफ्टर माय पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ आके जब गाना लिखना शुरू किया, चाय बगान है हमारा असम में, हाईएस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड इज असम, तो वहाँ उन लोगों के बात कह के टू लिप्स एंड ए बड, आदमी आज टू लिप्स और एक बड हो गया, और कौन इनको डिस्ट्रॉय करने आए हैं, ऐसा एक रिवोल्यूशनरी नहीं है लेकिन सोशल कंटेंट स्ट्रांग था। तो उसी वो एक एटी कोली दुटी पात रतनपुर बागीसात लह बहिया हाते रे कोने नो सिंगीले ओ कोने नो सिंगीले, इसे को हमारा गुलजार भाई,
0: अच्छा
1: मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें समझते भी है
0: जी, हाँ।
1: तो हिंदी में रूपांतर करके ये प्रचार कर रहे हैं अभी भी, एक कली दो पत्तियां, और गुलजार भाई खुद प्रेजेंट किए हैं और कमेंट्री देके।
2: एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी, एक पूरा लैंडस्केप है, और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं।

0: भूपेन जी, विद्या अध्ययन के दौरान और वैसे भी आप तो सारी दुनिया घूमे हैं, तो विश्व एकात्मता अथवा यानी विश्व बंधुत्व के बारे में भी आपने निश्चय ही कुछ सोचा और लिखा होगा।
1: जी, हम जो जब दुनिया देखे थे तो ऐसे देखे थे कि ड्रम मुंबसा से लेकर बेल्जियम कांगो तक
0: जी,
1: अफ्रीकन लोग कैसे ड्रम को यूज करते हैं, ये अध्ययन करने के लिए भी हम गए थे। इसलिए सारा दुनिया घूम के जब देखा कि ऐसे जैसे मिसिसिपी में सुना, डोंट क्राई माय मेलंकोली बेब डोंट क्राई, मत रोना मेरा बेटा मत रोना। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का में आके सुना, ओ बिहुरेनो बिरीना ओ आइता बिहुरेनो बिरीना पार। सो आई वांटेड टू बी ऑलवेज एन इटर्नल ट्रेवलर, तो इसलिए एक गाना लिखा था, आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर, पृथ्वी आमाके आपन करेछे, भूलेछि निजेर घर, घर ही भूल गए, सारा दुनिया हमारा घर हो गया। तो गुलजार जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको रूपांतर किए थे, याजाबर ट्रांसलेशन किए हैं, आवारा
0: जी,
1: हाँ आवारा हूँ।

0: संगीत का विस्तार अपार होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। महान संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका को ये हमारी आदरांजलि थी। आज हमने उन्हें याद किया विविधा के इस अंक में, और अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल। और संगीत की इन बातों में, इन्हीं यादों में डूबते हुए, लबरेज रहते हुए हम अपने श्रोताओं से आज विदा ले रहे हैं।
0: जी हाँ, अब दीजिए इस अंक को समेटने की इजाजत। आप सभी से अनुमति लेती हूँ मैं मनीषा जैन
1: और जयंत पात्रीकर,
0: हम दोनों ही का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार

0: होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की पांचवें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है राकेश रोशन के सदाबहार गीतों की माला से। आज राकेश रोशन का जन्मदिन है, उनको विविध भारती परिवार की ओर से, आपकी तरफ से, हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, बिंदिया गोस्वामी और राकेश रोशन की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, धुन है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत रचना इंदिवर की, संगीत रचना राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है काम चोर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं राजेश रोशन, फिल्म का नाम है खेल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सुनेंगे हम नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत रचना राजेंद्र वर्मा की, संगीतकार है विजय बटालवीकर, फिल्म का नाम है बहू की आवाज़।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। गीत के बोल हैं इंदीवर के, तर्ज है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है खुदगर्ज।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का हुआ आकस्मिक निधन। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज गिरिडीह में किया जाएगा अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। राज्य सरकार ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर घोषित किया 2 दिवसीय राजकीय शोक। कल बंद रहेंगे राज्य सरकार के सभी कार्यालय। झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत संशोधन के लिए अब तक मिले 5.5 लाख से अधिक आवेदन, 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी अंतिम मतदाता सूची। रांची व आसपास के इलाकों में आज और कल हो सकती है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। 9 और 10 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। जापान में खेले जाने वाले एशियन गेम्स 2026 में राज्य के 7 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भारतीय टीम का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का आज आकस्मिक निधन हो गया। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अंत्येष्टि आज अपराह्न 3:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ गिरिडीह में हरसिंह रायडीह घाट में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के असामयिक निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। ईश्वर शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है। एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देर रात उनके असामयिक निधन की खबर मिली। उनका निधन राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है।
1: राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत जानकार और समय पड़ने पर बहुत कड़े निर्णय लेने की उनकी क्षमता थी। कैसे झारखंड के हितों की रक्षा हो उसके लिए सदैव तत्पर रहे। हम लोगों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखने का काम किया है, तो आज विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की बात, इस तरह की घटना हो गई है।
0: मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर और खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप ने भी शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमारे राज्य के लिए एक संकट मोचक की तरह काम करते थे।
2: मेरे बहुत नजदीकी साथी थे, बतौर मंत्री हुए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए वो संकट मोचक के रूप में थे। एक राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति, उनके जाने की क्षतिपूर्ति संभव नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत अन्य नेताओं ने भी दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उनका निधन राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है।
3: झारखंड सरकार के मंत्री और इस तरह असामयिक निधन निश्चित रूप से बहुत ही क्षति हुई है। मिलनसार थे, लोगों से मिलना, बात करना और बहुत अच्छे विचार से लोगों से अपनी बात भी करते थे, समस्या का समाधान भी देते थे, तो हमें लगता है कि एक पुण्य क्षति है।
0: राज्य सरकार द्वारा नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आकस्मिक निधन पर 6 और 7 सितंबर को 2 दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे तथा किसी प्रकार का राजकीय समारोह नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने कल सभी कार्यालय बंद रखने का निर्णय लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बताया कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। इस क्रम में कल राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय पर MMDRA एक्ट के विरुद्ध होने वाले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इधर भाजपा ने भी अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। आज शाम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू की प्रेस वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक फॉर्म 6 के लिए 3,41,000 से अधिक और फॉर्म 8 के लिए 2,18,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार दावा व आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। राजधानी रांची में अपराध पर नियंत्रण और पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में रांची पुलिस ने नई पहल शुरू की है। रांची के SSP राकेश रंजन ने लोगों के साथ जनवार्ता कर उनके क्षेत्र की समस्याओं, आपराधिक गतिविधियों और नशे के कारोबार से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की।
4: जनवार्ता प्रोग्राम के तहत जो है अलग अलग एरियाज के लोगों से मिल रहे हैं और उनसे उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और पुलिसिंग को उनके क्षेत्र में कैसे बेहतर किया जाए इस पर भी हम लोग सार्थक परिचर्चा जो कर रहे हैं। पुलिसिंग में कहाँ पे गैप्स रह जा रहे हैं, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, उनकी जो शिकायत थी पुलिस के प्रति उसको भी हम लोगों ने सुना और समझने का प्रयास किया।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 6 और 7 सितंबर को रांची व आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 9 और 10 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चतरा जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जलप्रपात, तालाब और जलाशयों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके मद्देनजर जिले के उपायुक्त रवि आनंद ने जिले वासियों और खासकर अभिभावकों से अपील की है कि वे इन स्थानों पर बारिश के दौरान अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से न जाने दें। एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत जापान में 19 सितंबर से हो रही है। 4 अक्टूबर तक चलने वाले एशियन गेम्स 26 में इस बार राज्य के 7 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें महिला हॉकी में हॉकी टीम की 4 खिलाड़ी सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग शामिल हैं, जबकि तीरंदाजी में अंकिता भगत, साइकिलिंग में सरिता कुमारी और क्रिकेट में ईशान किशन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है, जिसके तहत पहले चरण में 5 भवनों को जोड़ा गया है। आज से बुकिंग शुरू हो गई है। नागरिक नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र के नेमारी पाथर गांव में डायन के आरोप में 84 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। SDPO नवल किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 महिलाओं को गिरफ्तार और एक किशोरी को निरुद्ध किया है, जबकि 3 फरार पुरुष आरोपियों की तलाश जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का हुआ आकस्मिक निधन। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज गिरिडीह में किया जाएगा अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। राज्य सरकार ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर घोषित किया 2 दिवसीय राजकीय शोक। कल बंद रहेंगे राज्य सरकार के सभी कार्यालय। झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत संशोधन के लिए अब तक मिले 5.5 लाख से अधिक आवेदन। 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी अंतिम मतदाता सूची। रांची व आसपास के इलाकों में आज और कल हो सकती है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। 9 और 10 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की है संभावना। और जापान में खेले जाने वाले एशियन गेम्स 2026 में राज्य के 7 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भारतीय टीम का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

फिल्म आशा का गीत याद आ रहा है, जाने हम सड़क के लोगों से, जितेंद्र उसमें ट्रक चलाते हैं। अगला मैसेज है कि सफर जीवन का हो, किसी मंजिल तक जाने का हो, किसी के दिल तक पहुंचने का हो, या सुरीला सफर विविध भारती के साथ हो, हम तो हर सफर को एंजॉय करते हैं क्योंकि असली मजा और सुनहरी यादें सफर की होती हैं। मंजिल या मकाम पर पहुंचने के बाद भी वही हमारे जहन में रहती हैं। सबसे लंबी सड़क मार्ग का सफर मेरा कटक से पुणे का था। काफी रोमांचक था। चिल्का झील, घने जंगलों, पहाड़ों से गुजरते हुए पहली रात, विशाखापट्टनम समुद्र किनारे दूसरी रात, और हैदराबाद में गुजरने के बाद सोलापुर होते पुणे पहुंचे। मैं, मेरी पत्नी, बेटा, बेटी के संग सफर के हमने खूब मजे लिए। आवाज की दुनिया के हमारे दोस्त हमारी ही तरह इबारत लिखना सीख गए हैं। गीतों के इस सफर में बढ़ते हैं अब आगे। बेहतरीन लोकेशन और रोमांटिक फिल्म कश्मीर की कली, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन राजीव लाल को एक सीधी साधी फूल बेचने वाली लड़की चंपा से प्यार हो जाता है, और पेशे से ट्रक ड्राइवर मोहन चंपा पर बुरी नजर रखता है और उसके गरीब पिता दीनू को ब्लैकमेल करता है। कहानी कई उतार चढ़ाव, गलत पहचान का नाटक, खलनायकों की चालें, और अंत में सभी गलत फहमियां दूर होकर एक सुखद मिलन होता है। तो किस खूबसूरत लोकेशन पर यह फिल्म बनाई गई थी। वैसे तो उसमें फिल्म के नाम में ही वो बात छुपी है। और राजू, चंपा, मोहन की भूमिकाओं में कौन से कलाकार थे, और निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे ये जो गाना अभी आप सुनेंगे, इस ट्रक में भेस बदल कर गाना कौन से अभिनेता गा रहे हैं, और गीत में आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार हैं OP नैयर, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं। मुख्य कलाकार थे शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण, नजीर हुसैन, मदन पुरी और टुनटुन। कश्मीर की कली, इस फिल्म की शूटिंग श्रीनगर और वहां की मशहूर डल झील और उसके आसपास की खूबसूरत वादियों में की गई थी। निर्देशक थे शक्ति सामंत और कश्मीर की कली ये फिल्म थी शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म। हमारे साथियों ने हमें कुछ और मैसेज लिखे हैं कि फिल्म नमकीन का गीत सफर में होता है, ट्रक में संजीव कुमार गाते हैं, ठीक है। फिल्म 9-2-11 का गीत हम है राही प्यार के देव आनंद ट्रक चलाते हुए गाते हैं और फिल्म जौहर महमूद के गाने हम दो दीवाने मिलके भी सफर में गा रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक राजा हिंदुस्तानी की, जिसमें आमिर खान एक सीधे साधे टैक्सी ड्राइवर राजा की भूमिका में नजर आए थे, जिसे एक बेहद अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। तो अब ये बताइए कि टैक्सी ड्राइवर राजा किस इलाके में टैक्सी चलाते थे और कौन थी वो अमीर लड़की, और लड़की की माता जी की भूमिका में नजर आने वाली अभिनेत्री का भी हमें नाम बताएं, और साथ में हमें ये भी बताएं कि इस फिल्म में जो छोटा बच्चा था वो आजकल एक बड़ा अभिनेता है, तो उस छोटे बच्चे का भी हमें नाम बताएं। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कभी कभी अक्सर लोग टैक्सी, रिक्शा, बसों में अपना कीमती सामान भूल जाते हैं, तो अचानक से, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो टैक्सी चालक होते हैं वो पूरी ईमानदारी से आपका वो कीमती सामान लौटा देते हैं। तो कभी कुछ ऐसी बातें आपके साथ हुई या आपने देखी या आपने सुनी हो तो वो भी हमें लिख दीजिए, हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज में ये गीत, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रावण का।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी की ज्यादातर शूटिंग ऊटी, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक और उत्तराखंड के रानीखेत में हुई और टैक्सी ड्राइवर राजा एक काल्पनिक इलाके पालनखेत में अपनी टैक्सी चलाते थे। आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय, जॉनी लीवर, कुणाल खेमू, अर्चना पूरन सिंह, मोनिश बहल, टीकू तलसानिया, फरीदा जलाल, नवनीत निशान और वीरू कृष्णन इस फिल्म में नजर आए थे। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भूटान में जब मैं गया था तब गर्मी का मौसम था, फिर भी गर्मी में बहुत ही मजा उठाया हम लोगों ने। अगला ये मैसेज है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सफर में गाए जाने वाले गीत एक दो नहीं बहुत सारे हैं, जैसे कि परिचय में मुसाफिर हूँ यारो। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर का ये सफर सचमुच बहुत ही रोमांचक सफर है, जिसमें हम अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं। साथियों, सड़क पर तो हम सभी रोज चलते हैं, गुजरते हैं, पर एक बेहद चर्चित रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आई थी सड़क, जिसमें संजय दत्त ने रवि नाम के एक टैक्सी ड्राइवर का किरदार निभाया था। तो इस फिल्म की अभिनेत्री और संजय दत्त के दोस्त के रोल में नजर आने वाले अभिनेता और खलनायक के नाम भी हमें लिख दीजिए, साथ ही निर्देशक का नाम भी लिखकर भेजें। इस गीत में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है सड़क।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं पूजा भट्ट, संजय दत्त, दीपक तिजोरी, नीलिमा आजम और सदाशिव अमरापुर का जो महारानी के किरदार में नजर आए थे, अवतार गिल, जावेद खान, पंकज धीर और निर्देशक थे महेश भट्ट। साथियों, आपने कभी ट्रक की सवारी की है या उसमें बैठकर किसी शादी में गए हैं या ट्रक से जुड़ी कोई बात हो तो वो भी हमें बताएं। खेती करने में ट्रक का कितना और कैसा योगदान होता है वो भी बताएं। और अब बात उस ब्लॉकबस्टर मूवी की जिसमें सनी देओल पेशे से एक देसी ट्रक ड्राइवर के रोल में नजर आते हैं और इस फिल्म में ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा भी है। तो उस फिल्म का नाम और सनी देओल की भूमिका का नाम, निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे इस फिल्म में सनी देओल ने एक चीज उखाड़ ली थी, क्या थी वो चीज उसका भी नाम लिख दे। तब तक आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाजें हैं उदित नारायण और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं हमारे पेज पर। सनी देओल की भूमिका वाले किरदार का नाम था तारा सिंह, साथ में थे अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, सुरेश ओबराय और

गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह ने जमीन से सीधे एक लोहे का हैंडपंप उखाड़ लिया था, जिसे हिंदी फिल्मों के इतिहास के सबसे लोकप्रिय सीन्स में गिना जाता है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं अनिल शर्मा। राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म को देखकर जब जब फूल खिले वाले शशि कपूर और नंदा याद आ जाते हैं हमें। साथी ने लिखा है कि मज़ेदार मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा है और मेरी सात गीतों की लिखी हुई इबारत में से छठे नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल हो गया है। और एक साथी ने लिखा है कि सड़कों के सफर में हम कई बार ट्रक्स और सामान ले जाने वाली गाड़ियों के पीछे लिखी हुई लाइनें जो लिखी होती हैं उसे पढ़ते हैं, जैसे कि अनारकली अरे बढ़कर चली, जो सफ़र प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफ़र, नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफ़र, और बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं हाईवे की। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा महावीर भाई नाम के ट्रक ड्राइवर और किडनैपर की भूमिका में नजर आए थे और नायिका के साथ भारत के अलग अलग रास्तों पर ट्रक के जरिए वो सफर करते हैं। तो बताइए उन इलाकों के लोकेशन के नाम और फिल्म के निर्देशक का भी नाम बताएं, साथ ही उन जगहों के बारे में आप कोई खास जानकारी रखते हो तो वो भी हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं, और आलिया भट्ट की पहली फिल्म का नाम क्या था वो भी लिख दें, और इस गीत में आवाजें किसकी हैं वो भी बताएं। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

साथियों, आपके जवाब हम पढ़ देते हैं। निर्देशक हैं इम्तियाज अली और उनकी ये जो फिल्म हाईवे है, भारत के अलग अलग इलाकों में फिल्माई गई थी, जिनके नाम है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और संघर्ष में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था और इस गीत में आवाजें थी सुल्ताना और ज्योति नूरानी की। साथियों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर का, इस फिल्म का गीत, और इस गीत का एक जवाब हमें जल्दी से लिखकर भेज दीजिए कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है।

फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत था सचिन देव बर्मन का, और इस फिल्म में नजर आए थे देव आनंद, कल्पना कार्तिक, जॉनी वॉकर, और ये जो गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री का नाम था शीला रमानी।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के फाइनल में चीन की जोड़ी के साथ खेल रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम लालिमा अनेजा डैंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आप हैं। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
4: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश

0: देश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर एनडीएमसी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच एनडीएमसी नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
2: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष फरहत नाज।
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व तो आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उप महापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार है गौहर कानपुरी, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है जख्मी।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं अमित खन्ना, संगीतकार हैं राजेश रोशन, फिल्म का नाम है स्वामी।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके पत्र, आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। और कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइशें भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी और शुभम दयाल खटक, चारकोप कांदिवली वेस्ट मुंबई से अनिल कुमार वैद्य, गांव पालधी महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहते हैं संजय पाटिल, नरेंद्र पाटिल, शेखर पाटिल, चेतना पाटिल, मानसी पाटिल, किरण पाटिल और शैला बाई पाटिल, कृष्णा कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो उबैद, अलीना जुनैद, रजिया मुआज और आयात मंसूरी, और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंदडाने, अर्चना प्रतिभा ताई और पद्माकर गोंदडाने। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है जांबाज।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। राजनगर कांति निकेतन मधुबनी बिहार से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रिद्धि सिद्धि और कोमल गुप्ता ने, कुंवर कॉलोनी एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा, खामगांव जिला बुल्डाना से करीम शाह, गणेश गरड, शेख मोहसिन, लक्ष्मण उपासे, गोपाल काड़े और राम बाड़खे ने

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से मुन्ने मियां अंसारी, अयान अंसारी, नफीस अंसारी, शाहिद अहमद अंसारी और विंस टेलर। सदर नागपुर से कमल गोल्दा, अंकित गोल्दा, अभिषेक गोल्दा, प्रेम लता गोल्दा और समस्त गोल्दा परिवार। आमला ग्राम अंधारिया बैतूल एमपी से वीरेश झारे, योगेश झारे, त्रिवेश झारे और नवदीप। नेरदे वर्धा छिंदवाड़ा से पूजा देवी, बलराम पटेल, जानवी रामा और देव। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलविंदर कौर धीमान, रोनित नीशु और भूपेंद्र। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज है मोहम्मद रफी की, गीत को लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है उषा खन्ना का और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है और इसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। मालेगांव जिला वाशिम महाराष्ट्र से अरविंद साखरकर, सुनीता, रोहित, निखिल और दीप माला साखरकर। रणपिसे नगर अकोला महाराष्ट्र से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनिषा वेनो संगेफर, रीना रोहित, मनु गयालकर और राज भारती। कोपर गांव से पेंटर दारूवाला, मतिन दारूवाला, मसूदा दारूवाला, दिया और दानिश खान। बाला चौक यवतमाल से पत्र लिखा है मीना ताई, गायत्री, भूमि, नितिन, तनिश, मुकेश, दीपिका, लविसा, शौर्य, शुभम, कल्याणी, कुकू और सुनीता श्रीवास ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज़ है आशा भोसले की, गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर खत लिखे हैं आपने। शैलू बाजार जिला वाशिम से नारायण गवार गुरु, सरला गवार गुरु, सचिन खाडेकर, दक्ष, आयुष पुरवा, निर्मोही और आधीराज ने, रिधोरा से बाबूलाल बोराखडे, गोकुला बोराखडे और मंगेश बोराखडे, दुर्ग रायगढ़ से गेंदालाल श्रीवास, कुशल और गेंदू भाई, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका बलविंदर बीरक, जय तेग बीरक और मीका बीरक, रामना हड़दी से मोहम्मद आरिफ, फातिमा अरफा और एमएच शरीफ, जलगांव सोमनाथ से आपने खत लिखा है डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, कार्तिक और अश्विनी भुतेकर, संभाजी नगर महाराष्ट्र से वैष्णवी जगदाड़े, हर्षुल साउंगी, संभाजीनगर भाव सिंह पूरा से वैभव और गौरव लोखंडे, और बदनापुर से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी और रुद्र कोलकर ने ये पत्र लिखे हैं। साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम है आंखें।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइश पढ़ने में हमें आसानी हो। आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आकांक्षा विश्वकर्मा और चंचल वर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।

0: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा।
1: कौन तुम?
2: क्या पढ़ रही हो? जरा देखूं तो।
1: कुछ नहीं, ऐसे ही।
2: देखूं तो सही। अच्छा, विष वृक्ष पढ़ रही हो? और मैं तो समझा कि कोई गुप्त चीज होगी।
1: मेरे पास गुप्त क्या हो सकता है?
2: जैसे बिहारी की कोई चिट्ठी।
1: क्या क्या कहा तुमने?
2: अरे मैं तो परिहास कर रहा था।
1: छोड़ो मेरा हाथ। परिहास किसका कर रहे थे? यदि उनकी मित्रता के योग्य होते तो तुम्हारा परिहास मैं सह लेती। तुम्हारा मन छोटा है, मित्रता करने की शक्ति नहीं तुम में।
2: मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं।
3: महिंदा, ओह, बड़े समय में आ गया, किंतु ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। केवल एक बात कहने आया हूं। मैं काशी गया था, जानता नहीं था कि भाभी वहां है। बिना जाने उनके सामने जाकर अपराधी हुआ, पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मेरे मन को ज्ञान अज्ञान में यदि किसी पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। बस
2: मैंने तो ना तुमसे दोष स्वीकार करने को कहा है ना स्वीकार करने को, तब तुम क्षमा मांगकर साधु बनने क्यों आए हो?
3: मैं
1: बिहारी लाला जी, तुम कुछ मत कहो। इस आदमी ने जो कहा है उससे इसी के मुंह पर कलंक लगा रहेगा।
3: अच्छा, मैं जाता हूं।
1: लाला जी, मुझसे तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना। यदि तिरस्कार करने की बात हो तो तिरस्कार करो। लाला जी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लाला जी
2: हट जाओ मेरे सामने से। अरे, तुम्हारे बाएं हाथ की कोहनी से खून बह रहा है। ला, फिर मैं अभी पट्टी बांध देता हूं।
1: कुछ मत करो, गिरने दो खून।
2: कैसी बात कर रही हो? पट्टी बांधकर अभी एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा और घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा।
1: नहीं, इस दर्द को बना रहने दो, मुझे अच्छा नहीं करा है।
2: मैंने अधीर होकर लोगों के सामने तुम्हें अपदस्त किया, इसके लिए मुझे क्षमा करो।
1: क्षमा किस लिए? अच्छा किया। मैं क्या किसी से डरती हूँ? जो लोग थक्का देकर चोट पहुंचाकर छोड़ जाते हैं वे ही क्या मेरे सर्वस्व हैं? और जो पांव पकड़ कर रखना चाहते हैं वे कोई नहीं।
2: तो तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं ठुकराओगी?
1: नहीं, मैं उसे माथे पर लगाकर रखूंगी।
2: चुन्नी, काशी से लौटने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है।
4: और तुम कैसे रहे?
2: अच्छा ही था। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ।
4: आज इतनी जल्दी?
2: हाँ, कुछ आवश्यक कार्य है। अच्छा, चलता हूँ। महेंद्र, तू ये क्या कर रहा है? कभी तेरा मन आशा की ओर भागता है, कभी विनोद की ओर। आशा जब जब तेरे पास आती है तो उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखता है और विनोदनी के पीछे पीछे भागता है। तुझे क्या मालूम कि उस सरल हृदय पर क्या बीतती होगी? लेकिन आज ना तो भोजन के समय और ना उसके बाद ही आशा आई। मैं तो सोच रहा था कि अपने प्यार दुलार से उसकी सारी वेदना को दूर कर दूंगा। आशा को अब भी मैं कितना प्यार करता हूं, वो बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। और विनोदनी, आशा और विनोदनी दोनों के लिए मेरे हृदय में स्थान है और दोनों में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ओह, ये मौसम, ये चांदी रात, लेकिन विनोदनी मुझसे दूर। नहीं, मैं भी उससे मिलूंगा। चलो उसे कमरे में। विनोद, विनोद, हाँ, बिस्तर बिछा है, विनोदनी कहाँ है?
4: कौन?
2: मैं हूँ, मैं।
5: अरे महेन, इतनी रात को तू यहाँ कैसे? महेन, विनोदनी, महेन बहू को छोड़ इतनी रात कर यहाँ क्या करने आया था?
1: मुझे क्या मालूम, शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी।
4: आज भी समय से पहले कॉलेज चले गए, ना हमसे कुछ बोले ना कुछ कहा। चलो उनके कपड़े निकाल दो। अरे चिट्ठी देखो तो किसकी है? ये तो विनोदनी यानी किरकिरी की चिट्ठी, इनके नाम। हे भगवान, जरा पढ़ो तो। कल रात तुमने जो कुछ किया
1: उससे भी क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? आज फिर नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी क्यों भेजी? चिट्ठी, वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम जगत में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रखोगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रेम? तुम्हारी ये भिक्षा वृत्ति क्यों है? जन्म से तुम केवल प्रेम पाते आ रहे हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है? जगत में मुझे प्रेम करने और पाने का कोई स्थान नहीं, इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेत मिटा लिया करती हूं। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस मिथ्या खेल में तुमने भी साथ दिया, किंतु खेल की छुट्टी क्या कभी समाप्त नहीं होती? अब घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब धूल झाड़कर घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है। हाँ, मन ही मन अकेले बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी।
4: हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों? क्या क्या ये हमारा संपूर्ण सर्वनाश है? मौसी, मौसी।

0: आज माँ ने मुझे रोज की तरह अभी तक आवाज नहीं दी, बात क्या है? चलो मैं स्वयं ही उनके पास भंडारे में जाती हूँ। माँ, माँ, माँ, जान पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बात भी है ऐसी है, उस रात देखो ना एकदम पागल की तरह खड़े हो गए, मुझे तो फिर नींद ही नहीं लगी। शायद शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। फैसले के लिए मुझे धर पकड़ना चाहा, रात भर सब्र कहाँ। आपके लड़के में माँ और चाहे हजार गुण हो पर धैर्य तो लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए अक्सर मेरे से उनका झगड़ा हुआ करता है।
1: बहू तुम झूठ बक रही हो, मुझे आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही।
0: मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ, तुम्हारे मन को चोट लगेगी इसीलिए झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के गुणदोष ठगने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जो हो गया उसे ठगा नहीं जा सकता।
1: अपने बेटे के दोष गुण मुझे मालूम है, परंतु परंतु तुम ऐसी मायावी हो ये मैं नहीं जानती थी।
0: कोई किसी को नहीं जानता माँ, अपने मन को ही क्या सब जानते हैं। तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी से अपने लड़के का मन बहलाने की इच्छा नहीं की?
1: अभागिन, बेटे के बारे में तू माँ पर अपवाद रखती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती?
0: माँ, हम सब मायावनी की जाति की हैं। मेरे अंदर क्या माया थी ये मैं ठीक नहीं जानती, तुम जान गई। तुम में जो माया है उसे तुम नहीं जानती, मैं जान गई। माया थी अवश्य, अन्यथा ऐसी घटना ही न होती। मैंने कुछ जाने कुछ अनजाने जाल बिछाया और तुमने भी कुछ जानकर कुछ अनजाने बिछाया था। हमारी जाति का धर्म ही ऐसा है।
1: अभागिन, तू तू
2: विनोद,
0: जाओ मेरे कमरे से, तुम चले जाओ।
2: क्यों, क्या किया है मैंने?
0: क्या किया है? डरपोक कायर, तुम्हें क्या करने की शक्ति है?

0: प्रेम करना चाहती हो ना कर्तव्य निभाना, फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो?
1: मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये कह रही हो?
0: हाँ, मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी ढकना उघाड़ना, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से।
1: तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद?
0: हाँ, घृणा करती हूँ। बिहारी लाला जी।
1: अरे भाभी, आप कैसे
0: यहाँ? तुम्हारा आत्मीय स्त्रियों में कोई नहीं है?
1: आत्मीय भी नहीं, पराई भी नहीं। बुआ है, सुदेश के मकान में रहती है।
0: तुम अपने देश के मकान में मुझे ले चलो।
1: तुम्हें क्या कह के वहां ले चलूंगा?
0: दासी कह के, मैं वहां घर का सब काम काज करूंगी।
1: ये बात मन में उठी कैसे?
0: महेंद्र मुझसे प्रेम करता है।
1: ये बात कोई नई नहीं है कि दोबारा सुनने की इच्छा हो।
0: मेरी इच्छा भी नहीं।
1: महेंद्र जिस रास्ते पर चला जा रहा था, उसे उससे किसने हटाया?
0: मैंने, अपने हृदय की आग से मैंने महेंद्र का घर चलाया है। मैंने समझा था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, पर वो मेरी भूल थी।
1: प्यार करने वाली क्या इस प्रकार आग लगा सकती है?
0: वो तुम्हारे शास्त्रों की बात है, अभी उसे समझकर चलने की बुद्धि मुझ में नहीं है। सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूँ, एक तुम्हें मुझे बचा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है पर अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे लगा था तुम मुझे समझ गए हो, शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच कहना, छिपाना नहीं।
1: हाँ, की थी।
0: तुमने भूल नहीं की थी, किंतु यदि समझ नहीं लगे थे, श्रद्धा ही करने लगे थे, तो वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्रेम करने में तुम्हें क्या बाधा थी? मैं आज निर्लज्ज होकर तुमसे कह रही हूं, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरा चला भाग्य, तुम भी आशा के प्रेम में थी। नहीं, तुम क्रोध न कर सकोगी, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम आशा को प्यार करते हो, ये बात जब तुम स्वयं नहीं जानते थे तब भी मैं जान गई थी। आशा में तुमने क्या देखा, मैं समझ नहीं पाती। विधाता के पुरुष को आंख के साथ अंतर्दृष्टि कुछ भी नहीं देते, तुम लोग क्या देखकर भूल जाते हो?
1: भाभी, अब तुम जो सुनाओगी सुनूंगा, पर जो बात कहने की नहीं है वो ना कहो, यही मेरी प्रार्थना है।
0: लाला जी, मैं जानती हूं तुम्हें कहां पीड़ा हो रही है, किंतु जिसकी श्रद्धा मुझे मिली थी और जिसका प्रेम पाने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास इस रात मैं संपूर्ण भय और लज्जा छोड़कर आई हूं। उसमें मेरे मन की कितनी वेदना छिपी है, जरा इस पर विचार कर धीरज धरो। मैं सच कह रही हूं लाला जी, यदि तुम आशा को प्रेम ना करते तो मेरे द्वारा उसका सर्वनाश कभी नहीं होता।
1: आशा का क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया?
0: महेंद्र सब कुछ छोड़कर कल ही मुझे साथ ले घर से निकल जाने को तैयार है।
1: नहीं, ये किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं।
0: महेंद्र को आज कौन रोक सकता है?
1: तुम।
0: किसके लिए रोकूं? तुम्हारी आशा के लिए? मेरा अपना सुख दुख क्या कुछ नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र के घर गृहस्थी का भला हो, इसके लिए मैं अपने समस्त दावों को छोड़ दूं? इतनी भली मैं नहीं हूं, धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी नहीं पढ़ी हैं। मैं जो छोड़ूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
1: सुनो, मैं भी तुमसे एक बात स्पष्ट कहता हूं कि यह सब जो तुमने कहा है उसका अधिकांश तुम्हारा नहीं है। छोटे

जैसे कि नाटक उपन्यास तुमने पढ़े और उससे ही चुराया हुआ है। तुम अगर नितांत अभूत बालिका रहती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न रहती। नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उसे लेकर काम

0: आज की रात यहीं रह जाऊं?
1: नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं।
0: बस इतनी दुर्बलता बनाए रखना लाला जी, पत्थर की देवता की तरह बिल्कुल पवित्र ना हो जाना, किसी बुरे से प्यार करके सरा बुरे बने रहना।
1: विनोद, मैं
0: जीवन सर्वस्व जानती हूं कि सदा के लिए तुम मेरे नहीं हो सकते, किंतु आज एक मुहूर्त के लिए मुझे प्यार करो, उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी और किसी से कुछ न चाहूंगी। मरण पर्यंत मन में रखने लायक तुम कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दो।
1: रात 1 बजे पैसेंजर ट्रेन जाती है।
0: मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे चिट्ठी अवश्य लिखना, मैं रोज तुम्हारी चिट्ठी पाने की प्रतीक्षा करती हूं। तुम मेरे विचारक हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। तुम्हारी 2 लाइन की चिट्ठी ही मेरे निर्वासन में मेरा आहार है। कहते हैं एकाग्र मन से जिसे पुकारा जाता है वह अवश्य आता है। मैं भी तुम्हें पुकार रही हूं, मेरा जीवन सूना है। इस सूनेपन में एक बार तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा। मैं किसी तरह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें आना ही होगा। तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। आ गए प्रभु।
1: आ गया विनोद।
0: तुम चले जाओ यहां से, मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
1: मैं इतना कायर नहीं कि तुम इस लोक निंदा की आग में छोड़कर चला जाऊं यहां से। तुम्हें ले ही जाऊंगा, उसके बाद मुझे छोड़ देने की इच्छा हो तो छोड़ देना, मैं कुछ भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूं कि तुम जो इच्छा करोगी वही होगा। मैंने अविश्वास के कितने ही काम किए हैं, परंतु आज मेरा विश्वास ना करो। चलो, मैं सवारी लेकर आया हूं।
0: चलो, मैं चलती हूं।
2: माँ,
3: माँ, लची, जरा जल्दी चलकर माँ को देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें।
2: माँ, प्रणाम माँ।
4: बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं रे, तू है तो अच्छी तरह।
2: माँ, तुमने अपनी बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया? सुनकर मैं एक क्षण भी रुक सकता था।
4: खोकू, अरे क्या मैं जानती नहीं?
2: माँ,
4: तुझे सिर्फ पेट पर नहीं रखा रे, अन्यथा तुझसे बढ़कर दुनिया में मेरा कौन है रे?
2: माँ,
4: बहुत दुबला हो गया रे, तेरे देख रेख करने वाला कोई नहीं, अब तो बहू ले आ, मझली बहू।
3: हाँ हाँ जी जी,
4: इसका भार तुम पर रहा, इसे सुखी रखना।
3: बिहारी, जरा बाहर तो आ।
1: कहो काकी।
3: तुझे नहीं मालूम क्या, महेंद्र विनोदरी को लेकर कहीं चला गया है। एक बार महेंद्र को तो बुला नहीं लाएगा, और देरी करना उचित नहीं है।
1: अच्छा काकी, तुम मां की

0: पत्ते और दवा का ख्याल रखना। काकी, काकी महेंद्र का उद्धार मैं करूंगा।
1: विनोद, ये क्या तुमने फूलों से अपनी बेकी गूंथी? गले में भी फूलों का हार, ये सादा मोटे कपड़े, सारा कमरा, ये बिछौना, सब तरफ फूल ही फूल। क्या क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? ये बिछौना जी चाहता है।
2: नहीं नहीं, तुम जाओ, इस बिछौने पर मत बैठना।
1: तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए किया है?
2: जिनके लिए किया है वे मेरे हृदय के भीतर हैं।
1: कौन है वो बिहारी?
2: उनका नाम तुम मुंह से न लो।
1: उसी के लिए तुम मेरे साथ इधर उधर घूमती हो?
2: हाँ, उन्हीं के लिए।
1: उसका पता ठिकाना जानती हो?
2: किसी न किसी तरह जान ही लूंगी।
1: मैं किसी भी तरह जानने नहीं दूंगा।
2: न जानने दोगे ना सही, पर मेरे हृदय से उन्हें किसी भी प्रकार निकाल न सकूंगी।
1: ओ, तुम मर क्यों ना गई? तुम्हारे मरने से कितना मंगल होता।
2: जब तक बिहारी की आशा है मैं मर नहीं सकती।
1: अगर तुम मेरी नहीं हुई तो बिहारी की भी नहीं हो सकती, समझी?
2: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
1: मेरी माँ रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है, उनके आंसू मुझे दूर से ही जला रहे हैं। तुम्हारे मरे बिना मुझे उनके आंसू पहुँचने का अवसर नहीं मिलेगा।
2: मैं कहती हूँ तुम अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से। तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। ओ, तुम नहीं मानोगे क्यों मुझे बार बार तंग करने के लिए आ जाती हो तुम?
0: महेंद्र, महेंद्र।
2: महेंद्र नहीं है, वो शहर गया है।
0: अच्छा, मैं चलता हूँ।
2: तुम्हारे पांव पड़ती हो, तुम्हें थोड़ी देर बैठना होगा।
0: कहो क्या कहना है?
2: तुम जो कुछ मन में समझ रहे हो वो बात नहीं है। इस घर को किसी कलंक ने नहीं छुआ है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा में सूख गए हैं। तुम्हें यही बैठना होगा, तुम्हें यही बैठना होगा। बैठो।
0: लो, बैठ गया।
2: तुमने दया पूर्वक मुझे ये स्थान दिया है और दूर रहकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा बताओ, मैंने काम से जो पत्र लिखा था उसे तुमने खोलकर उत्तर दिए बिना महेंद्र के हाथ वापस क्यों कर दिया?
0: मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला और ना ही महेंद्र के हाथों मैंने कोई चिट्ठी वापस की।
2: अच्छा, अब समझ में आया। सुनो, मैं सब बातें तुमसे कहती हूँ, विश्वास करोगे तो अपना सौभाग्य मानूंगी, ना करोगे तो तुम्हें दोष ना दूंगी।
0: ना ना ना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिना कुछ कहे ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं खुद तुमसे घृणा नहीं कर सकता। बस अब तुम एक शब्द भी मत कहो।
2: तो भी बताए बिना जी न सकूंगी। मैंने तुम्हें मन में रखा है, इसीलिए पवित्र बनी रही। आज मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है।
0: अच्छा, तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश।
3: सुनो महेंद्र, तुम्हें विनोदनी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मैं उससे विवाह करूंगा। और सुन लो महेंद्र, तुम्हारी मां मृत्युशैया पर पड़ी है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। मैं आज रात की गाड़ी से विनोदनी को लेकर चला जाऊंगा।
0: ठीक है, मैं जाता हूं।
2: सुनो, ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे? मेरा उपहास कर रहे हो?
0: नहीं, मैं सचमुच तुमसे विवाह करूंगा।
2: इस पापिष्ठा के उद्धार के लिए?
0: नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए।
2: बस यही मेरा चरम पुरस्कार है। इतना जो तुमने स्वीकार किया है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिलने पर भी वो रहेगा नहीं, धर्म उसे कभी सहन नहीं करेगा।
0: क्यों नहीं करेगा?
2: जी जी ये बात सोचने पर भी लज्जा होती है। मैं विधवा हूं, निंदिता हूं, समस्त समाज में तुम्हें लांछित करूं ये कभी नहीं होगा।
1: किंतु विनोदनी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं।
2: सुनो, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी, इस जन्म में और कोई आशा नहीं करती। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना हो सकोगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, मैं भी संपूर्ण गौरव खो दूंगी। तुम सदा से निर्लिप्त और प्रसन्न रहते आए हो, आज भी वो ही बने रहो। मैं अन्नपूर्णा काकी के साथ काशी चले जाऊंगी।
1: भाभी, न जाने इस जिंदगी में फिर आपसे मिलना हो या ना हो, मैं तुम्हारी कोई निशानी अपने पास रखना चाहता हूं।
2: जी जी
1: भाभी, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता?
2: तुम तो बहुत पहले ही मुझे जो दे चुके हो वो मेरे शरीर का भूषण है, उसे मरते दम तक कोई नहीं ले सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
1: मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें क्या दिया है?
2: भूल गए लाला जी, ये देखो।
1: अरे, ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान?
2: हाँ लाला जी, एक दिन गुस्से में घृणा के साथ तुमने मुझे धक्का दिया था ना, मेरे हाथ में चोट लगी, उस घाव का ये निशान उसी दिन से मेरी आत्मा का आभूषण बन चुका है।
1: भाभी,
2: लाला जी, भगवान तुम सबको सदा सु

आंख की किरकिरी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली के इस रेडियो नाट्य रूपांतरण का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह के हरिसिंह रायडी स्थित स्वर्गीय सुदिव्य कुमार के आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार का आकस्मिक निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है और राज्य ने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि तथा समर्पित मंत्री खो दिया है। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार के योगदान और सेवाओं को सदैव स्मरण किया जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर गहरा शोक जताया है। आज गिरिडीह में श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि मंत्री के निधन से हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सुदिव्य कुमार उनके लिए सिर्फ एक साथी मंत्री नहीं बल्कि भाई के समान थे और उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। राज्य सरकार ने मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार के निधन पर आज और कल दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द रहेंगे और कल सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय शोक के दौरान सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। 56 वर्षीय सुदिव्य कुमार का आज तड़के गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में हृदयाघात से निधन हुआ। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो आज सिमडेगा पहुंचे। उन्होंने परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में युवाओं से मुलाकात की। हजारीबाग के कुम्हार टोली स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में दो दिवसीय विज्ञान मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। विद्या विकास समिति की ओर से आयोजित मेले में राज्य भर से 701 बाल वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नाटक में उनके हिस्से में केवल दो छोटे छोटे सीन्स थे।
2: ओके।
1: लेकिन पूरा नाटक उनके हस्बैंड जो जर्नलिस्ट होता है उसके करियर को लोगों ने कैसे बर्बाद किया बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए, बड़े अहुदे पे जाने के लिए, और वो सारा कैबिन में हो रहा है और ये कैबिन के बाहर बैठी हुई है और उनको पीट ऑडियंस की तरफ करके बिठाया था मैंने। वो पता चलता था इनके पीठ से कि ये अंदर के इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही, इसके ऊपर क्या क्या परिणाम हो रहा है। और जब वो अंदर आके बर्स्ट आउट होती थी, दैट सीन वॉज मेमोरेबल सीन इन दैट प्ले। उसके पास मी राष्ट्रपति नाम का प्ले मैंने किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत मेजर रोल निभाया। तो मुझे लगता है यही 2-3-4 नाटक थे। उसके बाद फिर मैं बाहर भी नाटक करने लगा, व्यावसायिक भी नाटक करने लगा। फिर उसके बाद ये भी हो गया कि 4-5 साल में ऋत्वी का जन्म हुआ, तो वो स्कूल में काम करती थी, हफ्ते में 2 बार सेंट कोलंबा जो स्कूल थी वहां जाके बच्चों के साथ क्लास लेती थी। तो इसीलिए वो भी एक उनके लिए मर्यादा हो गई कि व्यावसायिक नाटकों में जाना है तो फिर लंबा जाना पड़ता है, 10-15 दिन के टूर लगते थे उस समय पर। उन्होंने अपने लेवल पे स्पर्श नाम के नाटक में काम किया जो दी गोवा हिंदू एसोसिएशन का व्यावसायिक नाटक था। फिर उन्होंने हैंड्स अप नाम के नाटक में काम किया जो व्यावसायिक नाटक था। तो उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारे, तू का जातो एकुंठाला नाम के नाटक में काम किया, तो बहुत सारे नाटकों में काम किया उन्होंने, सीरियल में काम किया। सह्याद्री की बहुत फेमस इर्जिक नाम की एक धारा चली थी, उसमें उन्होंने कई सारे एपिसोड किए। विजय मेहता के साथ तो लाइफलाइन जो उन्होंने सीरियल पहली डायरेक्ट की थी उसमें काम किया। गोटिया जो सीरियल चल रही थी उसमें भी उन्होंने काम किया, बहुत सारी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया। फिर उसके आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम किया। अशोक सराफ जी के साथ उन्होंने फिल्म संजय सुरकर ने डायरेक्ट की हुई चौकट राजा, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। उसके बाद अक्षय कुमार जी के साथ खिलाड़ी 420 में उन्होंने हिंदी में काम किया
2: जी।
1: फिर मराठी में और सारी फिल्मों में काम किया। और खास उनका बहुत ज्यादा पॉपुलर काम रहा है वो देवयानी नाम की जो सीरियल लगातार 3-4 साल चली, उसमें मेजर रोल था उनका, और जिसको हाईएस्ट टीआरपी थी उस सीरियल को। तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि हमें दिल्ली से आता था तब भी वो 30 दिन शूटिंग करती थी और कभी कभी संडे को एक स्पेशल एपिसोड होता था उसके लिए रात दिन वो भी काम करती थी। ऋत्विक भी उसी समय सीरियल में काम करता था लीड रोल में, मानसी था चित्रकार तो स्टार प्रवाह के ऊपर। तो मैं जब दिल्ली में आता था ये दोनों बिजी होते थे और ये दिल्ली आते थे कभी कभी जब मैं दिल्ली में था तब, तो ये जैसे ही पहुंचते थे तो दूसरे दिन सुबह फोन आता था कि कल के एपिसोड में प्रॉब्लम हो गया आप तुरंत निकल आइए
2: लीजिए।
1: तो एक या दो दिन से ज्यादा हम रह नहीं पाते थे, तो फिर उन्होंने दोनों ने भी यह तय किया वो सीरियल कंप्लीट करने के बाद कि अब हम ज्यादा समय सीरियल में नहीं देंगे, फिल्म और नाटक यही। और उनका सबसे अच्छा मुझे लगा कि पैरेलल जो उन्होंने करियर किया वो चिल्ड्रन थिएटर में।
2: जी, बहुत बड़ा योगदान,
1: लीडिंग थिएटर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट इन महाराष्ट्र, कि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने करियर तक पहुंचाने का काम किया है और अपने किस्म का वो नाटक करती है बच्चों के साथ। उनको एक अपना नैक है, उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी बनी है कि 10 दिन में वो बच्चों को पूरा आर पार बदल देती हैं और नाटक भी करवाती हैं अंत में, और जो नाटक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल भी होते हैं, ह्यूमरस भी होते हैं और कुछ मैसेज लेके भी वो नाटक करती हैं। तो इसीलिए अपने आप में वो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, वो एक्ट्रेस भी है थिएटर की।

0: भी है, सिनेमा की भी है, सीरियल की भी है, ये तीनों मीडिया में वो कंफर्टेबल है। और चौथा है वो चिल्ड्रन थिएटर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है कि सुधा करमरकर और दो तीन सुलभा देशपांडे और इनके बाद बहुत ज़्यादा कांचन सोनटक्की जी के बाद मराठी थिएटर में बहुत ज़्यादा उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर में काम किया है।
1: जी, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: जब आपके शुरुआती दो तीन नाटक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं, और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही? और दूसरा, दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
1: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था
0: जी,
1: नायक की भूमिका में था। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
0: यस,
1: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया था, मैं आज तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक करना है ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे कौन सा नाटक नहीं करना है, कितना भी पैसा दे दो, वो भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। तो इसीलिए मेरे नाटकों के जो विषय है, चाहे वो जुलवा है या जाने मन है, मुझे लगता है जिन लोगों की अभिव्यक्ति को, जिन लोगों की जिंदगी को, जिन लोगों के दबेपन को आवाज नहीं मिली है, मुझे लगता है उनको मैं अपने नाटक का विषय बनाता हूं।
0: हमेशा हाशिए पर जो लोग हैं,
1: हाँ, हाशिए पे जो लोग हैं, जो गांव के बाहर है,

0: के अंदर के भी नाटक किए मैंने, पर जो ज्यादातर जो विषय चुने मैंने वो गांव के बाहर है, उनको गांव में एंट्री ही नहीं है। अब देखिए झुलवा जोगते जोगतीनी पर है, एक झुंझ वारियाशी एब्सोल्युटली डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित। उसके बाद जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे और दूसरा विनय आप्टे करते थे और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था
1: जी।
0: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है, उस फैमिली की जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती हैं और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, इस तरीके का विषय था
1: जी।
0: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के जीवन पे विषय था उसका, लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने बारा बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के और हम अपनी तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं टी फुलरानी तक रणांगण एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी जीतता क्यों नहीं है, क्या ऐसे उसमें खून में संस्कार में उसके जीवन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता, ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे, और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे हैं, पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते, इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का भारतीय स्वभाव का बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था
1: जी
0: और जिसके 700-750 शो, मतलब दैट वाज सपोज टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज
1: बिल्कुल,
0: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए,
1: वाह,
0: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे,
1: क्या बात है,
0: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है, जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया, हमारे नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच, क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राजाओं को भेज दी थी
1: जी।
0: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में, कुछ भी हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत, तो उस पानीपत शब्द से हमने उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर बट इट वॉज द बिगेस्ट वॉरफेयर प्लेड बाय मराठाज हेल्प ऑफ अदर पीपल इन इंडिया, और जिसमें मुसलमान भी थे
1: जी।
0: तो ये भूमि पे प्यार करने वाले लोगों का जो एक गठ्ठा था वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे मरते रहे, उसकी कहानी थी ये रणांगण।
1: क्या बात है। और फिर ती फूल रानी आया,
0: उसके बाद ती फूल रानी आया, उसके बाद ये मध्यम व्यय आयोग किया, जब एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का पहला प्रोडक्शन कौन सा किया जाए, तो हमने कहा चलो परंपरा से शुरू किया जाए। कालिदास भास ये पहला नाटककार माना जाता है, तो हमने उनके मध्यम व्यय आयोग से शुरू किया। उसमें भी मुझे हिडम्बा है वो मुझे दिखाई दी, मैं क्योंकि केरल में रहा था, द्रविड़ में मातृसत्ता कुटुंब पद्धति है और आर्य में पितृसत्ताक है, तो उनकी जो प्रेम की कहानी है भीम की और हिडम्बा की और उनका बेटा जो घटोत्कच है, मुझे लगा कि जो औरत हमारे स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के अड़े आती हैं, जो भी है, हम किसी को डेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम हिडम्बा बोल देते हैं। अरे यार उसके हिडम्बा के क्या चक्कर में आता है, मतलब देखने में वो खूबसूरत भी हो तो जो हमारे स्वार्थ के अड़े आता है उसका कैरेक्टर असेसिनेट करने का हमारा पुराना स्वभाव है।
1: जी जी जी,
0: उस स्वभाव को पकड़कर वो नाटक बनाया हुआ है। और फिर आर्य और अनार्य के बीच की जो राजनीति है वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो हर तरीके की राजनीति है। और वो जब सवाल पूछती है भीम को, और बेटा सवाल पूछता है कि आप कहाँ गए थे, बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होने तक, वॉरियर होने तक वो वापस आके देखा नहीं उन्होंने, उसके बारे में जो सवाल पूछती है, बोलती है कि अगर होती मैं आर्य स्त्री तो क्या होता आपका यही उत्तर।
1: वाह,
0: तब तो राजदरबार बैठते, तब तो तहकीकात होती, चर्चाएं होती, न्याय मंडली बैठती, न्याय होता। चूंकि मैं आर्य नहीं हूं इसलिए आपको लगा कि यू कैन इग्नोर मी।
1: ओहो,
0: तो इस तरीके के मुझे लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल है हमारे ही समाज के विसंगति के, वो कहीं ना कहीं मेरे नाटक उठाते हैं। और वो केवल कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है वो अंतर्मुख करने के लिए उठाते हैं। क्योंकि नाटक का मूल जो स्वभाव है वो किसके लिए नाटक करना है
1: जी,
0: नाटक केवल लोगों को हा हा हू करके जाओ घर में,
1: केवल मनोरंजन,
0: केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं, मनोरंजन तो रुलाना भी है। नौ रसों में से कोई ना कोई एक रस ऑडियंस के मन में पैदा करना नाटक का मूल रस है, मूल स्वभाव है, मूल चिंतन है, मूल भाव है। हम ये कहते हैं कि नाटक इसीलिए करते हैं ताकि हम समाज को उसका आईना दिखाए,
1: बिल्कुल,
0: उसमें विसंगतियां क्या है, संगतियां क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, वो आईना दिखा के हम समाज में एक अच्छा समाज कैसे हो, कल्याणकारी समाज कैसे हो, ये करने के लिए, एक आशावादी दृष्टिकोण देने के लिए नाटक होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह बार बार दिखाने के लिए नहीं है
1: जी,
0: पर वो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास है, वो सारा तो दिखाना नाटक का काम है ना। सिनेमा नहीं करेगा, नाटक नहीं करेगा, साहित्य नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा।
1: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है, इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है।
1: बिल्कुल,
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढहाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप एक हैं क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पज है। अब वो पर्पज हम किस एंगल से दिखाएं वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाएं तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था। वो भी नाटक ना करे तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा ना करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6 नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5-6-7-8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ण की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है
1: जी?
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें विश्व गुरु बनाइए
1: जी। एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक
0: जी, ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम जी को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे और मैंने कहा कि यार बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा। ये रंगावृति नई तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची, पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है,
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो ठीक है लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग हैं जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें। अब 3 भाषाएं हो गई तो 3 भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई, उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे 3 भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी,
0: और 3 नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे। एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।

0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी। उसके 3 अलग अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है, हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माय लव इस नाम से। वही नाटक तीनों भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम। भाषा अलग है, गाने अलग हैं, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया, और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है। अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको, तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में, गुजराती में करके 4 भाषाओं में एक ही दिन कर लेंगे। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया, और उस नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है मोहे पिया, अभी 300 शो होने को आए हैं अलग से हिंदी में
1: जी।
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए, तो हम ये 15 दिन के नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का एक प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें। इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, NSD के दोनों अवार्ड्स आपको मिले।
0: जैसे एक संगीत, क्योंकि हमारे देश में एक ही अवार्ड था जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद एक आपका रुतबा माना जाता था कि आपके योगदान को माना जाता था। मैं ये अनुपम खेर जी चेयरमैन थे, तब उन्होंने मुझे सोसाइटी का मेंबर बनाया। उसी समय हमने ये कहा कि भाई पूरे देश को, संगीत नाटक अकादमी तो पूरे देश को लेकर काम करती है, अब उसमें ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में एनएसडी के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, पर अवार्ड देते समय ये तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हर साल एनएसडी एल्यूमिनाई को तो वहां अवार्ड नहीं दिया जाएगा ना।
1: जी,
0: दूसरे भी भाषाओं के लोग है, और भी लोग है जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें 2 अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक, जब तक उसको 2 आदमी उठा के पकड़ के ले जाते, तब उसके बाद अवार्ड दे के उसका इंस्पिरेशन क्या है
1: जी।
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे 2 अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है एनएसडी के एल्यूमिनाई ने, उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके, उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि एनएसडी जब एल्यूमिनाई को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है
1: जी।
0: तो हम एनएसडी के एल्यूमिनाई को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहें, काम करते रहें। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया, और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार के हैसियत से उसका नाम दिया, और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो बीवी कारंत स्मृति पुरस्कार
1: जी।
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी, और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया बीवी कारंत पुरस्कार, वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: आपके गुरु।
0: हाँ, हमारे गुरु मतलब
1: जी।
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार, तो वो अमन केंद्रे को दिया गया।
1: क्या बात है,
0: तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और जब मैं एनएसडी छोड़ने के बाद, मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद, 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे, तो फिर हमारे बाद के डायरेक्टर ने वो सारे पुरस्कार की घोषणाएं की, समिति गठित करके, तो उसमें से जो दूसरा पुरस्कार जो मिलता है,
1: सीनियर वाला,
0: वो मैं पहला एल्यूमिनाई हूं कि दोनों भी पुरस्कार, पहला तो स्मृति मिला ही था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार, और ये बीवी कारंत स्मृति पुरस्कार भी मुझे दिया गया। एंड ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये दोनों पुरस्कार पाने वाला पहला एल्यूमिनाई ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वामन केंद्र है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहां।
1: यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब बी वी कारंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल
0: जी।
1: उसके बाद बी एम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए, पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी। मोहन महर्षि हुए, पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे। उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
0: जी।
1: तो ये सारे जो थे वो वहीं पढ़े और वहीं डायरेक्टर हो गए। पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मान पूर्वक वहां पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं, पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो वहां पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना, कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा, पर वहां के इतिहास में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा, ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे से 36 घंटा कैसे हो सकता है ये कोशिश करके। मुझे लगता है कि वहां की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियां हैं उसको पुख्ता करना, जितनी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीजों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है
0: जी,
1: वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या मैं था तब उस समय में कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियां थी, क्योंकि मैं यहां मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहां क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते ढालते ढालते ढालते एक बहुत स्ट्रांग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में, डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन 3 कर दिए, 2 ही थे, एक एक्टिंग था और डिजाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता था वो डिजाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे। तो मैंने कहा ये उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है ना, डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिजाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है। तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया, और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना, और डिजाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया, फैकल्टी जितनी संभवतः देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई, तो ये सारा है। उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में यह था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को यह ना लगे कि यह हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे एमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
0: वाह,
1: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
0: यस,
1: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जश्ने बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था, क्वालिटी इज इन सेंटर। मैं ये कहता था भारंगम में कि अगर कल को मेरे पिताजी का नाटक आता है और यहां कंसीडर करने के लायक नहीं है तो उस डीवीडी को फेंक दो और तोड़ दो। कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई किसी का नहीं है। जो थिएटर क्वालिटी का काम करता है वो हम सबका है।
0: क्या बात है।
1: और उसको ही सेंटर में रख के कोशिश यही की गई कि 5 साल उस एनएसडी का जो क्वालिटेटिव माहौल है उसको भी एनहांस करने की कोशिश की गई। बहुत विनम्रता के साथ ये सब कह रहा हूं। दूसरा, मुझे लगा कि जो विस्तार होना चाहिए था उसका, जैसे बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने कहा ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप देके अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में, जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए वाराणसी में 1 साल का कोर्स शुरू किया, सेंटर शुरू किया, और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए।
0: जी,
1: जो सिक्किम का सेंटर था वो 1 साल का था, हमने कहा इसको 2 साल करिए, फिर उसको 2 साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे। इसी के लिए वो सेंटर, और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहां के लोगों के लिए बनाए, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था। जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद, तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें वहां करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स, एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव का, तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है उसमें स्पोर्ट्स भी

0: होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
1: ओके
0: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने, थिएटर के रंगकर्मियों ने यह तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें। और फिर वो शुरू किया, पहला वो ग्रीस में हुआ और ये मुझे पता चला फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहाँ वहां हो गया और आठवां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए। फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, उनको कहा तो उनकी परमिशन ले ली और आठवां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये दो चार जगह देखा और उन्होंने कहा नहीं है, ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनएसडी कैन हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो आठवां थिएटर ओलंपिक्स हो गया जो 17 राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमिटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600-650 शो।
1: तो ये तो कितने,
0: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए और जिसमें 25-26 हजार आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
1: तो बहुत भव्य,
0: बहुत बहुत हो गया। ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का, नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
1: वाह वाह,
0: ये मुझे लगता है उसका इंपैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने नाटक वाले थे हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
1: वाह,
0: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 250 नाटक चुन लिए गए और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका मैं डायरेक्टर था, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले से ही।
0: जी जी,
1: एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीएम में 10 साल, फिर वही एसोसिएट हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
0: वहां नहीं जाना है,
1: वहां जाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से, एक ही साल के आसपास किए मैंने। और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा, तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा, तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री मुंबई विश्वविद्यालय में, नाटक का विभाग हो इसके लिए इतनी कमेटियां हो गई, इतना हो गया, पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, रामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे 7-8 लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई कमेटी बिमिटी, आपकी कमेटी है अंतिम है, अब आपको 4 महीने के अंदर मुझे ये विभाग शुरू करना।
0: अरे गजब,
1: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहां वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने एकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। 4वें महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो 4 महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है, तो मैंने मना कि मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूँ।
0: कोई मेगा प्रोजेक्ट है?
1: हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरे जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं, इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई, और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे। तो वो जो कह रहे हैं मुणगेकर, उसकी बात मानो, और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि 1-2-3 साल दे दो, 2 दिन 3-3 घंटा 4 घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आप, मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से, चारों ओर से वो लगा कि आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार, इसको 2 साल के बाद प्रोजेक्ट को करते हैं, वह 3 साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
0: जो 2-3 साल
1: सोचा था, और रात दिन मैं सुबह 7:45 पहुंचता था, रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
0: अरे बाप रे।
1: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, और जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए, तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है।
0: जी जी।
1: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके जिनके साथ इनको

0: काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एम एस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी हैं, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और परेश रावल जी है, नसरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में, सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट ऑल्सो। और एक बहुत अच्छे, एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए, ये मध्यम व्यायोग तो उसी के लिए किया था, फिर ईडीपस किया, दो मंजिला सेट लगा के, मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
1: वाह वाह वाह,
0: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव
1: जी,
0: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, पूरे हर एक, रतन थियाम मणिपुर से दो बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स, सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होकर लोग अंदर जाते थे और वो माहौल भी देखा हमने, और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
1: वाह वाह,
0: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम वो यज्ञ जैसा हो रहा था, तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यहीं बनाया हुआ था
1: जी।
0: क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कम पड़ा था, क्या ज्यादा था, तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी, तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है, चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था
1: जी। जी,
0: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया, और अभी तक मैं जब तक था, मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार
1: जी,
0: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था। कोई नॉर्वे से आ रहा है, एक कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके, उसका परफॉर्मेंस हम वहां करते थे।
1: वाह वाह,
0: मतलब ऐसा नहीं है कोई से भी, कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे, और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे, क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था, और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस्ट्रक्ट करवा लिया था, उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
1: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने है, आपकी धारा को,
0: तो इसीलिए सिनेमा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए, और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको ताड़ो। मुझे लगा कि ये जहां काम करना है, जहां आनंद आ रहा है, और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो, मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊं, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नया नाटक करना चाहिए
1: जी। जी,
0: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि भाई मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं, ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूं, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो।
1: जी जी जी,
0: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
1: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ऋत्विक के दो या तीन सिनेमा आ गए हैं और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है।
1: जी जी,
0: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया पर आगे चलकर होगा, सरगम नाम का सिनेमा है और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है और उसका खासियत यह है कि गिरीश कारनाड जी का आखिरी सिनेमा है जिसमें गिरीश कारनाड जी ने स्वतः काम किया है।
1: जी,
0: और वो मराठी सिनेमा है और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कारनाड जी ने, और ऋत्विक और गिरीश कारनाड जी आमने सामने हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में, नायक की भूमिका में है और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है ही नहीं।
1: जी,
0: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेड्स है या जर्नी है वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है और भी कुछ वो करना चाह रहा है जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
1: अच्छा क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये तो चलते रहेगा सिलसिला, पर सिनेमा भी करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव रेजिस्टेंस अबाउट सिनेमा, आई एम वेरी हैप्पी विथ सम एक्सप्रेशंस। सिनेमा में भी लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं और भारतीय सिनेमा भी कर रहे हैं
1: जी,
0: पर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है।
1: जी,
0: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है।
1: जी,
0: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ
1: हर तरह की सिनेमा,
0: हर तरह का सिनेमा देखते।
1: जी, वामन केंद्रे जी, आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे।
0: जी जी जी,
1: मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का चौथा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह के हरिसिंह रायडी स्थित स्वर्गीय सुदिव्य कुमार के आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार का आकस्मिक निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है और राज्य ने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि तथा समर्पित मंत्री को खो दिया है। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार के योगदान और सेवाओं को सदैव स्मरण किया जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर गहरा शोक जताया है। आज गिरिडीह में श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि मंत्री के निधन से हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं। राज्य सरकार ने मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार के निधन पर आज और कल दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द रहेंगे और कल सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय शोक के दौरान सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। बोकारो जिले के सेक्टर 6 बाजार में आज सुबह लगी आग में 8 दुकानें जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। राज्य में 13 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जब ये रात अपने आंचल में सितारों के असंख्य दीपक सजा लेती है और चांद चुपके से आसमान की चौखट पर आ बैठता है, तो उसकी चांदनी इस जमी के साथ साथ प्रेम करने वालों के दिलों पर भी उतरती है। वो हर धड़कन से कहती है, सच्चा प्रेम आकाश की तरह असीम है और चांद की तरह हर अंधेरी रात में झिलमिलाती रोशनी का समंदर बनकर लौट आता है।

ये जो रात का रोशन चांद है ना, इसने ना जाने कितनी मोहब्बतों को जन्म लेते देखा है, कितनी ही आंखों में सपने सजाए हैं, कितनी ही दुआओं को अपने उजाले में पनाह दी है। वो जानता है कि प्रेम शब्दों से नहीं, खामोशियों से लिखा जाता है, और चांदनी वही खामोशी है जो दिल से दिल तक बिना आवाज पहुंच जाया करती है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। कभी ये चांद किसी के चेहरे का रूप बन जाता है तो कभी किसी की याद का, कभी वो मिलन की रात का गवाह होता है तो कभी जुदाई की लंबी रातों का हमसफर। मगर उसकी चांदनी हर बार यही कहती है, मोहब्बत दूरियों से नहीं हारती, वो तो इंतजार से और भी गहरी हो जाती है।

कहते हैं इश्क अगर सच्चा हो तो प्रेमियों की आंखों में चांद उतर आता है और चांदनी उनकी मुस्कान में खिल उठती है। मोहब्बत अगर चांद है तो विश्वास उसकी चांदनी है। चांद कभी कभी बादलों में छिप जाता है मगर चांदनी का एहसास हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल के आंगन को रोशन करता रहता है।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। सायंकालीन सभा में श्रोताओं, आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले

इस मिनट पर युवाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे युवानी। युवानी कार्यक्रम में आज चर्चा होगी स्वच्छ वातावरण क्यों जरूरी। साथ ही चर्चा में आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। वार्ता में सुनेंगे नीता चौहान को। वार्ता का विषय होगा नेत्रदान से दृष्टिदान संभव। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 6:02 पर ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा होगी सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती। साथ ही चर्चा में आप सुनेंगे मक्का की अधिक उपज के लिए वैज्ञानिक तकनीक। भेंटवार्ता में सुनेंगे एक सफल किसान से ली गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे दिनेश मेहता और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर कार्यक्रम होगा जननी। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मेड़ों पर वृक्षारोपण क्यों जरूरी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र से महिलाओं एवं शिशुओं को पोषण सुरक्षा से संबंधित लाभ, इस पर जानकारी दी जाएगी। भेंटवार्ता में सुनेंगे प्राकृतिक खेती। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर राजीव कुमार, इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।

सात बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 7:10 पर जिले में आजकल आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 7:15 पर आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी श्रोताओं की वाणी। संकलन एवं वाचन संजय कुमार सिन्हा एवं संतोष कुमार सिन्हा का होगा और संयोजन एवं प्रस्तुति प्रशांत गौरव का होगा। 7:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम महुआ में आज आप सुनेंगे भरत सिंह भारती एवं साथियों को। 8 बजे आप सुन सकेंगे फिल्मी गीत कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:30 पर गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे गीत संगीत और इसमें आज के कलाकार होंगे सोनू निगम।

रात्रि के 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में खबरें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आज के फनकार आप सुन सकेंगे विविध भारती से। 10:00 का समय होगा आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी स्वर्णिम यात्रा 2026। संकलन एवं वाचन संतोष कुमार एवं प्रतिमा परमा, प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। और 11:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का और 11:10 पर सभा का हम समापन करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है युवाओं के लिए कार्यक्रम युवाणी।

यह वाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार। श्रोताओं, जीवन के इस सफर में यदि कोई सचमुच आपका साथ निभाता है तो वो है रेडियो। जी हाँ श्रोताओं, रेडियो हर वक्त आपका साथ देता है, चाहे आप गम में हो, खुशी में हो, ज्ञान के पिपासा हो या फिर दीन दुनिया की खबरें।

93 में रेडियो की आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुंची और तब से लेकर अभी तक का सफ़र काफ़ी रोचक रहा है। लोगों की हर इच्छाओं एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर अपनी सेवा में प्रयत्नशील रहा है। हर सुबह एक नई सुबह होती है और हमारी कोशिश होती है नित्य नए नए अनुभव हम आपसे साझा करें और आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। आपका विश्वास और आपका प्यार इस सफ़र को और भी ज़्यादा मजबूत करता है और आकाशवाणी का कद तो दिनों दिन बढ़ता ही चला गया, सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग के द्वारा ही। तो आज आकाशवाणी परिवार की ओर से सभी श्रोताओं को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और चलिए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम प्रेम।

0: डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्षों से आकाशवाणी डाल्टनगंज ने अपनी विश्वसनीय आवाज के माध्यम से लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया है। ये यात्रा हमारे श्रोताओं के स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं थी। इस विशेष अवसर पर हम अपने पूरे श्रोता परिवार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह संकल्प दोहराते हैं कि भविष्य में भी आकाशवाणी डाल्टनगंज विश्वसनीय, सार्थक और रोचक प्रसारण के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। आपका प्रेम, विश्वास और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आकाशवाणी डाल्टनगंज परिवार की ओर से स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रमुख प्रशांत गौरव जी के इन शब्दों को, और चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: नक्षत्रों श्रोताओं, नेत्रदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि किसी के द्वारा की गई नेत्रदान किसी के जीवन में रोशनी ला सकती है, खुशियां ला सकती है, एक नई जिंदगी दे सकती है। नेत्रदान से दृष्टिदान संभव। आइए इस पर सुनते हैं वार्ता। वार्ताकार है नीता चौहान।
1: नमस्कार। दीजिए मौका अपनी आँखों को किसी की जिंदगी रंगीन करने का। यही लाजवाब तरीका है मरने के बाद भी दुनिया देखने का। ये चार लाइनें हमारी आज की विषय वस्तु नेत्रदान से दृष्टिदान संभव को कम शब्दों में बेहद प्रभावशाली तरीके से बयां करता है। आँखें कहने के लिए सिर्फ दो अक्षर है, लेकिन इसके बिना सारा संसार बेरंग है। आंखें पूरा जीवन रंगीन बना देती हैं। आंखें ईश्वर प्रदत्त अनमोल तोहफा है। इससे हम दुनिया देख सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, प्रफुल्लित हो सकते हैं। आंखों का हमारे जीवन में जो महत्व है उसे हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं, और आखिर क्यों न समझें। संसार की प्रत्येक वस्तु

हो जाते हैं। प्रकाश व दृष्टि से परे जीवन का एक दूसरा रूप यह भी जानिए कि पूरी दुनिया में करीब 3 करोड़ लोग दृष्टिहीन हैं, 80 लाख लोगों की एक आंख खराब है। जिस अंधकार में हम एक क्षण भी बिताने की कल्पना नहीं कर पाते, उस गहन अंधकार में कितने ही लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, अभिशप्त हैं। इनमें कुछ लोग मरणोपरांत किए गए नेत्र दान से लाभ उठा सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 1.25 करोड़ लोग दृष्टिहीन हैं, जिसमें से करीब 30 लाख व्यक्ति नेत्र प्रत्यारोपण के माध्यम से नौ दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जितने लोग हमारे देश में एक साल में मर जाते हैं, अगर वे सभी मरने के बाद अपनी आंखें दान करें तो एक साल में ही देश के सभी नेत्रहीनों को आंखें मिल जाएंगी। सभी व्यक्तियों के पास आंखें होने का एहसास इतना सुखद है, तो सोचिए अगर सच में ऐसा हो जाए तो भारतवर्ष में राम राज्य ना आ जाएगा। बस जरूरत है नेत्रदान की सेवा का संकल्प लेने का। कम संख्या में नेत्रदान को छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है कि छोटे से नवगठित राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ 70,000 से अधिक लोग कार्निया प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में रजिस्टर्ड हैं तथा पूरे भारतवर्ष में 2 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में रजिस्टर्ड हैं। प्रत्येक वर्ष 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है ताकि दूसरों की अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नेत्रदान के महत्व पर जन जागरूकता पैदा करना तथा लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना है। कहते हैं कि माँ ही सिर्फ नई जिंदगी दे सकती है, लेकिन अन्य सभी लोग भी नेत्रहीनों को दृष्टि दान कर नव जीवन प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में लोग नेत्रदान नहीं करना चाहते हैं, बस उनमें सही जानकारी का अभाव है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों और किस प्रकार से नेत्रदान करना है। भारत में नेत्रदान करने वालों की संख्या इन वजहों से कम है। पहला, जागरूकता का अभाव। दूसरा, संस्थानों एवं अस्पतालों में अपर्याप्त सुविधाएं। तीसरा, प्रशिक्षित कर्मियों के बीच दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता का अभाव। चौथा, सामाजिक एवं धार्मिक मिथक। इन सबसे ऊपर उठकर नेत्रदान के विषय में विस्तार से जानने की जरूरत, तो आइए विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। स्त्री अथवा पुरुष अपनी मृत्यु के पश्चात ही नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान से केवल कॉर्निया से नेत्रहीन व्यक्ति ही लाभान्वित हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र, लिंग, रक्त समूह और धर्म का हो, अपनी आंखें दान कर सकता है। कार्निया को मृत्यु के 1 घंटे के भीतर निकाला जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 घंटे की अवधि तक ही इसे हर हाल में निकालना आवश्यक होता है। एक नेत्रदाता अपने दोनों कार्निया से 2 व्यक्तियों को दृष्टि दान कर उनके जीवन में असीम खुशियां भर सकता है। नेत्र निकालने में केवल 10 से 15 मिनट लगता है तथा चेहरे पर इससे कोई निशान या विकृति नहीं होती है। पंजीकृत नेत्रदाता बनने के लिए नजदीकी नेत्र बैंक से संपर्क किया जा सकता है। नेत्र प्रत्यारोपण का पूरा खर्च नेत्र बैंक के द्वारा वहन किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात नेत्रदाता की पलकें बंद कर ले, पंखा या एसी बंद करके मृतक के सिर के नीचे तकिया रखकर सिर को ऊंचा रखें तथा नजदीकी नेत्र बैंक को जल्द से जल्द 1919 पर संपर्क करके सूचना दें। नेत्र बैंक की टीम परिजनों की सहमति से 2 गवाहों की उपस्थिति में मृत नेत्रदाता का कार्निया निकाल लेंगे। इसमें सिर्फ नेत्र बॉल निकाला जाता है तथा 4 दिनों के अंदर उन आँखों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी तैयार रखना जरूरी है। पंजीकरण के लिए आई बैंक की ओर से एक बेसिक फॉर्म भरवाया जाता है और प्रतिज्ञा ली जाती है। इसके बाद नेत्रदान कार्ड दिया जाता है। लोग जो आँखों का दान नहीं कर सकते हैं, वो जिनकी मृत्यु एड्स के कारण हुई हो
या हेपेटाइटिस बी और सी के कारण।

0: उत्पन्न हुई हो, रैबीज के कारण अथवा सर्पदंश के कारण जिनकी मृत्यु हुई है वो भी आँखों का दान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी मृत्यु सेप्टिसेमिया या सक्रिय ल्यूकेमिया के कारण हुई हो वो भी आँखों का दान नहीं कर सकते हैं। हमारे झारखंड राज्य में भी झारखंड आई बैंक कार्यरत हैं। इंटरनेशनल रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट के अनुसार प्रति 10 लाख की आबादी पर स्पेन में 35.9, क्रोएशिया में 33.5, पोर्टुगाल में 28.5, अमेरिका में 25.9, ऑस्ट्रिया में 23.2, ऑस्ट्रेलिया में 14.9, न्यूजीलैंड में 8.6 व भारत में सिर्फ और सिर्फ 0.005 डोनर है। इन आंकड़ों से बखूबी समझा जा सकता है कि हमारे देश में अन्य देशों के मुकाबले कितना कम नेत्रदान हो रहा है। इसकी मुख्य वजह जागरूकता की कमी है। हमारे विशाल जनसंख्या वाले भारतवर्ष के लिए यह आंकड़ा बहुत कमतर व चिंताजनक है। हमें यह समझना व समझाना भी होगा कि नेत्रदान तो महादान है। मृत्यु के पश्चात भी हमारी आंखें दुनिया देख पाएंगी, इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। इस अनमोल अतुल्य खुशी के लिए निरंतर प्रचार प्रसार व जन जागरण की आवश्यकता है। वर्तमान में हमारे देश में 150 नेत्र बैंक कार्यरत हैं। कुछ जगहों जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात आदि जगहों पर नेत्र बैंक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इनके सफल संचालन हेतु समेकित प्रयास की आवश्यकता है।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे नीता चौहान को। शीर्षक था नेत्रदान से दृष्टिदान संभव। अब कार्यक्रम प्रमुख प्रशांत गौरव जी के इन शब्दों को सुनते हैं।
2: आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्षों से आकाशवाणी डाल्टनगंज ने अपनी विश्वसनीय आवाज़ के माध्यम से लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया है। ये यात्रा हमारे श्रोताओं के स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं थी। इस विशेष अवसर पर हम अपने पूरे श्रोता परिवार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह संकल्प दोहराते हैं कि भविष्य में भी आकाशवाणी डाल्टनगंज विश्वसनीय, सार्थक और रोचक प्रसारण के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। आपका प्रेम, विश्वास और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आकाशवाणी डाल्टनगंज परिवार की ओर से स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक

इसीलिए ये आवश्यक है कि युवाओं को ऐसा वातावरण मिले जो स्वच्छ, स्वस्थ और साथ ही सुरक्षित हो। स्वच्छ वातावरण केवल साफ सफाई तक ही सीमित नहीं है श्रोताओं, बल्कि इसमें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, साफ सड़कें, कूड़ा कचरा रहित आसपास वातावरण, हरियाली और प्रदूषण मुक्त वातावरण भी शामिल है। गंदगी और प्रदूषण से अनेक बीमारियां फैल सकती हैं। दूषित पानी से पेट और आंतों का जो संबंधित बीमारियां होती हैं उससे लोग बीमार, गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वातावरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि साफ सुथरा और हरा भरा वातावरण मन को शांति देता है। पेड़ पौधे, खुली जगह और स्वच्छ वातावरण तनाव कम करने में तथा सकारात्मक सोच बढ़ाने में भी सहायता करती है। स्वस्थ मन से ही हमारे युवा जो है उन्हें पढ़ाई में मन लगेगी, साथ ही साथ वे उनके कार्यों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और वे अपने लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे। आज के युवा ही कल के माता पिता, शिक्षक, किसान, कर्मचारी, जन प्रतिनिधि बनेंगे। तो यदि युवा पर्यावरण संरक्षण को समझते हैं, अपनाते हैं, तो आने वाली

जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर और आसपास सर सफाई पे विशेष ध्यान दें, साथ ही दूसरों को भी जागरूक करें। यदि आसपास कचरे हो या नाली में गंदगी हो तो इन सभी चीज़ों को वे वहाँ पे सफाई करने में और करवाने में भी अपना सहयोग दे सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना होगा, पानी बचाना होगा, पेड़ लगाना होगा इत्यादि इत्यादि, ये सभी जो है स्वच्छता के अंतर्गत ही आते हैं। और इन सभी बिंदुओं पर ध्यान युवाओं का जरूर होना चाहिए और इसे अपनी जिम्मेदारी भी उन्हें समझनी चाहिए, ताकि वे आगे तभी यदि वे समझते हैं अपनी जिम्मेदारियों को तभी वे आसपास वातावरण जो है वो साफ़ सुथरा होगा और आने वाली पीढ़ियां जो हैं उन्हें देखकर उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकती हैं। तो चलिए श्रोताओं, अब समय हो चला है कि हम आपसे

0: पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार का आकस्मिक निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है और राज्य ने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि तथा समर्पित मंत्री को खो दिया है। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार के योगदान और सेवाओं को सदैव स्मरण किया जाएगा। इधर मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार के निधन पर आज और कल दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द रहेंगे और कल सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय शोक के दौरान नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने वाली सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर घोषित राजकीय शोक और सरकारी अवकाश के मद्देनजर कल होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। रांची और लोहरदगा समेत अन्य जिलों के प्रशासन ने संबंधित मतदाताओं से कहा है कि सुनवाई की नई तिथि की जानकारी BLO के माध्यम से दी जाएगी। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आज सिमडेगा पहुंचे। श्री महतो ने कहा कि भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बसुकीनाथ धाम में भादो मेले के दौरान आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रावणी मेले की तर्ज पर श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर पूजा अर्चना और जलार्पण कराया गया। सुबह 4 बजे से ही कांवरिये कतार में लगकर बाबा फौजदारी नाथ का जलाभिषेक करने लगे। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर सुख समृद्धि और मनोकामना की कामना की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 MHz पर प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि सोयाबीन सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होते हैं। जितनी फायदेमंद ये हमारे सेहत के लिए है, लाभदायक है, उससे कहीं अधिक लाभदायक हमारे किसान भाइयों के लिए है उसकी खेती करना। लेकिन यदि किसान भाई इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा इससे मुनाफा मिल सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज हम सोयाबीन के वैज्ञानिक तरीके से खेती पे कुछ बातें करेंगे। तो श्रोताओं, हम बता दें कि सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहनी एवं दलहनी फसल है। इसके वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर कम लागत में अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है, यदि किसान भाई कुछ बातों का ध्यान रखे तो। जैसे कि सोयाबीन के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या मध्यम काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। खेत में पानी रुकने से सोयाबीन की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और साथ ही पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में एक दो जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करके खेत को भुरभुरा जरूर कर लें, साथ ही समतल भी कर लें। खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही बुआई करें। यदि सोयाबीन का आप बुआई करने जा रहे हैं श्रोताओं, तो इसके उन्नत किस्म का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जो प्रमाणित एवं उन्नत किस्म के बीज होते हैं वो रोग रोधी होते हैं और हमेशा जो है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्मों का चुनाव करना उपयुक्त होता है। बीज की मात्रा इस प्रकार से होनी चाहिए, लगभग 70 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह बीज के आकार और बुआई की विधि पर भी निर्भर करता है। बुआई से पहले अच्छे और साफ बीज का चयन करें। बीज को अनुशंसित बीज उपचार दवा से उपचारित करें। इसके बाद सोयाबीन के लिए उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से तथा ज़रूरत के अनुसार PSB जैसे जैव उर्वरक से उपचार करना लाभकारी होता है। जैव उर्वरक को रासायनिक दवा के साथ सीधे मिलाकर न रखें। उपचार का क्रम और मात्रा, उसमें लिखी हुई जो मात्रा होती है उसके उस नियम को पालन करें और उसी के अनुसार मिलाएं। और मानसून की अच्छी बारिश के बाद जब खेत में पर्याप्त नमी हो जाए तब ये समय जो होता है श्रोताओं काफ़ी उपयुक्त होता है बुआई के लिए। बहुत जल्दी सूखी मिट्टी में या बहुत देर से बुआई करने से अंकुरण और उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। बुआई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कतार से कतार की दूरी लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और बीज को लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। बहुत गहरी बुआई करने से अंकुरण प्रभावित हो सकता है, तो ध्यान रहे बहुत अधिक गहराई पर बुआई नहीं करनी चाहिए, 3 से 5 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। और सीड ड्रिल या सीड फर्टिलाइजर ड्रिल से अगर बुआई करते हैं तो इसे समान दूरी पर बुआई हो सकती है। और खाद एवं उर्वरक की मात्रा भी इस प्रकार से होनी चाहिए। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों की मात्रा तय करना बेहतर होता है श्रोताओं। और सोयाबीन में अत्यधिक नाइट्रोजन देने से बचें, क्योंकि ये एक दलहनी फसल खुद है। बुआई के समय अनुशंसित मात्रा में फास्फोरस, पोटास और सल्फर दें। जिंक या अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर मृदा परीक्षण के आधार पर उनका प्रयोग करें। जैविक खाद या अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है। सोयाबीन की शुरुआती अवस्था में खरपतवार फसल के साथ पोषक तत्व, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो बुआई के लगभग 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार दूसरी निराई गुड़ाई करें और खरपतवार नाशक का प्रयोग तभी करें जब मिट्टी और सोयाबीन की अवस्था में ज़्यादा मात्रा में खरपतवार निकल आई हो, आवश्यकता पड़ने पर ही आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। सोयाबीन में तना मक्खी, गर्डल बीटल, चक्रभृंग, तंबाकू किल्ली, सेमी लूपर और अन्य पत्ती खाने वाले कीट नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप खेत का नियमित रूप से परीक्षण करते रहें। शुरुआती अवस्था में अंडे और छोटी इलियों को नष्ट करें। साथ ही एक ही कीटनाशी का प्रयोग बार बार ना करें। अलग अलग जो है अनुशंसित मात्रा में कीटनाशियों का क्रम बदलना चाहिए और कीटनाशियों का क्रम बदलने से भी उन पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। रोगों से बचाव के लिए श्रोताओं जरूरी है कि प्रमाणित और स्वस्थ बीज का प्रयोग करें। रोग रोधी किस्मों को प्राथमिकता दें। खेत में जल भराव ना होने दें। फसल अवशेष जो भी है उसका उचित प्रबंधन करें और रोग के लक्षण दिखाई देने पर उसके तुरंत उसमें कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करें या उसके लक्षण दिखाई दे तो निराकरण समय रहते कर लेना चाहिए। सोयाबीन सामान्यतः वर्षा आधारित फसल है, लेकिन लंबे समय तक सूखा पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई की जा सकती है। फूल आने और फलियां बनने की अवस्था में पानी की कमी विशेष रूप से नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे श्रोताओं कि जब फूल और फलियां आने वाली हो तो उसमें आप सिंचाई जरूर करें और ज़्यादा खेत में जमा पानी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान पहुंचा सकता है फसलों को। इसीलिए जो भी बारिश का अतिरिक्त पानी हो उसके निकासी अवश्य होनी चाहिए। और किसान भाइयों को चाहिए कि पौधे की वृद्धि, पत्तियों का रंग, कीट रोग, खरपतवार और मिट्टी की नमी पर हमेशा नज़र रखें। तो काफ़ी हद तक जो है आप इस सोयाबीन की खेती से अधिक लाभ ले पाएंगे। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। एक किसान से ली गई भेंट वार्ता है जिसमें भेंट वार्ताकार हैं दिनेश मेहता गुदरमा विश्रामपुर पलामू से। भेंट करता है संतोष कुमार।
1: तमाम किसान भाइयों, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के रजवाडी पंचायत के खनवा गांव के एक सफल किसान विजय महतो, जिनसे आज हम बातें करेंगे कि अभी वर्तमान में वो क्या खेतीबाड़ी कर रहे हैं। मोटे अनाजों में मड़ुआ बाजरा वगैरह की खेती ये किस प्रकार कर रहे हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अभी मड़ुआ की खेती की क्या स्थिति है?
2: मड़ुआ की खेती तो यहाँ से बिया जैसे उखड़ गया था, मगर अभी हम 4 किलो बिया उपजाऊ किए हैं और पूरे किसान को 100-200 ग्राम हम मैंने बांटे हैं, जो सबको लगाइए। सरकार के बहुत ही है जे मड़ुआ के खेती करिए, मकई के खेती करिए, बजरा जिनोर न, तो इस प्रकार के बहुत लोग के हम समझाए हैं और बिया घर घर जाके दिए हैं और हम भी खेती उसको अभी बिचड़ा डाले हैं।
1: अच्छा, मोटे अनाजों में अभी आप किस किस चीज़ की खेती कर रहे हैं?
2: अभी मोटे अनाज में मक्का, अभी मड़ुआ लगाने वाला है, रहर, तिल और धान। उनके तो बिचड़ा किए हैं, वो तो खैर पानी की स्थिति खराब है। और मोटा अनाज में
1: मड़ुआ की खेती की अगर बात करें तो
2: मड़ुआ खेती तो अच्छा है, सरकार भी बहुत ध्यान दे रहा है जो मड़ुआ और मकई की खेती करे, जिनोर बजरा। और इसीलिए हम लोग भी चर्चा करके गांव में बैठक वैठक करके बीजा उजा बांटे हैं। जो पुरान चीज तो मोटा अनाज वाला सबे मैंने उखड़ते जा रहा है यहाँ से, मगर हम लोग अभी मेरे मिलकर रांची से मिला है ब्लॉक के माध्यम से मड़ुआ, उस पर हम लोग 10-20 किसान हम लोग तैयारी किए हैं।
1: तो ब्लॉक से मड़ुआ लेने के लिए क्या किए थे?
2: हम लोग के रजिस्ट्रेशन है, जो कोई चीज आता है ब्लॉक में तो हम लोग के यहाँ फोन करके BTM DO जो हैं बुला के दे देते हैं।
1: अच्छा,
2: परमानेंट हम लोग 150 को किसान के रजिस्ट्रेशन है।
1: अच्छा,
2: वहीं से आता है माल।
1: अच्छा, और तब करते हैं। अच्छा, इसके लिए जैसे हमारे किसान भाई अगर मोटे अनाज खेती में मड़ुआ की खेती करना चाहें तो क्या करेंगे? सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करेंगे?
2: पहले बिचड़ा के हम लोग खेत तैयार कर देते हैं, उसको हल्का भुरभुरी बना के बिचड़ा छीट के उसको पानी पटा देते हैं। अगर पानी बारिश हो गया तो अपने जनरेशन हो जाएगा, नहीं होगा तो पानी पटा देते हैं। 20 से 25 दिन में बिचड़ा जब हो जाएगा तो मड़ुआ के खेत मैंने इतना तैयारी करना है जो कई चास करना है उसको।
1: अच्छा,
2: इतना तैयारी करना है। और जब हल्का हल्का बारिश होगा तो धान जिसने एक हो लगा देते हैं हम लोग खेत में।
1: अच्छा अच्छा, उसमें पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती है?
2: पानी की तो बहुत आवश्यकता कम है, बारिश करता है तो पटाने की जरूरतें नहीं है उसका।
1: अच्छा।
2: और 3 नंबर खेत में भी होता है पैदा।
1: अच्छा।
2: जहाँ एकदम कोई मरल भूमि है वहाँ आप अच्छा से खेत तैयारी करिएगा तो पैदा 3 नंबर खेत में ही होता है।
1: अच्छा, और लगभग 1 कट्ठा में अगर मड़ुआ लगाया जाए तो कितना उत्पादन करेंगे?
2: 1 कट्ठा में अगर मड़ुआ अच्छा पैदा होगा तो 30 से 40 किलो
1: उत्पादित हो जाएगा।
2: अच्छा,
1: मड़ुआ के साथ और किसकी खेती कर रहे हैं आप?
2: मड़ुआ के साथ
1: बाजरा की अगर बात करें तो
2: बाजरा के भी हम लोग मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं। जो बिया आवे बहुत पानी की स्थिति खराब है तो टणियाने खेती हो भी करेगा, मोटे अनाज होगा। तो मार्केट में तो अभी बिया नहीं मिल रहा है, मगर फिर भी हम लोग जुगाड़ लगाए हैं ब्लॉक के माध्यम से जो बिया मंगाइए हर किसान। अभी जो धान के खेत है उसका में भी मड़ुआ बजरा जिनोर ये सब लगा दीजिए, एकदम कम पानी में भी पैदा अच्छा हो।
1: अच्छा, इस प्रकार से खेती हो रही है। और धान की खेती तो अभी नगण्य स्थिति में,
2: धान के खेती
1: बारिश
2: तो
1: भी नहीं,
2: बारिश नहीं है।
1: सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों की क्या स्थिति है?
2: सब्जी भी तो लगाए हैं हम 1 एकड़ में, नेनुआ है, झींगी है, करेली, बोदी और 6 क्विंटल हम वोल की खेती भी किए हैं।
1: अच्छा,
2: तो मिला जुला के ठीक है।
1: मगर
2: बारिश की स्थिति से उपजाऊ कम हो रहा है, मगर फिर भी अभी हम लोग पानी पटा पटा के जिंदा रखे हैं।
1: वोल की खेती की तैयारी कैसे करते हैं?
2: वोल की खेती 2 तरह के होता है। एक अगर माघ फागुन में लगाते हैं तो पानी ज़्यादा लेता है, और एक बारिश जिसे जून में अगर लगाते हैं तो मैंने वो होता है, मगर उसको भर गर्मी हम लोग खेत के जोतते जोतते एकदम पूरे तैयारी कर लेते हैं। जब तैयारी हो जाता है तो 2.5x2.5 पर 1.5 फीट के हम लोग गड्ढा बना लेते हैं। गड्ढा बनौला के बाद उसको 8 दिन 10 दिन सूखने देते हैं। ओकरा बाद अलियार कतवार उसको डाल के आग लगा देते हैं। इसको बाद हम लोग उसको तैयारी करके ओल भी लगाते हैं। तो हम लोग अपना विधिवत, जैसे अगर ओल के खेत दरी तैयार हो गया तो एक केमिकल दवा डाल देते हैं दर में, और तीसरे ओल जब फार लेते हैं 2 फारा 4 फारा तो ओल को हम लोग कच्चा गोबर में घोल के घोल में बोथ बोथ के लगाते हैं।
1: अच्छा, और अब मड़ुआ का जैसे बीज के हम बात किए थे सर्वप्रथम, तो मड़ुआ के बीज के लिए अभी भी वितरण हो रहा है ब्लॉक वगैरह में?
2: ब्लॉक में आया था, बटा गया।
1: अच्छा,
2: और हम भी 4 किलो ले गए तो पूरे गांव में 100-150 ग्राम कहे जो हर किसान लगाइए, 10 से 15 लगाइए, बिया उपजाना है तो ये चीज़ अब मिलना ही वाले हैं। रांची जिला साइल था और ब्लॉक में आया तो ब्लॉक के माध्यम से हम लोग के मिला, हमको पर्सनल बुला के दिए, मगर हम पूरे गांव में 100 ग्राम 50 ग्राम जे जैसा किसान था हम लोग सबके दे के समझाए ये तरह के खेती करना है। और कर ही रहा था लोग, अभी बीच में सब स्टैंडर्ड क्लास के धान के खेती और गेहूं पर चल गया, इसलिए मड़ुआ मकई छोड़ दिया। मगर जो स्थिति बारिश के है अब मड़ुए मकई की खेती करना ही होगा।
1: और ये बाजरा
2: भी बहुत 3 नंबर

0: खेत में है, कोई मेहनत नहीं है और वो आदमी के भी खाने में ठीक है और एक मवेशी के दुधारू जानवर के भी खिलाइएगा तो बहुत अच्छा है, दूध भी उसका बहुत अच्छा मैंने खाने से।
1: चारा के रूप में भी हो जाता है?
0: चारा के रूप में है, वो आदमी के भी अच्छा है।
1: इस प्रकार हमारे किसान भाई अगर यदि मड़ुआ वगैरह की खेती करना चाहें तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।
0: हमको यही कहना है कि हर किसान जागरूक होकर अगर मड़ुआ मकई बजरा जिनोर की खेती करे तो कम बारिश में कम पानी में आज जो स्थिति है नहीं मिलेगा, और धान पर किसान भी रहेंगे जो धान होगा और ये होगा तो नहीं होगा। हर खेत में मड़ुआ मक्का और बाजरा जिनोर के खेती करें और हम भी अभी 5 एकड़ जमीन के जोत बना के रखे हैं और बारिश नहीं होगा तो हम मक्का की खेती विधिवत लगावेंगे, बारिश हल्का हल्का भी होगा तो मक्का की खेती हो जाएगा और चावल और मक्का के एक रेट है मार्केट में।
1: हाँ,
0: और मक्का की रोटी भी खाइएगा तो आपका एकदम शुद्ध भोजन है, कोई बीमारी नहीं है।
1: कुल मिलाकर हमारे किसान भाइयों को मोटे अनाजों की खेती की तरफ वापस आने की जरूरत है ताकि वो प्रति जो उनकी जो जमीन है खेती योग्य उसको उपयोग कर सके बढ़िया से, क्योंकि अभी पानी की स्थिति ठीक नहीं है। इस स्थिति में हमारे किसान भाई कम सिंचाई वाली फसलों का उत्पादन ले सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े विजय महतो जी और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां साझा की, इसलिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एक किसान से ली गई भेंटवार्ता, जिसमें भेंटवार्ताकार थे दिनेश मेहता और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और चलिए श्रोताओं, अब हम बातें करेंगे मक्के की, क्योंकि मक्का जो है मुख्य खाद्य फसल है हमारे पलामू में, और अभी जो है मक्के की फसल भी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है, लेकिन फिर भी मक्के की फसल में भी काफ़ी देख रेख की ज़रूरत पड़ती है और समय पर उर्वरक डालना, कीटों पर नियंत्रण करना। तो चलिए आज विस्तार से हम जानते हैं कि किस प्रकार हमारे किसान भाई मक्के से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप बता दें कि मक्का एक महत्वपूर्ण अनाज है और ये बहुउपयोगी अनाज भी है, और इसकी उपज लेने के लिए उन्नत बीज, सही समय पर बुआई, संतुलित पोषण, सिंचाई, खरपतवार एवं कीट रोग प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही खेत का यदि चुनाव करते हैं हमारे किसान भाई तो ध्यान रहे कि वह अच्छी जल निकास वाली दोमट मध्यम दोमट मिट्टी उपयुक्त रखता है, उपयुक्त होता है इसकी खेती के लिए, और साथ ही खेत में पानी का जमाव ना हो इस पर भी ध्यान रखें। खेत की 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है मक्के की बुआई के समय, और खेत को समतल रखें ताकि पानी का समान रूप से सभी पौधों तक पहुंच सके। श्रोताओं, यदि आप बीज का चुनाव करते हैं तो प्रमाणित एवं अनुशंसित संकर या उन्नत किस्म का बीज का चुनाव करें जो अच्छे गुणवत्ता वाले हो, और बीज उपचार करके ही बीज की बुआई करें। तो समय पर बुआई कर लें और मक्के की अच्छी पैदावार के लिए सामान्यतः जो है मॉनसून शुरू होने के आसपास की जाती है। ध्यान रहे श्रोताओं की कतार से कतार की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करें और अधिक घनी बुआई न करें। अधिक मक्का अधिक पोषक तत्व लेने वाला फसल है तो केवल यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ देने के बजाय उसे अलग अलग विभाजित करके डालें और अलग अलग समय पर डालें। खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है श्रोताओं। बुआई के लगभग 15 से 20 दिन बाद खेत में खरपतवार की नियंत्रण कर लें यदि आवश्यकता हो तो, और आवश्यकता अनुसार समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और शाकनाशी दवाओं का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करें। बार बार शाकनाशी दवाओं का उपयोग करने से बचें और मक्का में पानी की कमी विशेषकर फूल आने और दाना बनने की अवस्था में उपज को प्रभावित कर सकती है। तो ध्यान रहे श्रोताओं कि खेत में जल भराव ना हो, वर्षा कम होने पर आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। हल्की मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। मक्का में फॉल आर्मी बर्म यानी तना पत्ती खाने वाले सुड्डी होती है जो आपके फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो समय रहते इन जो कीट और रोग लगते हैं उनके आप निगरानी करते रहें और जैसे ही उनका लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उस पर नियंत्रण कर लेना उचित होता है। और श्रोताओं, फसल अच्छी हो, उत्पादन अच्छी हो, इसके लिए आवश्यकता अनुसार मिट्टी चढ़ाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मकई के जो फसल होते हैं, तने होते हैं, वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो उसमें मिट्टी चढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि अधिक बारिश होने पर जो तना है वो झुके नहीं और अच्छी प्रकार भली भांति वो खड़े रहे। इसके लिए मिट्टी ज़रूर चढ़ाएँ। लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था में आवश्यकता अनुसार पौधे में मिट्टी जो चढ़ाने का काम है वो कर लेना चाहिए। और पौधे की संख्या और वृद्धि समान है कि नहीं इस पर ध्यान दें। पत्तियों का रंग भी सामान्य है या नहीं इस बात का भी ख्याल जरूर रखें। साथ ही किसी भी प्रकार के कीट या रोग के लक्षण दिखाई दे तो उस पर नियंत्रण अवश्य करें और खेत में कहीं भी पानी जमा ना हो इस पर भी ध्यान दें। तो इन बातों को आज यदि आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चय ही आपको मकई के फसल से अच्छे उत्पादन प्राप्त होंगे और इससे आप जो है वो बेहतर कमाई भी कर सकते हैं। तो इस जानकारी के बाद श्रोताओं, चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा को, और शारदा सिन्हा के स्वर में गाए इसी लोकगीत के साथ अब हमें दे इजाजत कार्यक्रम खेती बाड़ी से। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। लीजिए अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम जननी। जननी कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। और बहनों, हमारी जो बहनें हैं उनका भरपूर सहयोग रहता है अपने खेतों में, खलिहानों में, या हम कह सकते हैं कि उनके बिना खेती बाड़ी करना असंभव सा है, क्योंकि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और अपना पूरा पूरा योगदान देती हैं। इतना ही नहीं बल्कि अपने सूझबूझ के द्वारा वो खेतों के अलावा खेतों के मेड़ों पर भी वृक्षारोपण करती हैं, फल वृक्ष लगाती हैं या नकदी फसल लगा के भी वे अपने आय का जरिया ढूंढ लेती हैं। जी हाँ बहनों, खेतों की मेड़ों को कभी भी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि उसमें आप फलदार वृक्ष लगा सकती हैं और अतिरिक्त कमाई भी कर सकती हैं। बहनों, फलदार वृक्ष जो है आपके आमदनी का जरिया भी बन सकता है। इससे खेत की मेड़ भी मजबूत होती है, मिट्टी का कटाव भी रुकता है और लंबे समय तक फल के रूप में अतिरिक्त उत्पादन भी मिलता रहता है। तो बहनों, मेड़ पर ऐसे पौधे लगाएं जिनकी जड़ें फसल के क्षेत्र में बहुत अधिक ना फैले और जिनकी छाया मुख्य फसल पर कम पड़े। क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार पौधे का चुनाव करें, जैसे कि अमरूद। अमरूद जो है बहनों, वो अपेक्षाकृत कम जगह लेता है और उत्पादन भी अच्छा देता है। उसी प्रकार से यदि हम बातें करें नींबू, कागजी नींबू की, तो मेड़ के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है और नियमित रूप से आय का स्रोत भी, क्योंकि नींबू जो है वो सालों भर उससे उत्पादन मिलता रहता है। आंवला, हमारे पलामू में आंवला की खेती बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि आंवला के लिए बहुत अधिक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न ही बहुत अधिक इसमें सिंचाई की, तो कम देखभाल में ये अच्छा उत्पादन देता है। इसलिए आंवले की खेती करना भी बहुत ही लाभदायक होता है और हमारी बहनें जो है आंवले की बिक्री करके भी बहुत अच्छा कमाई कर सकती हैं। यदि हम बात करें बेर की, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि बेर एक तरह से जंगली फल होता है और ये कहीं भी बहुत आसानी से उगाता है। तो यदि बेर को अपने क्षेत्रों के लिए चुनती हैं, यानी मेड़ों पर लगाती हैं, तो इससे आपको बेर के फल तो प्राप्त होंगे ही और इसे आप बेचकर भी इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। हमारी बहनें चाहें तो अनार का पौधा भी लगा सकती हैं, क्योंकि अनार भी बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उचित जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए और उसमें अनार जो है आसानी से लगाए जा सकते हैं। यदि हम बात करें आम के वृक्षों की, तो आम तो खासकर हम देखते ही हैं कि खेतों में इर्द गिर्द आम के पेड़ लगे होते हैं। यदि लेकिन उसे व्यवस्थित रूप से मेड़ों पर लगाई जाए तो बहुत अधिक वो जो है जगह कम जगह में ज़्यादा फल दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि खेतों में वे जगह कम लेंगे और यदि मेड़ों पर लगाते हैं तो उसे आपके खेत में जो जगह है वो बच जाएंगी और आम जो है वो दो तीन साल में तैयार हो जाता है ये वृक्ष और उसके जो फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रहे कि उचित दूरी पर आप आम का पौधा लगा सकती हैं अपने मेड़ों पर। कटहल जो है बहनों, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें भूमि की आवश्यकता, जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आसानी से लग जाती है, तो ये भी बहुत ही फायदेमंद है। कटहल का जो पेड़ है वो लगाए जा सकते हैं मेड़ों पर। तो पौधे लगाने से पहले मेड़ को अच्छी तरह से मजबूत और समतल कर लेना ज़रूरी होता है। मेड़ पर पानी रुकने की स्थिति ना हो तो वहाँ जल भराव होता है। जहाँ फलदार वृक्ष लगाने जा रहे हैं वहाँ पर जल भराव नहीं होनी चाहिए, जल निकास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।
ध्यान रहे कि पौधे की दूरी पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि दूरी पौधे की प्रजाति और उसकी बढ़वार के अनुसार रखी जाती है। सामान्यतः छोटे आकार वाले पौधे के बीच लगभग 4 से 6 मीटर होनी चाहिए, जबकि बड़े वृक्षों के बीच 6 से 10 मीटर दूरी होना ज़रूरी है। बड़े पेड़ों को खेत के उत्तर या पश्चिम किनारे पर लगाने से उनकी छाया का जो प्रभाव है अपेक्षाकृत जो फसलों पर पड़ता है, और ये उस गर्मी के दिनों के लिए बेहतर होता है कि लू लहर से फसलों को उससे राहत मिलती है। पौधे लगाने से लगभग 2-4 सप्ताह पहले उपयुक्त आकार के गड्ढा तैयार कर लेने चाहिए और निकली हुई मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद मिलाकर गड्ढे में भरें और खाद के साथ मिट्टी अच्छी तरह मिलाएं, ताकि ताजी गोबर की खाद सीधे जड़ों के संपर्क में ना हो। अधिकांश फलदार पौधे के वृक्ष पौधे जो हैं वो बरसात के समय यानी मानसून जो शुरू होती है उसी समय लगाई जाती है, ताकि कम समय में और कम मेहनत में आसानी से वो पकड़ सके और मिट्टी में पर्याप्त नमी होने की वजह से पौधे जो आसानी से लग जाते हैं। और सिंचाई की अगर सुविधा ना हो तो समय पर सिंचाई भी करनी आवश्यक हो जाती है। पौधे को लगाने के बाद बहनों उसकी देखभाल करनी भी उतनी ही आवश्यक है। पौधे लगा देना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि जब तक वो 2-3 साल के नहीं हो जाते तब तक उसके बच्चों के भांति देखभाल की जाती है। पौधे को बांस या लकड़ी की खूंटी से सहारा दें। पशुओं से बचाने के लिए टी गार्ड या बाड़ी लगाएं। बारिश न होने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें और पौधे के चारों ओर खरपतवार नहीं होनी चाहिए। सूखी और रोगग्रस्त अनावश्यक शाखाएं यदि निकल जाती हैं तो उनकी कटाई छटाई भी समय पर जरूर करें। पौधे के चारों ओर मल्च भी लगा सकते हैं ताकि उसमें नमी सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और यदि कीट और रोग उस पर कभी निरीक्षण करते रहें उस पर लगते हैं तो समय पर उसका प्रबंधन करना भी आवश्यक हो जाता है। तो इस जानकारी के बाद बहनों चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, जिसमें भेंट वार्ता का विषय है प्राकृतिक खेती। भेंट वार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। तो आइए बहनों सुनते हैं।

0: भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, हमारी कृषि, हमारी जो खेती बाड़ी है वो हमेशा फले फूले, हम गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करें, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे, जल संरक्षण की जो क्षमता है हमारी मिट्टी में वो ज़्यादा मजबूत रहे, अधिक से अधिक जल संरक्षण हो, जल का सतह बना रहे, बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर वापस आने की आवश्यकता है। आज केंद्र सरकार भी प्राकृतिक खेती के लिए ज़्यादा बल दे रही है ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति मजबूत हो और गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन करके हम रोग बीमारियों से दूर रहें। और आज प्राकृतिक खेती से संबंधित विस्तृत बातें, जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं गढ़वा जिला के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि प्राकृतिक खेती है क्या।
1: जैसा कि नाम से ही यह अवगत हो जाता है कि प्राकृतिक रूप से जो है, जो हम खेती करते हैं उसको प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें कि कोई भी रासायनिक तत्व का व्यवहार नहीं किया जाता है
0: जी।
1: साथ ही साथ जो फैक्ट्री में जो बन के तैयार होता है, जिसका कि हम लोग खेत में उत्पादन में जो है उसका प्रयोग करते हैं, उसको भी नहीं करना है। तो इस कमी को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर जो भी संसाधन उपलब्ध है
0: जी,
1: उसका उपयोग करके हम खेती करते हैं, वह प्राकृतिक खेती है। ऐसे इस खेती का अगर हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे और इसका प्रयोग करेंगे तो प्राकृतिक खेती में जो है ना, वो लागत कम है, क्योंकि हम बाज़ार से बहुत सारा रसायन खरीद के लाते हैं तो उसका कुछ न कुछ मूल्य रहता है निर्धारित, और वह मूल्य हम लोग भुगतान करके जो है हम लोग लाते हैं। तो उसकी जो है प्राकृतिक खेती जब हम लोग करना शुरू करते हैं तो उसका बचत हो जाता है
0: जी।
1: साथ ही साथ जो हमको उत्पाद मिलता है वो रसायन मुक्त है, जो कि बहुत बड़ी एक इसको इस खेती की उपलब्धि है, क्योंकि जो भी रसायन का हम खेती में व्यवहार करते हैं उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम जो है वो जो है जीव पे पड़ता है, चाहे हम हो या मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में बहुत सारे लाभकारी जीव भी रहते हैं,
0: चाहे वातावरण में,
1: वातावरण में है, तो उससे जो है यह इसका बचाव हो जाता है। साथ ही जो उत्पाद बन के तैयार होता है
0: जी,
1: उसका जो गुणवत्ता है रासायनिक जो हम लोग प्रयोग करते हैं उससे जो है उत्तम होता है। साथ ही साथ अगर इसको हम लोग बाजार में बेचने जाएंगे और ये सही में प्राकृतिक रूप से रहेगा तो उसका बाजार मूल्य भी जो है वो ज्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात इस तकनीक का यह है कि जब सूखा पड़ता है तो रासायनिक जब भी हम लोग खाद या और दवाई का प्रयोग करते हैं वो फसल जल्दी सूखने लगता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन जब हम प्राकृतिक विधि से जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें जो है नमी जो है बना रहता है, सूखा पड़ने पे भी है फसल को नुकसान जो है वो नहीं के बराबर होता है, और मिट्टी का जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाता है, और कीड़े मकोड़े का प्रकोप जो है
0: कम होता है,
1: कम हो जाता है
0: जी।
1: तो इस तकनीक का ये सबसे बड़ा जो है वो लाभ है
0: जी। अब प्रश्न उठता है कि हमारे किसान भाई लोग प्राकृतिक खेती में क्या क्या अपनाएं।
1: अगर जो भी किसान भाई इसको अपनाना चाहते हैं तो मुख्य रूप से इसमें चार जो है इसका घटक है, जिसको पिलर भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे जीवामृत या घन जीवामृत।
0: अच्छा।
1: या पोषक तत्व का जो है विकल्प है, जैसे बाजार से हम लोग नेत्रजन के लिए यूरिया डीएपी का प्रयोग
0: करते हैं
1: तो इसका विकल्प है जीवामृत और घन जीवामृत।
0: अच्छा।
1: और जो बीज उपचार हम लोग करते हैं
0: जी,
1: तो बीज उपचार के लिए कार्बनराइजिंग का पहले प्रयोग होता था, और भी कई रसायन का प्रयोग जो है इसमें होता है
0: जी,
1: तो उसका विकल्प है बीजामृत।
0: अच्छा।
1: जो कि बीज उपचार के लिए ही है, इसमें कोई भी रसायन नहीं है।
0: अच्छा।
1: इसके अलावे जो नमी का या सिंचाई का जो प्रबंधन है उसको हम लोग वास्पा कहते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हम लोग जो है जब भी खेती में पटवन करते हैं
0: जी जी,
1: तो पानी का जो मात्रा है वो ज्यादा रहता है, तो उसको जो है सही तरीके से देना इसमें है, कम पानी की इसमें आवश्यकता होती है। दूसरा जो है मल्चिंग है।
0: अच्छा।
1: जो कि हम लोग फसल अवशेष के द्वारा कर सकते हैं, या दो लाइन जो फसल है उसके बीच का जो खाली जगह है उसमें एक दूसरा फसल अगर हम लोग लगा देते हैं
0: जी
1: तो खरपतवार का भी उसमें प्रबंधन हो जाता है, नमी जो है वह ज़्यादा दिन तक बरकरार रहता है। तो ये मुख्य चार पिलर है और इसी पे जो है प्राकृतिक खेती जो है वो निर्भर करता है। जहाँ तक जैसे बीज उपचार के अभी हम लोग बात कर रहे
0: जी
1: थे,
0: जी
1: तो बीज उपचार में जो है चूंकि इसमें कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लाना है, तो इसका जो हम लोग घोल बनाते हैं, जैसे 20 लीटर हम लोग पानी लेते हैं और गाय का गोबर और गोमूत्र लेते हैं,
0: जी
1: लेकिन गाय का गोबर और गोमूत्र जो है वो देसी गाय का होना चाहिए,
0: अच्छा, संकर वगैरह नहीं
1: सन
0: होना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: होना चाहिए,
0: वाह।
1: चूंकि इसमें जो है इसका जीवाणु जो है उसकी संख्या ज़्यादा रहता है
0: वाह
1: और उसी का मुख्य रोल जो है इस खेती में है।
0: जी।
1: चूंकि ये जो हम लोग डालते हैं तो मिट्टी में बहुत सारा पोषक तत्व तो है जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसको उपलब्ध कराता है और उसकी संख्या बढ़ने से जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहें कि उत्पादन भी बढ़ता है। देसी गाय का गोबर और गोमूत्र होता है उसमें जो है जीवाणु जो है लाभकारी जीवाणु की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग गोबर जो है हमेशा ताज़ा लेंगे,
0: अच्छा
1: लेकिन गोमूत्र जितना पुराना हो
0: अच्छा मतलब
1: उतना ही
0: पुराना मतलब
1: अच्छा,
0: फिर भी कितने दिन का पुराना होना चाहिए? होना
1: उसको आप महीना दो महीना चार महीना
0: चाहिए।
1: भी इकट्ठा करके आप रख सकते हैं, कहीं
0: अच्छा
1: कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
0: अच्छा
1: गोबर जो है ताज़ा होना चाहिए, जिस दिन हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं उसी दिन का गोबर होना चाहिए। तो जब हम लोग बीजामृत बनाएंगे तो 20 लीटर पानी में गोबर जो है गाय का वो 5 किलो हम लोग देंगे और
0: अच्छा
1: गौमूत्र जो है 5 लीटर,
0: जी
1: और उसमें जो है 250 ग्राम जो चूना होता है हम लोग उसको मिलाते हैं, और 50 ग्राम जो है पेड़ के नीचे का मिट्टी,
0: अच्छा
1: या इसको कहें कि अगर एक मुट्ठी मिट्टी है
0: अच्छा अच्छा
1: तो पेड़ का नीचे का मिट्टी लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वहाँ पे कोई भी जोत कोर या फसल नहीं होता है लगाया
0: हाँ
1: जाता
0: हाँ
1: है,
0: बिल्कुल।
1: और पौधा का जो पत्ता वगैरह जो है झड़ के वहीं सरता है और
0: इसलिए वो ज्यादा
1: उसमें जो
0: उर्वरा
1: है ना
0: शक्ति होती है उसमें।
1: उसमें जीवाणु की संख्या बहुत ज़्यादा होती है,
0: जीवाणु की संख्या होती है। जी
1: और ये जो प्राकृतिक खेती का जो उद्देश्य है
0: जी
1: जो ये लिया गया है वो जंगल से लिया गया है। जंगल
0: अच्छा
1: में आप देखेंगे कि कोई भी बाहर से खाद या कोई भी चीज़ का प्रयोग जो है उसके बर्बाद के लिए नहीं दिया जाता है, आखिर उसको पोषक तत्व तो मिलता कहाँ से है,
0: जी
1: तो इसी से मिलता है। जो पत्ते जो है पतझड़ है वो नीचे ज़मीन पर गिरते हैं सड़ते हैं और जीवाणु की संख्या बढ़ती है, ये सभी को मिला करके 24 घंटा के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद इसका जो है बीज उपचार करते हैं। उसी तरह जो है हम लोग जीवामृत का भी हम लोग व्यवहार करते हैं जो खाद का विकल्प है,
0: जी
1: और इसको बनाने के लिए 200 लीटर हम लोग पानी लेते हैं, और यह 200 लीटर पानी का जो है जब हम लोग घोल बनाते हैं तो 1 एकड़ के लिए इसका उपयोग करते हैं,
0: अच्छा
1: और उस 200 लीटर पानी में जो ताज़ा गोबर है वो 10 किलो देते हैं, गौमूत्र है वो 10 लीटर, और गुड़ 1 किलो हम लोग लेते हैं, बेसन 1 किलो, और मिट्टी जो है एक मुट्ठी जो पेड़ के नीचे का है
0: जी
1: उसको ले करके और हम लोग उसको घोल करके छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो है सुबह शाम जो है
0: जी
1: उसको घड़ी की सुई की तरह दिशा में हम लोग 2-3 मिनट के लिए घुमाते हैं,
0: जी
1: और यह जो है गर्मी के समय में 3 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन ठंडा में जो है वो 7 दिन इसको समय लगता है, और जैसे अभी ठंडा का मौसम है तो तैयार होने के बाद जो है इसको 15 दिन के अंदर में, 8 से 15 दिन के अंदर में उसको व्यवहार कर लेना है। और इसकी जो मात्रा है, चूँकि आजकल जो स्प्रे किया जाता है तो पीठ पर जो है स्प्रेयर लेकर के किया जाता है,
0: जी
1: तो उसमें जो है करीब 15 लीटर पानी का व्यवहार किया जाता है, तो 750 मिलीलीटर ही इसका जो है घोल को उसमें डाल करके हम लोग छिड़काव करते हैं,
0: अच्छा
1: तो यह जो है पोषक तत्व तो का विकल्प है।
0: जी।
1: उसी तरह से है जो घन जीवामृत का व्यवहार जो है हम लोग मिट्टी में करते हैं,
0: अच्छा
1: इसमें जो है पुराना जो गोबर रहता है तो उसको जो है ले करके उसको थोड़ा सा डंटा से ले करके बारीक कर देते हैं,
0: अच्छा
1: पाउडर की तरह बना देते हैं,
0: अच्छा
1: और फिर जो है गुड़ जो है
0: 1 किलो
1: 1 किलो लेते हैं, बेसन 2 किलो, और मिट्टी जो है 50 ग्राम यानी कि एक मुट्ठी मिट्टी
0: वही पेड़ के
1: नीचे देते हैं और उसको मिला करके 2 से 4 दिन में ये तैयार हो जाता है। दूसरा जो घन

0: जीवामृत बनाने का जो तरीका है
1: जी,
0: गोबर को चूर लेते हैं और ये जो जीवामृत है उसके ऊपर में जो है छिड़क के और उसको मॉइस्ट मतलब नमी उसमें बना देते हैं छिड़क के और उसको फिर छाया में रख देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसका प्रयोग जो है जमीन में

0: समय से हम लोग इसका छिड़काव करते हैं और 15 दिन पे इसका हम लोग छिड़काव करते रहते हैं।
1: अच्छा, एक भ्रांतियाँ हमारे किसान भाई लोग के बीच में रहती है कि हम रासायनिक खेती अगर करते हैं तो बेहतर उत्पादन कर लेते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती पे हम आते हैं तो कम उत्पादन ले पाते हैं, ये भ्रांतियाँ कहाँ तक सत्य?
0: हाँ, ये किसानों के बीच में रहती है। तो इसमें जो है, जब हम रासायनिक खाद का व्यवहार नहीं करेंगे या और भी रसायन का व्यवहार नहीं करेंगे, तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए पहले वर्ष में हम लोग जो है जो घन जीवामृत है
1: जी,
0: उसके मात्रा 2 गुण करके जो है हम लोग खेत में व्यवहार करते हैं। उससे क्या होता है कि गोबर भी का मात्रा भी ज़्यादा हो गया और उसके अंदर में जो जीव है, चूँकि पहले से किसान भाई के खेत में मिट्टी में जो है वो जीव मौजूद नहीं है, तो उस कमी को दूर करने के लिए इसको घन जीवामृत की मात्रा को हम लोग 2 गुना कर देते हैं।
1: और इससे कोई हानि नहीं है?
0: कोई हानि नहीं है, ना तो कोई प्रदूषण है, और ये जो है बहुत स्वस्थ खेती है, ना जल का इसमें प्रदूषण होता है, ना हवा का, ना मिट्टी का
1: जी।
0: और इसके उत्पाद को अगर हम लोग व्यवहार करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है खाद का विकल्प के रूप में हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। वहीं पे हम लोग अगर देखें
1: जी,
0: तो नमी, चूँकि इसमें पानी का व्यवहार कम करना रहता है, तो नमी बनाए रखने के लिए और खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए
1: जी,
0: हम लोग जो है मल्चिंग जो है उसका हम लोग उस तकनीक को अपनाते हैं जिसमें कि फसल के बीच का जो जगह रहता है उसमें जो है फसल अवशेष जो है, जैसे धान का पुआल या गेहूं का भूसी या और भी जो है, उसको हम लोग फैला देते हैं। तो वो जो है घास है वो जन्मेगा, लेकिन उसको सूर्य का रोशनी नहीं मिलेगा तो फिर वो जो है पीला होकर के मर जाएगा।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता प्राकृतिक खेती। इस पर जानकारी दे रहे थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और चलिए बहनों, चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: तो उसके बीच का जो

बहनों, आपका और हमारा ये रिश्ता जुड़ा हुआ है रेडियो के माध्यम से। और हम बता दें कि आज स्थापना दिवस है इस आकाशवाणी डाल्टनगंज की। एक बार फिर से तहे दिल से आकाशवाणी परिवार की ओर से तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और अब अपने रेडियो सखी सुनीता को दीजिए इजाज़त कार्यक्रम चलने से। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: किधर है?
2: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
0: आरबीआई कहता है,
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरबीआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
7: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
6: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मंत्री सुदिव्य कुमार को राजकीय सम्मान के साथ गिरिडीह में दी गई अंतिम विदाई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर जताया शोक। दिवंगत मंत्री के निधन पर झारखंड में दो दिन का राजकीय शोक घोषित। सरकारी कार्यक्रम रद्द और कल बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय। राजकीय शोक के कारण राज्यभर में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की सुनवाई स्थगित। अब बीएलओ के माध्यम से मिलेगी नई तिथि। हजारीबाग में आयोजित विज्ञान मेले में राज्यभर से 701 बाल वैज्ञानिकों ने लिया भाग। वर्षा जल संरक्षण, पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी पर प्रस्तुत किए गए मॉडल। और मौसम विभाग ने राज्य में 13 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। रांची समेत 7 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार का आज गिरिडीह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय सुदिव्य कुमार को गिरिडीह आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदिव्य कुमार का आकस्मिक निधन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है और राज्य ने एक कर्मठ जनप्रतिनिधि तथा समर्पित मंत्री को खो दिया है। उन्होंने कहा कि सुदिव्य कुमार के योगदान और सेवाओं को सदैव स्मरण किया जाएगा। इधर मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर गहरा शोक जताया है। आज गिरिडीह में श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि मंत्री के निधन से हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं।
1: एक व्यक्ति है सुदिव्य कुमार सोनू, जो संसदीय प्रणाली और उसकी व्यवस्था का जानकार बहुत सारा, चाहे वो भाषा विवाद का इशू हो, छात्रों का मामला हो, सदन कैसे व्यवस्थित रूप से चले, ये चिंता उन्हीं को हो सकती है। ये दुख बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है। हमारा भाई चला, क्यों चला गया समझ में नहीं आया, बहुत दुख।
0: इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सुदिव्य कुमार उनके लिए सिर्फ एक साथी मंत्री नहीं बल्कि भाई के समान थे और उनकी कमी हमेशा महसूस होगी।
2: मैंने अपने भाई को खो दिया। कल देर रात्रि ये जानकारी मिली कि उनकी तबीयत खराब है, तो 10 बजे से ही पेट में दर्द था, एब्डोमिनल पेन था। उनको परिवार वाले बोलते रह गए कि हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, तो फिर भी वो नकारते गए कि नहीं मैं ठीक। 12 बजे तबीयत और खराब, उसके बाद भी वो नकारते रहे। फिर आनंद फानंद में जब उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो फिर पास किए कि दीजिए हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, और जहाँ पर उनको डॉक्टर ने 10 मिनट में मृत्यु घोषित कर।
0: मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर दुमका सांसद नलिन सोरेन, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, मथुरा महतो और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के अलावा कई अन्य नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सुदिव्य कुमार ने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए राज्य और समाज के हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
3: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य सोनू जी अचानक हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। समाचार सुन के मन बहुत व्यथित हुआ, क्योंकि झारखंड सरकार में एक सुलझे हुए वो इंसान थे और बहुत कम समय में उन्होंने संसदीय जीवन में अपनी बात को सरकार की बात को रखता था। तो निश्चित रूप से ऐसे जन नेता की असामयिक मृत्यु से झारखंड को अपूर्णीय क्षति हुई।
0: राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अंतिम यात्रा आज गिरिडीह से निकली। उनके निधन से झारखंड के राजनीति में शोक की लहर है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड सरकार के मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य सोनू के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। उन्होंने 1989 में झामुमो के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 2019 में पहली बार गिरिडीह से विधायक निर्वाचित हुए। 2014 में दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद उन्हें राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। मंत्री के रूप में उनके पास नगर विकास, आवास, पर्यटन, युवा कार्य एवं कला संस्कृति और तकनीकी एवं उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी। सुदीव्य सोनू झारखंड को देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में शामिल करने और माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। गिरिडीह में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी उनकी भूमिका रही। उनके निधन से झामुमो संगठन, राज्य सरकार और गिरिडीह की राजनीति में शोक व्याप्त है। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राज्य सरकार ने मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार के निधन पर आज और कल दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द रहेंगे और कल सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राजकीय शोक के दौरान सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर घोषित राजकीय शोक और सरकारी अवकाश के मद्देनजर कल होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। रांची और लोहरदगा समेत अन्य जिलों के प्रशासन ने संबंधित मतदाताओं से कहा है कि सुनवाई की नई तिथि की जानकारी BLO के माध्यम से दी जाएगी। इधर सिमडेगा के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी परिवार ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि दी। मंत्री के सम्मान में 12वीं मेजर ध्यानचंद महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के आज और कल के सभी मैच स्थगित कर दिए गए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकभवन में राज्यसभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉ. एम. थंबीदुरई के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल और समिति के सदस्यों के बीच विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। हजारीबाग के कुम्हार टोला स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 2 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य शमेंद्र कुमार शाहू ने बताया कि मेले का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है।
5: वैसे भैया बहन जिनके अंदर वैज्ञानिक प्रतिभा छिपी हुई है उसको उकेरना, उसके अंदर की वैज्ञानिक प्रतिभा को जागृत करना और उसकी सोच को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखलाना, प्रयोग में भैया बहन कितने अव्वल हैं उनमें एक मेधा जगे, ये सारी बातें भैया बहनों के सर्वांगीण विकास में आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चले।
0: राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पर निकले छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो आज सिमडेगा पहुंचे। श्री महतो ने कहा कि भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बोकारो जिले के सेक्टर 6 बाजार में आज सुबह लगी आग में 8 दुकानें जलकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग सर्किट से लगने की आशंका है। राज्य में 13 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि राजधानी रांची समेत पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला और खूंटी जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्री सुदिव्य कुमार को राजकीय सम्मान के साथ गिरिडीह में दी गई अंतिम विदाई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर जताया शोक। दिवंगत मंत्री के निधन पर झारखंड में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित। सरकारी कार्यक्रम रद्द और कल बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय। राजकीय शोक के कारण राज्यभर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की सुनवाई स्थगित। अब BLO के माध्यम से मिलेगी नई तिथि। हजारीबाग में आयोजित विज्ञान मेले में राज्यभर से 701 बाल वैज्ञानिकों ने लिया भाग। वर्षा जल संरक्षण, पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी पर प्रस्तुत किए मॉडल। और मौसम विभाग ने राज्य में 13 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। रांची समेत 7 जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
7: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: राज्य की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी छात्र आंदोलनरत हैं। इसी बीच छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के साथ पश्चिमी सिंहभूम पहुंचे और उन्होंने यहां के छात्र समुदाय से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। देवेंद्र महतो के जिले में आगमन पर छात्र समुदाय की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान श्री महतो ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि वह एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो इस बात की गारंटी दे कि भविष्य में झारखंड में किसी भी प्रकार की परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, साथ ही इस प्रकार के अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
2: नौकरी पैरवी से नहीं, संघर्ष हुनर के आधार पर हो, भ्रष्टाचार नहीं पारदर्शी के आधार पर हो, झारखंड में झारखंडियों का नौकरी हो। इसको यात्रा से पहले इसको लेकर के हम लोग भूख हड़ताल किए, सत्याग्रह आंदोलन किए। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार शिक्षा व्यवस्था पर, नियुक्ति व्यवस्था पर चरम पर है। इसीलिए हम लोग एक ऐसा व्यवस्था, ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसा कमेटी हम लोग चाहते हैं जिस पर गारंटी दिया जाए पेपर लीक धांधली पहचान पैरवी से नौकरी नहीं होगा, होगा तो उसको पकड़ा जाएगा तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा।
1: जिले में लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को ध्यान में रखते हुए टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस का ठहराव मनोहरपुर स्टेशन पर दिया गया है। इस मौके पर चक्रधरपुर रेल मंडल की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ट्रेन का स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने आम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लगातार आंदोलन और मांगों का ही परिणाम है कि रेलवे के द्वारा जन सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है।
2: इन लोगों ने वर्षों से मांग करते रहा और अपना मांग को जनप्रतिनिधि के माध्यम से इस मांग को पूरा करने के लिए हमेशा आंदोलन भी बोलिए, मांग भी बोलिए। और आज रेल मंत्री भारत सरकार के द्वारा एर्नाकुलम ट्रेन को मनोहरपुर स्टेशन में ठहराव का जो सुनिश्चित किया है, इसके लिए रेल मंत्री के प्रति धन्यवाद करते हैं।
1: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती के मौके पर जिले भर में शिक्षक दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेषकर छात्रों ने अपने शिक्षकों को बधाइयां दी और उनका आभार जताया। शिक्षा समुदाय ने भी एक दूसरे को इस मौके पर बधाई दी। वरिष्ठ शिक्षक निर्मल त्रिपाठी ने कहा कि यह शिक्षक समुदाय के लिए हर्ष का अवसर होता है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह अवसर शिक्षक समुदाय को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है।
3: आज श्री मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय के सभागार में आकर सृजन सखा के जितने मेंबर हम शिक्षकों को सम्मानित किए, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और उनका जो ये मनोबल बढ़ाने का कार्यक्रम है हम शिक्षकों के लिए, ये हम लोग को समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ और आगे करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं उनको हमारे विद्यालय की ओर से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका इस तरह का साथ उन लोग को हमेशा मिलता रहेगा। मैं तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।
1: शिक्षक दिवस के अवसर पर कई स्कूलों में प्रभात फेरियां भी निकाली गई और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी श्रोताओं की वाणी। संकलन एवं वाचन संजय कुमार सिन्हा और संतोष कुमार सिन्हा की, संयोजन एवं प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।
1: श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी श्रोताओं की वाणी। कार्यक्रम संकलन करता है संजय कुमार सिन्हा एवं संतोष कुमार सिन्हा। कार्यक्रम संयोजन करता एवं प्रस्तुत करता प्रशांत गौरव।
2: आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्षों से आकाशवाणी डाल्टनगंज ने अपनी विश्वसनीय आवाज़ के माध्यम से लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया है। ये यात्रा हमारे श्रोताओं के स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं थी। इस विशेष अवसर पर हम अपने पूरे श्रोता परिवार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह संकल्प दोहराते हैं कि भविष्य में भी आकाशवाणी डाल्टनगंज विश्वसनीय, सार्थक और रोचक प्रसारण के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। आपका प्रेम, विश्वास और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आकाशवाणी डाल्टनगंज परिवार की ओर से स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहें
1: आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस पर। आप सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। भारत के सुदूर ग्रामीण आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां आज भी नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता, वहीं आज आकाशवाणी 99% लोगों तक अपनी पहुँच बनाई हुई है। इसी क्रम में हम सबों का आकाशवाणी डाल्टनगंज विगत 33 वर्षों से ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, जानकारी, स्थानीय संस्कृतियों को संजोग कर रखते हुए मनोरंजन प्रदान कर रही है। हम सभी उस पल को याद कर रोमांचित हो उठते हैं जब आकाशवाणी डाल्टनगंज का केंद्र अस्तित्व में आया। वो तारीख थी 6 सितंबर सन 1993, जब रेडियो सेट पर 103 MHz ट्यून करने के बाद रेडियो की गूंज हमारे दिल को मदहोश करने लगी। तभी से अपनी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का ये कार्य कर रही है। श्रोताओं, आकाशवाणी है श्रोताओं की वाणी। तो इसी क्रम में हम अपनी सफर को जारी रखते हुए हमने मुलाकात की महान शिक्षाविद, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पंडित विजयानंद पाठक जी से, जिन्हें लोग विजयानंद सरस्वती भी कहते हैं। विजयानंद सरस्वती जी, आपको हमारा नमस्कार। एक संदेश आपसे हम चाहेंगे कि आकाशवाणी का 33 वर्षों का सफर रहा, आपका क्या अनुभव रहा?
3: सर, प्रथम मैं श्रोताओं को और आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आकाशवाणी का यह 33 वर्ष का सफर पूरा हुआ है। इन 33 वर्षों में आकाशवाणी ने बहुत जन जन तक अपने विचारों को वक्ताओं के द्वारा पहुंचाने का बहुत ही गुरुतर भार का निभाया है। अरे, आकाशवाणी मेरे दृष्टिकोण से भारतवर्ष के अन्य स्टेशनों से ज्यादा सक्रिय रहा है और इसकी सक्रियता का इससे उदाहरण दिया जा सकता है कि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो मनुष्य जीवन में उत्पन्न होने वाले हर विचारों को, चाहे वो साहित्य हो, संस्कृति हो, सामाजिक हो, हर पहलुओं को इसने स्पर्श किया और लोगों जन जन तक इसको लोकवाणी का रूप दिया। यह आकाशवाणी बल्कि लोकवाणी है जिसको हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं रेडियो के माध्यम से और कई FM के कई हिस्सों से, संगीत हो चाहे वो भजन हो या लोकगीत हो या विचारों का सामंजस्य, ये सभी सुनने को लोग प्राप्त हुआ है। और मैं हृदय से हार्दिक बधाई देता हूँ इसके सभी कार्यक्रम 33 वर्षों में जो लोगों ने इसमें योगदान दिया, कार्य किया, उस सभी बधाई के पात्र हैं। हम एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते हम इसके भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, इनके कार्यों की सराहना करते हैं और भविष्य सुंदर मंगल कामना करते हैं कि इसी तरह आकाशवाणी उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता रहे, ये मेरी भावना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ों पर बैठा मोर करता है हम सबों को विभोर। तो पेड़ों की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित बातें करते हैं विश्व पर्यावरणविद ट्रीमैन डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल जी से। जायसवाल जी, आपको हमारा नमस्कार। हमारा ये आकाशवाणी का सफर 33 वर्षों का पूरा किया, 34वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
4: सबसे पहले तो आकाशवाणी को सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्वर्ण जयंती से मात्र 16 साल आप पीछे हैं। 16-17 साल के बाद आप स्वर्ण जयंती मनाएंगे, ये तो बीच में 33 साल आपकी हो रही है। तो मैं धन्यवाद के पात्र हूँ आप लोगों का कि आपने जो आकाशवाणी से प्रसार प्रचार जो हमारे खास करके जो हमारे जो पर्यावरण का रिलेटेड जो रहा जंगल लगाओ जंगल बचाओ अभियान मेरे द्वारा जो चलाया गया था और वन राखी मूवमेंट जो चलाया गया है उसका प्रचार प्रसार आपके यहाँ से निःशुल्क पौधा वितरण प्रचार इतना लोगों का गया कि ये अगर आकाशवाणी हमारा डाल्टनगंज में नहीं रहता, झारखंड के पलामू में नहीं रहता, तो ये छत्तीसगढ़ के शंकरगढ़ कुशमी और लातेहार के काम बोलते हैं टीस को ऐसे ऐसे सुदूर क्षेत्रों से लोग आकर के पौधा ले गए और जाके लोग लगाए। तो ये तो मेरा कहना है कि जो जीने का आधार है वन पर्यावरण प्रकृति और प्रदूषण का जो बारे में जो हम बात करते हैं तो उसके बारे में ये सबसे बड़ा हमको कामयाबी मिला है, प्रचार प्रसार हुआ है, लोगों में जागरूकता पैदा हुआ है। और इससे बड़ी बात हुआ कि जब वो कोरोना आया तो लोग अपना पैर भी पैसा परिवार किसी का कोई काम नहीं आया, लेकिन हमारा पलामू का आकाशवाणी जो है वो निरंतर लगातार कार्यक्रम को जारी रखे, इसके लिए मैं अपने हृदय से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ पूरे आकाशवाणी के लोगों को कि जो अपने दिलेरी के साथ जो कहा जाता है मैंने हिम्मत और हौसला के साथ
1: लाइव प्रसारण किया है।
4: जी लाइव प्रसारण कंटिन्यू चलते रहा और उसमें मुझे भी बुला करके मुझे प्रसारण करवाया गया, पर्यावरण का भी कार्यक्रम का भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि जीने का आधार है, ऑक्सीजन बिना धरती के कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये पर्यावरण रिलेटेड जीने का आधार था, इसके चलते प्राथमिकता हमको दिया गया, हमेशा समय समय पर हम मुझे बुलाया गया आकाशवाणी में। और पर्यावरण मेरा तो एक सूत्री कार्यक्रम है, जीने का आधार पर्यावरण वन राखी मूवमेंट और पौधा वितरण पौधा का संरक्षण का
1: जागरूक करना
4: और निःशुल्क पौधा देना। अब तक हमने लोगों की इतना जागरूकता पैदा हुआ कि 65 लाख पौधा हमने लोगों के बीच में वितरण किया। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान पत्रकारिता और आकाशवाणी का है। पत्रकारिता में तो मानते हैं कि पेपर छपा तो लोग पढ़ा, लेकिन आकाशवाणी में जो आप लोग के जो हमसे बातचीत होती थी किसान भाइयों के बीच में, तो ये जो है ये पूरे आवाज़ बुलंद हुआ और इतना तेजी से पर्यावरण के बारे में अगर
1: जागरूक हुए लोग
4: तो उसके के लिए ये भी हम आकाशवाणी को इसकी सराह में देना करके वहाँ आकाशवाणी में पौधा भी लगाए हैं, जो लगाए हैं पौधा लहलहा रहा है आकाशवाणी में, ऐसे ऐसे पौधा लगाए हैं जो विलुप्ति प्रजाति के जैसे कल्पतरु का पौधा हमने वहाँ जाकर लगाया आकाशवाणी, चंदन लगाया हमने तो वहाँ भी लगाया है, नहीं कि हम बाकी कपूर का भी पौधा लगाए। तो ये पौधा कई ऐसे ऐसे पौधा दिया जो हिमाचल का कपूर का पौधा लगाया, कर्नाटक का चंदन का पौधा लगाया, तो ये जो विलुप्त हो रहे हैं जो कल्पतरु पौधा लगाया, तो ये तरह तरह का पौधा हमने वहाँ जाकर लगाया इसलिए कि लोग आएंगे जाएंगे सुनेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, ग्रामीण क्षेत्र भाई देखिए पेपर तो सब जगह नहीं जाने पाता है,
1: सारे लोग पेपर पढ़ भी नहीं पाते,
4: पढ़ नहीं पाते हैं,
1: कम पढ़े लिखे लोग
4: जी रेडियो के बातें तो अब तो मोबाइल पर लोग सुनता है, ऐप्स के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से न्यूज के माध्यम से ये पर्यावरण के प्रति जो काम हुआ। और जो मैं पुनः बताना चाहता हूँ श्रोताओं से कि जो हमारा डाल्टन के आकाशवाणी जो हमने देखा कि योद्धाओं की तरह पर भी पैसा परिवार किसी का कोई काम नहीं आया, उस वक्त पर हमारे योद्धाओं की तरह आकाशवाणी नियंत्रण कार्यक्रम को जारी रखा और लोगों में जागरूकता फैलाते रहा अपनी सरकार का जो है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और एक संदेश क्या देना चाहेंगे श्रोताओं को हमारे इस उपलक्ष्य जो हम सभी मना रहे हैं?
4: मैं संदेश देना चाहता हूँ कि दूर दृष्टि कड़ी मेहनत पक्का इरादा के साथ कोई भी व्यक्ति को काम करना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो संस्था है आकाशवाणी का दूर दृष्टि के साथ काम किया और लोगों को भी चूँकि मेहनत सेवा कभी बेकार नहीं जाता, जो सेवा आप लोग किए हैं देश के लिए राज्य के लिए जो सेवा किए हैं आज उसी का आज परिणाम है कि आज 34 साल आज सफर तय किए हैं, जिस प्रकार से हमने वन राखी मूवमेंट के स्वर्ण जयंती में 50 साल उसको पार किया। तो ये सब लोगों को, श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम लगन के साथ करना चाहिए, और जो करता है उनको नाम भी लेना चाहिए, उनको आशीर्वाद भी देना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से काम किए हैं, आकाश डालते हैं कि आकाशवाणी जो योद्धाओं के तरह, मैं योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ।
1: ये थे विश्व पर्यावरणविद डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल जी। इन्होंने अपनी बातों को रखा एक संदेश के माध्यम से, लोगों को कैसे पर्यावरण के प्रति जागरूक रखना है इस पर भी विस्तार से प्रकाश आपने डाला। पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: हमारे बनराखी मूवमेंट के जो परिवार हैं, पर्यावरण से जो हमारे जो परिवार हैं, इस सबके ओर से आपके पूरे आकाशवाणी के पूरे परिवार को, श्रोताओं को मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ।
1: हमारी मुलाकात हो रही है डाल्टनगंज शहर के ट्रैफिक प्रभारी रुद्रानंद सरज जी से। सरज जी, लगातार यहाँ मेदिनीनगर में ट्रैफिक का संचालन भली भांति कर रहे हैं और यातायात संबंधी जो भी जानकारी होती है इसका भी रेडियो के माध्यम से इन्होंने बात अपनी साझा की है। सरज जी, आपको हमारा नमस्कार।
5: नमस्कार। आपका जो रेडियो पलामू का, खासकर के पलामू प्रमंडल के, अभी भी बहुत लोग चाहने वाले हैं जैसे पहले थे। अब तो और लोग ऐसा एफएम के माध्यम से या रेडियो स्टेशन के माध्यम से जो खासकर के न्यूज जो मिलती है, तो दूरवर्ती इलाके के लोग आज भी रेडियो रखे हैं और हमारा पहले का पहचान रेडियो ही, हम भी सुनते हैं। और जहाँ तक की बात है कि खास करके बहुत आसान से पेपर के लोग इंतजार करते हैं कि जो है से कल पेपर आएगा, उसमें भी समाचार मिलती है, प्रिंट मीडिया से भी मिलती है, लेकिन रेडियो से तुरंत समाचार है। और जहाँ तक की बात है कि मेरा ट्रैफिक, जिसके लिए आप मेरे यहाँ पर आए हैं, मैं पहले भी ट्रैफिक इंचार्ज पलामू में 4 से 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया हूँ। और मेरा पूरा प्रयास है कि 1 महीना के अंदर पूरे टाउन को सजाने का काम करेंगे।
1: हमारा जो आज हम सभी मना रहे हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं, हमारा आकाशवाणी का सफर 33 वर्षों का पूरा हुआ, 34 वर्षों में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को ट्रैफिक के नियमों के बारे में एक संदेश देना चाहेंगे आप?
5: हाँ, मैं पलामू वासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप 4-व्हीलर जो लेके टाउन में आते हैं, अपने बाल बच्चों को साथ नहीं आते हैं तो आप 2-व्हीलर से भी आ सकते हैं। 4-व्हीलर से आते भी हैं तो उसको सीट बेल्ट लगा कर आएं। हेमलेट नहीं पहनने के कारण से एक्सीडेंट हो जाती है, बिना हेमलेट के नहीं प्रवेश करें सीट।
1: चलिए, आपने आकाशवाणी के श्रोताओं को अपने विभाग के माध्यम से जो संदेश देना चाह रहे थे वो आपने दिया। आप रेडियो सुनते हैं, लोग रेडियो से लाभान्वित भी होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, बातों का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, ये हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है पलामू जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी की आवाज पर। डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी
1: नमस्कार, मैं सिविल सर्जन पलामू डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव सभी लोगों को बधाई देता हूं कि पलामू ने 33 साल का आकाशवाणी का एक सफर देखा है। हमने देखा है कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से उत्थान हुआ और निरंतर चलते आ रहा है, लगातार इसमें सुधार होते जा रहा है। हमने अपने स्तर से पाया है कि हम जो मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो करना चाहते हैं उसमें बराबर ये योगदान देते रहे हैं और मेरा संदेश प्रसारित होते रहता है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा जो पलामू का जो क्षेत्र है 85 किलोमीटर हैदरनगर हुसैनाबाद 85 किलोमीटर अप टू पांकी, ये पूरा कवर हो और इसके सेंटर में पलामू है। धन्यवाद।
0: साथियों, साहित्य के क्षेत्र में हमारा पलामू प्रमंडल अग्रणी रहा है। जब बातें आती हैं कहानियों की, कविताओं की और रचनाओं की, तो याद आते हैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र। इनकी यादों को साझा कर रहे हैं उनके पुत्र हेमंत कुमार मिश्र।
2: 33 का जो कार्यकाल पूरा हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आकाशवाणी टीम को, और हम दर्शकों का भी बड़ा मनोरंजन करता है आकाशवाणी, और बड़ी इसके लिए हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके टीम के साथ है, और इसी तरह और अच्छा कार्यकाल पूरा करें, यही मेरी शुभकामना है।
0: इनकी यादों को साझा कर रहे हैं उनके पौत्र।
3: कोयल की धारा जहां गारू प्रखंड से स्टार्ट होती, जहां कोयल नदी, उस जगह से लेके ये सोन के पास रोहतासगढ़ है, वहां के पास लगभग मिलती है। तो ये बाबा पूरा लाइफ जर्नी है कोयल के। बाबा का जन्म भी पनेरी बांध के उस तरफ हुआ था, जो कोयल के किनारे पनेरी बांध है। तो एक तरह से देखा जाए बाबा का जो हम लोग का पैतृक गाँव सोन के उस पार पड़ता है। तो बाबा बताते थे कि एक तरह से कोयल नदी मेरे जीवन के साथ है और साथ हमेशा जुड़ा हो रहा है। तो ये बाबा जब कोयल की धारा लिख रहे थे, ये रूपक के रूप में जब आई थी हुई थी आकाशवाणी से, बाबा उस टाइम में पूरे जगह जहां से कोयल नदी आती है पूरा जंगल जो जैसे घूमे हैं, वो अपना खुद इसका व्यक्तिगत हाँ तो भ्रमण किए हैं। तो इसमें गढ़वा अभी इसमें जिक्र है, गढ़वा की गढ़ देवी इसमें जिक्र है, रोहतास का रोमांच है इसमें। तो जब आप पढ़ेंगे इसको कोयल की धारा, तो इसमें आप जानेंगे कि कितना पलामू हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। इसको पलामू किला कहा गया है, तो उसमें हम लोग को बचाने का है। इसमें सब चीज मैंने कह सकते हैं कि पलामू किस तरह से विरासत का।
0: जब साहित्य की बात होती है तो याद आते हैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी बातों को हमने संजो कर रखा है, तो सुनते हैं इनसे ली गई बातचीत।
4: नमस्कार श्रोताओं, पलामू में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। एक से एक विद्वान इस धरा पर जन्मे, जिन्होंने पलामू का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व अंग्रेजी के प्रोफेसर श्री एस सी मिश्रा सर से। आपका हमारे इस कार्यक्रम में

0: बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है कि श्रोताओं के बीच में अपने जीवन के बारे में कुछ शेयर किया जाए, उनसे कुछ सीखा जाए और उनको कुछ सिखाया जाए।
0: आपने एक किताब लिखी कोयल की धारा, जिसकी चर्चा चहु और है, आप क्या कहना चाहेंगे? कोयल की धारा का लिखने का विचार कैसे मन में आया और इसमें क्या क्या निहित है?
1: देखिए, जबकि मैं पढ़ाना शुरू किया था मैंने यहाँ पे, और पढ़ता भी था, बल्कि पढ़ने के समय ही मैथ्यू आर्नोल्ड की एक कविता है सोहराब एन रुस्तम, उसमें अनजाने में ही पिता पुत्र की हत्या कर देता है। आज पिता और पुत्र के संबंध भी ऐसे ही हो गए हैं, अनजाने में हम एक दूसरे के से लड़ रहे हैं। उसमें नदी है ऑक्सस रिवर, ऑक्सस रिवर बैकग्राउंड में है और ऑक्सस रिवर जीवन का प्रतीक है। ये बात हमको कोयल को देख के भी तो लगी कि कोयल की धारा भी जो है उद्गम स्थल पर बहुत ही छोटी सी दिखलाई पड़ती है, धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, बेग अंदर आता है, जवानी इसके अंदर आती है, कभी छोटी कभी बड़ी, जीवन जैसे छोटा बड़ा होता है। जैसे डाल्टनगंज में जितनी चौड़ाई है उससे कम गढ़वा में है, उसके बाद मोहम्मदगंज में ज्यादा है, तो जीवन में इतनी ही कभी कमी कभी ज्यादा। तो जीवन का प्रतीक है एक नदी, सभ्यता का प्रतीक है नदी, संस्कृति का प्रतीक है नदी, इसलिए तो सारे शहर अच्छे नदी के किनारे बसे हुए हैं। नदियों को अच्छे तरीके से रखने के पीछे हमारा अगर दायित्व बनता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, जल की रक्षा नहीं कीजिएगा, पवित्र जल नहीं होगा तो आपका शरीर अस्वस्थ होगा, और शरीर अस्वस्थ होगा तो मन अस्वस्थ होगा, मन अस्वस्थ होगा तो आप कोई भी विकास का काम कर ही नहीं सकते हैं। नदी की पवित्रता का ख्याल हमको रखना है। इन्हीं चीज़ को एक साहित्यिक तरीके से कोशिश मैंने की है बताने की।
0: सर, आपने बहुमूल्य समय दिया आपने अपना, और अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित किया, इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति के जीवन के सुखद क्षण होते हैं जबकि उनके बारे में कुछ लोग जानना चाहें। मैं अपने को भाग्यवान बल्कि समझता हूँ कि एक बड़े अच्छे तरीके के एंकरिंग करते हुए हमारे सामने बहुत चीज़ों को लाकर रखा।
2: साहित्य की बातें हो गई, स्वास्थ्य की भी बातें हुई, सड़क सुरक्षा से संबंधित बातें हुई। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य रीढ़ कृषि है, तो कृषि कार्य से जुड़ी बातें करते हैं।
3: जी हाँ श्रोता मित्रों, और आज के इस सफर में हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के वरीय कृषि वैज्ञानिक सह कार्यालय प्रधान डॉक्टर राजीव कुमार जी।
4: सबसे पहले किसान भाई को नमस्कार। जैसा कि जान रहे हैं कि आकाशवाणी केंद्र जो पलामू है उसका जो 133 वर्ष का जो सफ़र है आज पूरा हो गया है और 134वां वर्ष की शुरुआत होने वाली है। इस दरमियान कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो है किसान भाइयों को समय समय पे तकनीकी सलाह, जैसे उन्नत फसल की खेती कैसे करेंगे, खाद और की मात्रा कितने देंगे, पौधों का प्रबंधन कैसे करेंगे, फसलों में जो भी कीट व्याधि लगता है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इन सभी बातों पे जो है विस्तार से आकाशवाणी केंद्र पलामू के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया गया है। और उम्मीद है कि इसको सुन करके किसान भाई लाभान्वित भी हुए होंगे। इसी अवधि में कृषि विज्ञान केंद्र के तरफ और माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पे जो कृषि विज्ञान केंद्र है प्राकृतिक खेती की तरफ जो है पहल कर रहा है, और यह जो है वित्तीय वर्ष 25-26 में इसकी शुरुआत हो गई है और पलामू ज़िले के चेराबाड़ में हम लोग इसको कर रहे हैं, जिसमें कि बाज़ार से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, घर के आसपास जो भी उपलब्ध है उससे जो है खाद बना करके कीटनाशक बना करके अपने किसान भाई अपने फसल पे छिड़काव कर सकते हैं, और जिससे कि उनके फसल का उत्पादन ही नहीं अच्छा होता है बल्कि जो रासायनिक दवाइयों का प्रयोग से जो है शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है उससे भी बचाव होता है। और केंद्र जो है प्रचार प्रसार का जो कार्य है वो काफ़ी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसमें जो है जिला के जो विभाग है उनको भी तकनीकी सहयोग हम समय समय पर आवश्यकता अनुसार देते रहते हैं, जिससे कि किसान लाभान्वित होते हैं। और किसान का जो भी सवाल जो आकाशवाणी केंद्र या अन्य माध्यम से हम तक पहुंचता है

0: उसका भी समाधान करते हैं। और किसी किसान भाई मेरे केंद्र में भी आकर के अपने समस्या का समाधान पाते हैं, प्रभाव देखने को मिल रहा है। और आकाशवाणी केंद्र पलामू है, इसके द्वारा जो भी किसान भाइयों को तकनीकी जानकारी जो है दी जाती है, उसका भी उम्मीद है कि किसान भाई लाभ उठाते होंगे। और इसके लिए आकाशवाणी केंद्र जो पलामू है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें भी सराहनीय कार्य करेंगे। धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, बातों के क्रम में हम अभी पहुँचे हैं एक गांव में, और वो गांव है गुरिया दामर, पलामू जिला का एक सुप्रसिद्ध गांव, जहां पर बृहद पैमाने पर हमारे ग्रामीण बंधु जो हैं वो रेशम कीट पालन करते हैं। यहां पर एक जोरकट के भी हमारे एक सफल कृषक हैं अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आज हमारे आकाशवाणी केंद्र का स्थापना दिवस है
2: जी,
1: आप क्या कहना चाहेंगे?
2: रेडियो स्टेशन के स्थापना दिवस पर सभी श्रोतागण को हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह ग्राम जोरकट के निवासी हूं। हम लोग रेडियो का कार्यक्रम हमेशा सुनते आया हूं और आकाशवाणी में प्रचारित भी करता रहा हूं। और हम लोग का तसर रेशम कीट पालन का कार्य है, सारे लोग किसान मिलकर के तसर रेशम कीट पालन करते हैं, जिसका प्रचार प्रसार हमारा रेडियो स्टेशन से बहुत बढ़िया होता
1: है। एक सशक्त माध्यम बना जी।
2: और ये प्रचार प्रसार का बहुत सशक्त माध्यम है, श्रोतागण सुन करके भी इससे लाभ उठा पा रहे हैं
1: जी। और रही बात खेती बाड़ी की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
2: खेती बाड़ी के लिए भी मैं बहुत तरह की बातें वैज्ञानिक से बात कराते हैं, श्रोता सुनते हैं और जिसका लाभ उठा पाते हैं।
1: अभी गांव में क्या चल रहा है रेशम कीट पालन में?
2: रेशम कीट पालन में अभी DFL वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। आज बहुत भाग्य की बात है कि हमारे रांची से साइंटिस्ट आए हुए हैं। अभी हम लोग जस्ट ही निकलने वाले हैं तरहसी ब्लॉक के सिलदिलिया गांव में।
1: अच्छा।
2: अभी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे वहाँ और किसान को DFL भी वितरण करेंगे, प्लस इसके बारे में खेती को जैसे नुकसान हो जाता है कुछ, तो उससे अब वैज्ञानिक तरीके से वो लोग को बताने जा रहे हैं।
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आज विशेषकर स्थापना दिवस पर हमारे श्रोताओं को आपने बधाइयां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: सत्येंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व उद्घोषक की ओर से बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई। धन्यवाद श्रोताओं। श्रोताओं, आकाशवाणी डाल्टनगंज 6 सितंबर 1993 को स्थापना काल से ही आपके सेवा में निरंतर कार्यक्रम प्रस्तुत करते जा रहा है। इसमें ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ ही साथ मनोरंजन के लिए गीत संगीत, खेती बाड़ी की बातें, घर आंगन महिलाओं की बातें, इस तरह की सारी जानकारियां और जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं वो श्रोताओं के लिए ही करते हैं। और यह हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि कितना अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचा सकें, और हम इस दिशा में काफ़ी कारगर हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। आशा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी डाल्टनगंज की ज्ञानवर्धक बातें। धन्यवाद श्रोताओं।
4: न बारिशों का डर, न धूप का जलन, हर मौसम में है हम मगन। श्रोताओं, बातों के क्रम में हम फिलहाल पहुंचे हैं लातेहार जिला के बेतला नेशनल पार्क में, नेतरहाट रोड के सड़क किनारे श्रोता संघ के लोग बैठे हुए हैं और रेडियो पर बज रहे गानों का आनंद ले रहे हैं।
1: क्या श्रोताओं, और हम की आवाज़ भी आ रही है आपके पास, और आप अभी विविध भारती कार्यक्रम सुन रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, विविध भारती कार्यक्रम का आनंद हमारे बहुत सारे श्रोता एक साथ बैठ करके ले रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ?
5: मकसूद अंसारी
1: जी। आज के दिन हमारा आकाशवाणी केंद्र डाल्टनगंज का 34वां स्थापना दिवस है और 33 वर्षों का सफर रहा। आप जो रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं?
5: नहीं, बहुत खुशी मिलता है जब ये आवाज हम लोगों कानों तक आता है ना, तो बचपन की यादें एकदम ताजा हो जाती है। इसीलिए अभी तक बहुत सारे हम लोग का सर्कल ग्रुप के लड़के लोग हैं, अभी भी इसको सुनना पसंद करते हैं
1: जी। आपका नाम
5: अच्छा लगता है, मकसूद अंसारी
1: जी। हमारे श्रोताओं के लिए क्या बोलेंगे आप?
5: ये जो विविध भारती का चैनल है, ये हम लोगों के लिए मतलब पुरानी यादों का एक संदेश लेकर आती है
1: जी। और आपका क्या नाम हुआ?
6: मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ।
1: वाह। और सद्दाम जी, आप कितने वर्षों से इस रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे हैं?
6: अभी तो मैं फिलहाल से 10-15 साल हो गया है इसको सुनते हुए, काफी अच्छा लगा।
1: अच्छा, खासकर हमारा कार्यक्रम जो प्रसारित किया जाता है शाम में, सुबह में, तो वो कैसा लगता है?
6: वो तो कहना ही नहीं, बहुत आनंद आता है
1: जी,
6: बहुत सुनते।
1: विशेष करके हमारे ये, चूँकि ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, तो इसका जो फायदा लेना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, वो कहाँ तक ले पाते हैं?
6: जंगलों से।
1: हाँ हाँ, जंगल से
6: हाँ, जानवरों से ज्यादा यहाँ क्षति होता है। और गाने का तो बहुत शौक है यहाँ सुनने के,
1: यहाँ पर गांव
6: चाहे किसान हो बच्चों हो, अभी जितने भी पीढ़ी आ रही है सभी मस्त एंजॉय करते हैं।
1: जी, एक और श्रोता है हमारे पास, आपका क्या नाम हुआ?
7: संजल अंसारी।
1: अच्छा, कैसा लगता है आपको आकाशवाणी डॉल्टनगंज?
7: बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या सुनते हैं विशेष करके आप?
7: पुराना जो गाना जो आता है ना
1: जी,
7: वो बहुत आनंद लगता है।
1: अच्छा, आप पुराने गाने के ज्यादा शौकीन हैं?
7: जी, और वो बराबर होते रहे तो बहुत अच्छा है।
1: चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
7: नमस्कार।
4: तो ये कार्यक्रम हमारे यहाँ जो है गीत संगीत के भी कार्यक्रम होते हैं, गीत गजलों का प्रोग्राम होता है, ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम होता है, युवाओं के लिए भी कार्यक्रम होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो लगातार आप सुनते हैं इसको?
2: जी, पूरा वर्ष सुनते रहते हैं सर।
4: ये हमारा 33 वर्षों का सफर पूरा हुआ, 34वां वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? रेडियो सुने?
2: नहीं, रेडियो सुनना चाहिए,
4: सुनना चाहिए,
2: बहुत सारा जानकारी उसके अंदर होता है,
4: समाचार मिलते
2: बहुत हैं, समाचार
4: एकदम ऑथेंटिक समाचार मिलते हैं आकाशवाणी के माध्यम से। क्या करते हैं अभी आप?
2: अभी तो मेरा दुकान है सर,
4: दुकान है, टी स्टॉल है
2: जी,
4: तो टी स्टॉल चला कर आप रेडियो सुनते हैं और लाभान्वित होते हैं, और अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद
2: सब। अच्छा, रेडियो बजते रहता है, लोग यहाँ पे आते रहते हैं, अपना गुनगुनाते भी रहते हैं, जो गाना बज रहा हो चाहे कुछ ऐसा है। धन्यवाद।

दोस्तों, यूं ही हमारा और आपका प्यार कायम रहे और सुनते रहिए हमारा ये रेडियो। एक बार पुनः आकाशवाणी के 34वें स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो इसी के साथ ही अपने दोस्त संजय सिन्हा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्षों से आकाशवाणी डाल्टनगंज ने अपनी विश्वसनीय आवाज़ के माध्यम से लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया है। ये यात्रा हमारे श्रोताओं के स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं थी। इस विशेष अवसर पर हम अपने पूरे श्रोता परिवार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह संकल्प दोहराते हैं कि भविष्य में भी आकाशवाणी डाल्टनगंज विश्वसनीय, सार्थक और रोचक प्रसारण के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। आपका प्रेम, विश्वास और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आकाशवाणी डाल्टनगंज परिवार की ओर से स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहें आकाशवाणी डाल्टनगंज के साथ। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम महुआ। कलाकार हैं भरत सिंह भारती हो।

आप सुन रहे थे भरत सिंह भारती और साथियों की आवाज़ों में ये लोकगीत। इसी के साथ महुआ कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वीं स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम यादों के झरोखे से। संकलन एवं वाचन शेखर चट्टोपाध्याय का, संयोजन एवं प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।

0: जी हाँ प्यारे प्यारे श्रोताओं, भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। क्योंकि आज का दिन भी है विशेष, आज है 6 सितंबर, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र का स्थापना दिवस। और इस विशेष कार्यक्रम में मैं चलूंगा साथ साथ इस सफर में आपका दोस्त, आपका होस्ट सैकर चैटर्जी। ये आकाशवाणी डाल्टनगंज है, कोयल नदी की कलकल धारा, पलामू की ऐतिहासिक किलों की मूक गवाही और बेतला पलामू टाइगर रिजर्व के सघन जंगलों से छन कर आती हवाओं के बीच जब ये आवाज आपके घरों, आंगनों और खेत खलिहानों तक पहुंचती है, तो ये केवल सुनना का आदान प्रदान ही नहीं बल्कि एक गहरा आत्मीय रिश्ता बन जाती है। आज 6 सितंबर है, आकाशवाणी डाल्टनगंज का स्थापना दिवस। 3 दशकों से भी अधिक का ये सफर इस पूरे अंचल की आशाओं, संघर्षों, लोक संस्कृति और विकास का जीवंत दस्तावेज है। आइए दोस्तों, भाइयों बहनों, यादों के झरोखे से पलटते हैं इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को जिसने पलामू के संचार जगत में एक नई सुबह की नींव रखी थी। तारीख थी 6 सितंबर 1993। यादों के पन्नों को पलटते हुए आइए सबसे पहले चलते हैं जेवियर कंडूल नासर के पास, जो वर्तमान में आकाशवाणी रांची के सहायक निदेशक हैं और डाल्टनगंज केंद्र से उनका पुराना नाता रहा है।
1: मैं सहायक निदेशक आकाशवाणी रांची आप लोगों को आकाशवाणी डाल्टनगंज की स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। मैं जब आकाशवाणी डाल्टनगंज में 2015 से 2018 तक था, उस समय स्टूडियो में पहली बार उरांव लोकगीत, मुंडारी लोकगीतों का रिकॉर्डिंग कर प्रसारण किया गया एवं पहली बार ब्रिज जनजाति के लोकगीत नेतरहाट के तराई से रिकॉर्डिंग कर लाया गया एवं आकाशवाणी डाल्टनगंज से प्रसारण किया गया। यह एक जनजातियों के गीतों को संरक्षित करने की पहल एवं सफलता थी।
2: यह ब्रिजिया कर्मा लोकगीत है। इस कर्मा गीत में ब्रिजिया समुदाय के जीवन, उनके रहन सहन का जिक्र है। वस्तुतः हल बैल, खेती बाड़ी एवं जोत की जमीन नहीं होने के बावजूद यह समुदाय अपने परिश्रम के बल पर लकड़ी अथवा टाट पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर जंगली खेर से छत बनाकर घर निर्माण करता है और गुजर बसर करता है।

दोस्तों बात लोक गीतों की करे तो आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से उस वक्त मगही भोजपुरी लोक गीतों की भी खूब रिकॉर्डिंग हुई, जो यहाँ के श्रोताओं द्वारा काफी पसंद किया गया और सीमाओं को लांघता हुआ ये गया तक भी जा पहुंचा और वहां के श्रोताओं ने भी इसे खूब सराहा, प्यार दिया। ऐसे ही एक गीतों की रिकॉर्डिंग हुई थी आकाशवाणी के डाल्टनगंज स्टूडियो में। कलाकार थी रंजना वर्मा और उनके साथ थे दिग्गज लोकगीत गायक और म्यूजिक डायरेक्टर विनोद सिन्हा जी, और उनके साथ संगत कलाकार के रूप में भी राम श्याम बंधु और अन्य संगीतकार मौजूद थे। भाइयों बहनों, आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र के स्टूडियो में सिर्फ लोकगीत गायकों की ही रिकॉर्डिंग नहीं हुई बल्कि एक से एक दिग्गज वाद्य यंत्र कलाकारों की भी रिकॉर्डिंग हुई। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं पलामू लोक कला मंच के अध्यक्ष प्रसिद्ध तबला वादक शिशिर शुक्ला द्वारा बजाए गए इस शानदार तबला वादन के टुकड़े को।

भाइयों बहनों, पलामू, गढ़वा और लातेहार की समृद्ध माटी को अपनी पहचान और अभिव्यक्ति देने के लिए एक ऐतिहासिक समारोह का आयोजन हुआ। इस केंद्र का औपचारिक उद्घाटन असम के पूर्व राज्यपाल, पलामू के धरती के लाल क्षेत्र के वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ था। दिन था 6 सितंबर 1993। समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कामाख्या प्रसाद सिंह देव। इस गौरवशाली क्षण के गवाह बने थे पलामू के तत्कालीन सांसद रामदेव राम सहित कई गणमान्य नागरिक, साहित्यकार, पत्रकार और कला प्रेमी। मंच से जब औपचारिक रूप से आकाशवाणी डाल्टनगंज की शुरू होने की घोषणा हुई तो उपस्थित जनसमूह की तालियों की गूंज ने यह भरोसा दिलाया कि अब पलामू प्रमंडल की अपनी आवाज होगी, अपना एक मंच होगा। 6 सितंबर 1993 को रोपा गया वह नन्हा पौधा आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। आकाशवाणी डाल्टनगंज की सबसे बड़ी ताकत रही है अपनी जड़ों, अपनी माटी से निरंतर जुड़ाव। इस केंद्र ने मगही, भोजपुरी, नागपुरी और जनजातीय समाज की कुड़ुक व बिरहरों बोलियों को सम्मान के साथ माइक्रोफोन तक पहुंचाया। दूर दराज के गांव में जाने जाने वाले पारंपरिक चैता, कजरी, सोहर, झूमर और कर्मा धुरिया गीतों को रिकॉर्ड कर आकाशवाणी ने लुप्त होती लोक परंपराओं को नवजीवन दिया। दोस्तों, हम जब बात करते हैं लोक कलाकारों की, लोक गीतों की, तो इस कड़ी में उस समय एक खूबसूरत लम्हा जुड़ गया जब पलामू के मिट्टी से उपजी गायिका नीलम सहाय इस केंद्र में पदाधिकारी के रूप में अपना योगदान दिया और केंद्र अधीक्षक तक जा पहुंची। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई लोक कलाकारों को ढूंढ निकाला और आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें एक मंच दिया। वो खुद भी बहुत खूबसूरत लोक गीतों का रिकॉर्डिंग करती रही। लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आया

0: कि एक सड़क हादसे में हमने उन्हें खो दिया। आज आकाशवाणी के स्थापना दिवस के अवसर पर हम उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र को आगे बढ़ाने में यहाँ मौजूद, यहाँ पदस्थापित महिला पदाधिकारियों का भी काफी योगदान रहा। इसी कड़ी में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं देवी राय मैम से कि वो आज भी आकाशवाणी डाल्टनगंज को याद करते हुए क्या कहती हैं।
1: नमस्कार, मैं देवी राय आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं डाल्टनगंज आकाशवाणी में बहुत साल पहले, जैसे 2002 से 2005 तक मैं थी, और उस समय का मतलब जो माहौल था स्टेशन का वो बहुत ही अच्छा था। और सबसे अच्छा हमको लगता था वहाँ के जो कैजुअल असाइनीज थे उनके कार्य कुशलता और ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण। एक से एक अच्छे कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किए और कुछ कार्यक्रमों में मुझे भी भाग लेने का सौभाग्य हुआ था, तो वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं। और जहाँ तक डाल्टनगंज आकाशवाणी का सवाल है, इसके आसपास इतने सारे दर्शनीय स्थल हैं कि उन पर भी हम लोगों ने कई रूपक बनाए थे। एक तो मुझे याद है कि हम लोग बेतला नेशनल पार्क पर बनाए थे, जो सैकत आपने ही बनाया था और वो बहुत अच्छा लगा था। और दो सीरीज हम लोगों ने बनाया था, एक है कोयल की धारा, यानी डाल्टनगंज के आसपास जो कोयल नदी है उस नदी के किनारे के जीवन शैली और जो उल्लेखनीय स्थल स्थित है उस पर ये था। और एक और था धारावाहिक जो था पलामू के किले, उसमें भी हम लोग कई पुराने किले लिए थे, जैसे पलामू के अंदर, पलामू बेतला फॉरेस्ट के अंदर जो पलामू किला है वो भी था, रंका का किला था। इस तरह से हमारा आकाशवाणी डाल्टनगंज का सफर बहुत ही यादगार था और बहुत ही अच्छा था।
0: भाइयों बहनों, आइए इसी कड़ी में हम याद कर लेते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में पदस्थापित महिला पदाधिकारी अनीता तिर्की मैम को भी।
2: आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र से जुड़े सारे लोगों और श्रोताओं को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। हम सब मिलकर आकाशवाणी डाल्टनगंज की इस परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें और इसे एक नई पहचान दें। मैं अनीता तिर्की, कार्यक्रम अधिशासी, कार्यक्रम प्रमुख के रूप में वर्तमान में आकाशवाणी क्योंझर, जो कि उड़ीसा में है, पोस्टेड हूँ। मैं जब 2018 से 2021 तक आकाशवाणी डाल्टनगंज में पदस्थापित थी, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे, कलाकार बहुत अच्छे अच्छे थे, ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था, लोग बहुत सहयोग करते थे। आकाशवाणी आज यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहा है, जिस पर हम सभी गर्व कर सकते हैं। आज भी आकाशवाणी से मिली प्रतिष्ठा और पहचान का जवाब नहीं।
0: महिला पदाधिकारियों में मेरी क्लौडिया सोरेंग का कार्यकाल भी स्वर्णिम रहा।
3: मैं मेरी क्लौडिया सोरेंग, पूर्व कार्यक्रम अधिशासी एवं कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी डाल्टनगंज, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस पर आप सबों को बधाई। 2019 से 2023 जनवरी तक मेरा कार्यकाल रहा। उस दौरान आकाशवाणी डाल्टनगंज में जो अनुभव हुआ वो पूरी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। कल्चर है वो बड़ा रिच है, इससे परिचय हुआ और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जीवन में बहुत कुछ सिखा गई। बहुत सारा ऐसा अनुभव है जो शायद आकाशवाणी के दूसरे केंद्रों पर शायद नहीं मिलता। कुछ कार्यक्रम कोरोना के दौरान बने, जिनकी चूँकि तब तक प्लेटफॉर्म आ गया था, AIR ऑन न्यूज़ ऑन AIR, ये ऐप आ गया था, तो देश विदेशों तक हमारे कार्यक्रमों की पहुंच रही। एक बहुत ही यादगार क्षण है जब अमेरिका से एक पलामू

0: वासी ने, मतलब बॉर्डर वाले एरिया से जो बिलोंग करते हैं अमेरिका से, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मैंने आपका कार्यक्रम सुना, वो हमारे वीर शहीदों को समर्पित था, तो उस कार्यक्रम के लिए विदेश से प्रशंसा मिलना ये एक उपलब्धि है, और इसके लिए आकाशवाणी डाल्टनगंज के हर व्यक्ति इसके लिए बधाई का पात्र है।
1: दोस्तों, पदाधिकारियों की बात करें तो गिरेंद्र प्रसाद ऐसे केंद्र निदेशक थे जिन्होंने पत्रकार जी की डायरी कार्यक्रम चलाया। पत्रकार जी के रूप में पत्रकार रामेश्वरम ने इस तरह से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कि वो जन जन की डायरी बनकर रह गई। गनौरी राम जब आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में योगदान दिया तो उन्होंने कई कार्यक्रम चलाए, खासकर उनके द्वारा निर्मित चला गांव की ओर कार्यक्रम जन जन तक प्रसिद्धि लाभ की। अनिल किशोर सहाय ने भी अपने कार्यकाल में कई उम्दा रिकॉर्डिंग किए। इसी तरह से मनोज कुमार, संजीव कुमार लाल, आत्मेश्वर झा, टी के नंदी ऐसे पदाधिकारी रहे जो यहाँ के कर्मचारियों के साथ मिलकर उम्दा कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और आकाशवाणी की आवाज को आप श्रोताओं तक पहुंचाया। इसी कड़ी में दोस्तों हम जिक्र करेंगे डॉक्टर अभ्रू चौधरी की, जिन्होंने 2 बार यहाँ कार्यक्रम प्रमुख के रूप में अपना योगदान दिया।
2: डाल्टनगंज में मैं लगभग 2 पोस्टिंग थी मेरी, मैं 2005 में था और उसके बाद मैं कुछ एक ट्रेनिंग और मेरा 2005 से रहा, दूसरी पोस्टिंग वही रही 2013 से मैं रहा, और इस दौरान काफ़ी अच्छा अनुभव मेरे डाल्टनगंज का केंद्र का रहा है। लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है और पूरा पूरा इलाका नेतरहाट रहा, महुआ डांड, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा, जपला, हुसैनाबाद जिसको कहते हैं, मैंने पूरा इलाका का कार्यक्रम किया है। सिर्फ स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो के बाहर में भी किया है। स्टूडियो में अगर बोला जाए तो मैं काफ़ी कार्यक्रम किए हैं। उसके बाद उस कार्यक्रम के तहत मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जो था रूबरू कार्यक्रम, जिसमें वहाँ के MP, MLA, मिनिस्टर, इनका 1 घंटे का मैंने कार्यक्रम मैं करता था, खुद करता था।
3: आज हमारे स्टूडियो में है पलामू के आदरणीय सांसद श्री विष्णुदयाल राम। इनको आप सबको ही जानते हैं, आपने वोट दिया है और ये आपसे चुने हुए सांसद हैं यहाँ के। इसके अलावा भी इनका एक परिचय पहले से भी रहा है, ये यहाँ के DGP भी रह चुके थे, उनका कुशल नेतृत्व यहाँ पर रहा है। आज ये हमारे संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पलामू क्षेत्र का। विष्णुदयाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के साथ एक चुनौतीपूर्ण आपको बहुत काम मिला है, क्योंकि बहुत दीर्घकालीन यहाँ पे बहुत से समस्याएं, पानी की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, कुछ ज्योग्राफिकल उसके कारण भी, पृष्ठभूमि के कारण भी ऐसा हुआ है, इसका क्या निदान है?
4: देखिए, पलामू संसदीय क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या है।
2: फिर नेतरहाट विश्वविद्यालय जो है, नेतरहाट विद्यालय जो एक ऐतिहासिक विद्यालय है, झारखंड का एक इज्जत है या शान है, वहाँ पर जाके मैंने कार्यक्रम बनाया था। नेचर, ये सब जो कार्यक्रम जितने होते थे ये हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के तहत होते थे और सभी केंद्र उसको सुनते थे, केंद्र के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी लोग सुनते थे। और किसान वाणी के तहत हमने काफ़ी कार्यक्रम किया, चारों तरफ जाते रहे पूरे इलाके में। डैम पर संतोष जी के साथ हमने कार्यक्रम किया है, जितने तरह के डैम हैं, अभी हाल में अभी डैम की समस्या समाप्त हो रही है डाल्टनगंज में, लोगों को अच्छा, सरकार के साथ कुछ समझौता हो रहा है बिहार सरकार के साथ, वो अलग बात है, पर हम लोगों ने उस दौरान जिस दौरान काफ़ी खंग जल संकट था 2013 या 2005 का विषय मैं बोल रहा हूँ, इस दौरान हमने वहाँ का कार्यक्रम किया और तरह तरह के कार्यक्रम किए। ये मेरा पूरा समय जो हमने 2 टेन्योर मैंने किया डाल्टनगंज आकाशवाणी में, और ये दोनों टेन्योर काफ़ी यादगार रहा है। इस टेन्योर में मैं बहुत ज़्यादा दिन तक वहाँ पर केंद्र अध्यक्ष और उसके बाद कार्यक्रम प्रमुख भी था, और दोनों कार्यक्रम प्रमुख और केंद्र अध्यक्ष का कार्य किया, लोगों का सहयोग, वहाँ के लोग, कार्यरत लोग, वहाँ के कैजुअल अनाउंसर, जिन लोग हमारे आकस्मिक घोषक रहे हैं, जो रीडर रहे हैं आकाशवाणी के, उनके साथ हमारा बहुत सहयोग रहा है। हम आशा करते हैं आकाशवाणी डाल्टनगंज दिनों दिन और ऊंचाई छूते रहे और नाम करते रहे। धन्यवाद।
1: भाइयों बहनों, आइए इसी कड़ी में सुनते हैं आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र के पूर्व कार्यक्रम प्रमुख मनोज कुमार को।
5: मैं आकाशवाणी डाल्टनगंज में 2 टर्म पोस्टेड रहा, कार्यालय प्रमुख यानी कि हेड ऑफ ऑफिस और दूसरा कार्यक्रम प्रमुख के रूप में। मैं दोनों ही टर्म में वहाँ के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। वहाँ के लोगों का समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, लगन और उत्साह से परिपूर्ण सभी कंपियर और उद्घोषक को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। पलामू दर्पण का कार्यक्रम मैंने शुरू किया था, जिसमें पलामू यानी कि लातेहार, गढ़वा और डाल्टनगंज से जुड़ी सारी घटनाओं का विवरण साप्ताहिक वीकली लेवल पर इसकी एक रिपोर्ट बनती है। सबसे पहले मेरे सीनियर प्रलय सरकार से मैंने चार्ज लिया था, प्रलय सरकार के द्वारा मुझे वहाँ का हेड ऑफ द ऑफिस का चार्ज मिला था। उस दौरान में अनेक वीआईपी रिकॉर्डिंग्स हुई, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का कवरेज हुआ, गवर्नर साहब का कवरेज हुआ, दीक्षांत समारोह हुआ, 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडोत्तोलन का कवरेज हुआ और बंसीधर समारोह हुआ, रेडियो रिपोर्ट कई बार कई राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रसारित हुए। विशेष रूप से बहुत सारे कार्यक्रम जो कि डाल्टनगंज से जुड़े हुए रहे, कई प्रमुख अतिथियों को बुलाया गया, फायर सर्विस वाले लोगों को अग्निशमन सप्ताह पर बुलाया गया। और उस दौरान में सबसे बड़ी बात हुई कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन का भी आगमन हुआ और उनके कवरेज का, उनकी व्यवस्था का पूरी तरह से, अच्छी तरह से हम लोगों ने, पूरे डाल्टनगंज केंद्र के लोगों ने मिलकर काम किया। तो इसलिए ये आज बधाई का दिन है, हमारी स्थापना दिवस का समारोह है। 6 तारीख डाल्टनगंज के सितंबर में महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इससे स्थापना का, बधाई का। और मेरा चूंकि उस केंद्र से बहुत जुड़ाव रहा है, हम सारे लोगों को, जितने लोगों का नाम ले सका, जो लोगों का नाम नहीं ले सका, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और विशेष रूप से डाल्टनगंज क्षेत्र के, पलामू क्षेत्र के सभी श्रोताओं का हृदय से आभार और उन सभी को शत शत नमन करता हूं।
1: भाइयों बहनों, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र को आगे बढ़ाने में सिर्फ पदाधिकारियों का ही योगदान नहीं रहा, इस केंद्र में पदस्थापित तकनीकी पदाधिकारी और कर्मचारियों का भी भरपूर मदद रहा, जिससे उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम का निर्माण होता रहा। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाने में हमारे कैजुअल अनाउंसर और कॉम्पेयररों की भी काफी अहम भूमिका रही। इनमें से कुछ आज भी हमारे साथ जुड़े हैं और इन रेडियो दोस्तों की आवाज आप कई कार्यक्रमों में सुन सकते हैं। कुछ ऐसे भी कार्यक्रम संचालक, कार्यक्रम उद्घोषक हमारे साथ रहे जो आज दूसरे दूसरे काम में व्यस्त हो गए हैं और आकाशवाणी संस्थान को छोड़कर दूसरे संस्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी हमें याद करते हैं और हम उन्हें याद करते हैं। और हमारे प्यारे प्यारे श्रोता भाइयों बहनों, आप भी जरूर उन्हें याद करते होंगे। उन चंद नामों में से कुछ नाम हैं: राकेश सहाय, राकेश रंजन कटरियार, जावेद अहमद इदरिशी, स्मृति लाल, सुषमा श्रीवास्तव, अनुराधा सिंह, संजय कुमार मिश्र। ये सब ऐसे नाम हैं जिन्हें हर रोज आप रेडियो के साथ अपने पास पाते थे।
6: कार्यक्रम कल्याणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्र
1: करने के लिए
6: श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे
1: आज भी अपने पास संजो कर
6: अपेंडिक्स का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन इससे संबंधित ढेर सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। आइए आज उन तमाम सवालों का जवाब आपको हम दिलवाएंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने चिकित्सक, सर्जन और पलामू जिला अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर सुशील कुमार पांडे। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: जब इस कड़ी में हमने आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक गंगेश गुंजन से बात की तो उन्होंने कहा,
7: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। ये वही जादुई शब्द थे जिससे पूरा शहर जैसे रोमांचित हुआ हो। जिन लोगों में ये रोमांच पहुंचा उनमें एक मैं भी था और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ आकाशवाणी केंद्र आने जाने। बात इस पर आकर पहुंची कि क्यों ना वहां

0: की लाइब्रेरी पर कोई रिपोर्ट तैयार की जाए। उस समय वहां मौजूद आकाशवाणी रांची के वरिष्ठ अनाउंसर कुमार ब्रजेंद्र ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी और पहली बार माइक भी उन्होंने मुझे पकड़ा दी और आकाशवाणी से पहला तजुर्बा काफी हड़बड़ाहट भरा रहा, मगर ये पारी बड़ी लंबी चली। उस समय के हमारे जितने भी अनाउंसर्स थे उन सब ने न सिर्फ अपनी पहचान रेडियो के जरिए बनाई बल्कि बहुत बड़ा योगदान भी रेडियो को दिया। डाल्टनगंज को समझने वाले लोग बहुत सारे वो इस आकाशवाणी केंद्र से जुड़े और इसलिए वो मिट्टी की आवाज बन। एलआरएस का मतलब होता है, लोकल रेडियो स्टेशन का मतलब होता है, वहां जिस जगह पर ये केंद्र खोला गया है वहां की सांसों को महसूस करना। और आकाशवाणी डाल्टनगंज की जीवंतता यही थी कि वहां की सांसें जैसे उसमें चलती हुई महसूस होती थी, वहां की धड़कन धड़क। और इस तरह से 6 सितंबर को जब ये रेडियो स्टेशन एक और साल पूरा कर रहा होगा तो रेडियो की अपनी एक पहचान या डाल्टनगंज रेडियो स्टेशन की अपनी एक पहचान फिर से वहीं पुनर्स्थापित होगी, हम उम्मीद करते हैं। रेडियो से हमारी दूरी, आकाशवाणी डाल्टनगंज से दूरी हो सकती है कुछ बन गई हो, लेकिन वो पहचान, वो जज्बा, वो आत्मीयता शायद अब तक हम महसूस करते हैं, उसकी गर्माहट अभी तक हम महसूस करते हैं।
1: जी हाँ भाइयों बहनों, ये वही रिश्ता है, ये वही रिश्तों का डोर है जो हम सबको, यानी कि हमको, आप श्रोताओं को, यहाँ के पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, हर किसी को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। ये वही यारी है जो मिटे नहीं मिटती।

0: दोस्तों, हम आपके पसंदों का ख्याल करते हुए एक से एक कार्यक्रम आपके लिए सालों भर प्रस्तुत करते रहते हैं। हम आपके लिए ख्याल रखते हैं फिल्मी संगीत का, तो प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम गीत गुंजन, एक रंग, रजनीगंधा। तो शास्त्रीय संगीत सुनने वालों के लिए हमारा कार्यक्रम होता है राग रंग। हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं जोहार पलामू जैसे कार्यक्रम। हम ख्याल रखते हैं अपने किसान भाइयों का भी, खेत खलिहानों का भी। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी और किसान।
1: किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पाटन प्रखंड के बरवाड़ी पंचायत के एक सफल किसान जंग बहादुर मेहता, जो कई दिनों से मछली पालन करते आए हैं। मछली पालन का कार्य इनका अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनता है, क्योंकि खेती बाड़ी के अतिरिक्त ये मछली पालन का कार्य करते हैं और इनसे इनके परिवार का भरण पोषण होता है। आज हम विस्तृत बातें साझा करते हैं इनसे, किस प्रकार मछली पालन को ये अपने पंचायत में, अपने गांव में बढ़ावा दे।
0: भाइयों बहनों, आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम याद करना चाहेंगे अपने दो वैसे पदाधिकारियों की, जिन्होंने अपने कर्म जीवन की शुरुआत यहीं से, यानी कि आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र।
2: आकाशवाणी डाल्टनगंज के श्रोताओं को रंजन कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं आपसे आकाशवाणी डाल्टनगंज से जुड़ी अपनी कुछ पुरानी यादें और अनुभव साझा करना चाहता हूं। कई वर्ष बीत गए, लेकिन आकाशवाणी डाल्टनगंज में बिताए वे दिन आज भी मेरी स्मृति में उतने ही जीवंत हैं। आकाशवाणी डाल्टनगंज में मेरी पहली पदस्थापना प्रसारण अधिकारी के रूप में हुई थी। ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने, समझने और अनुभव करने का अवसर। उन दिनों डाल्टनगंज से प्रसारित होने वाले अनेक कार्यक्रम अपने आप में विशेष थे। लोकगीतों पर आधारित माटी के संग, ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामीण सभा, महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, युवाओं के लिए युवाणी, बच्चों का बाल मंडली, फिल्म संगीत के कार्यक्रम, खेल गतिविधि कार्यक्रम, ये सभी ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक भी। डाल्टनगंज में मेरे लिए सबसे सुखद अनुभवों में एक था क्विज कार्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत करना। यह कार्यक्रम युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। स्थान भले ही बदल जाएं, लोग बिछड़ जाएं, लेकिन वहाँ की आवाज़ें, बिताए हुए दिन, खुशनुमा माहौल और उन दिनों की स्मृतियाँ आज भी हमारे भीतर लगातार प्रसारित होती रहती हैं। आकाशवाणी से जुड़े उन सभी साथियों, कलाकारों, श्रोताओं और उन अनगिनत आवाज़ों को मेरा सादर नमन, जिन्होंने उन दिनों को मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय स्मृति बना दिया। इन्हीं स्मृतियों के साथ आकाशवाणी डाल्टनगंज के सभी श्रोताओं को रंजन कुमार का पुनः नमस्कार।
0: जी हाँ भाइयों बहनों, लोग आते रहें, जाते रहें, यादों की गलियारों में बीते हुए लम्हों का कसक वक्त बनकर भटकता रहा, पर आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र का ये सुहाना सफर अनवरत जारी रहा और आपके लिए, यानी कि हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के दिल की धड़कन बनकर आगे भी

जी हाँ प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आपने आकाशवाणी को बेशुमार प्यार दिया और हमने भी उसे दिल से लगा कर रखा, संजो कर रखा।

है। तो प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आपका और हमारा ये रिश्ता, ये बंधन प्यार का है, मोहब्बत का है, जज्बात का है, और इसी बंधन के सहारे, इस रिश्ते के सहारे हमारा और आपका ये कारवां लगातार पिछले 33 वर्षों से जारी है और आगे भी जारी रहे। दोस्तों, हमारा प्रातकालीन सभा और सायंकालीन सभा में आपकी उपस्थिति, आपकी भागीदारी हमें ऊर्जावान बनाती है, उत्साहित करती है, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपका और हमारा ये साथ यूं ही बना रहे।

दोस्तों, आपका और हमारा साथ सिर्फ मनोरंजन का नहीं होता, बल्कि हम आपको साथ लिए चलते हैं राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यवसायिक गतिविधियों के साथ भी। साथ लिए चलते हैं शैक्षणिक, देश विदेश, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ भी। हम आपको जोड़ते हैं, सुनाते हैं चिंतन, रामचरित मानस गान, स्वर सरिता, महफिल कव्वाली, स्वास्थ्य चर्चा, कल्याणी जैसे कार्यक्रमों को भी। हम बच्चों का भी रखते हैं ख्याल और सुनाते हैं बाल सभा कार्यक्रम भी, और आपके लिए होते ही हैं ढेर सारे फिल्म गीतों से भरा कई कार्यक्रम। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए तो कहते हैं कि आकाशवाणी डाल्टनगंज महज एक नाम नहीं, कोई संस्थान या सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, ये तो रूह से रूह का, दिल से दिल का राबता है। वक्त का पहिया थमेगा दोस्तों, चेहरे बदलेंगे, शायद कल हम यहाँ रहें न रहें, मगर ये रेडियो सेट यूं ही सजे रहेंगे, आपकी वफा और आपका प्यार बनकर महकते रहेंगे। और यकीन मानिए भाइयों बहनों, आपके इस निश्चल प्यार की खुशबू से आकाशवाणी का ये आंगन ता उम्र यूं ही महक

0: इस तरह से दोस्तों हमारा कारवां चल रहा है। वर्तमान में आकाशवाणी डाल्टनगंज के कार्यक्रम प्रमुख प्रशांत गौरव के निर्देशन में, नेतृत्व में हम सभी आपके लिए सदैव तत्पर हैं।
1: आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्षों से आकाशवाणी डाल्टनगंज ने अपनी विश्वसनीय आवाज के माध्यम से लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया है। ये यात्रा हमारे श्रोताओं के स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं थी। विशेष अवसर पर हम अपने पूरे श्रोता परिवार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह संकल्प दोहराते हैं कि भविष्य में भी आकाशवाणी डाल्टनगंज विश्वसनीय, सार्थक और रोचक प्रसारण के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। आपका प्रेम, विश्वास और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आकाशवाणी डाल्टनगंज परिवार की ओर से स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

तो फिर दोस्तों, प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम से मुझे यानी कि आप सबका रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट साइका चटर्जी को दीजिए विदा। आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहायक थे संतोष कुमार और संयोजनकर्ता निर्देशन था प्रशांत गौरव का। दोस्तों, हम तो आपसे ले रहे हैं विदा, लेकिन आप वादा करें कि जुड़े रहेंगे इस केंद्र के साथ आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के साथ। ये है

आप सुन रहे थे आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम यादों के झरोखे से। संकलन एवं वाचन था सैकत चट्टोपाध्याय का, संयोजन एवं प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। इसी के साथ अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर ऑल विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और

0: भी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
1: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग विनिष्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान।

0: आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबंध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
4: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह

0: use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centers, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China's Masters. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और 11 अफराद को बचा लिया गया है। बहुत से अफराद के बारे में अंदेशा है कि ये मलबे में दबे रह गए हैं, बचाव कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने के एक 3 साल खाके का ऐलान किया है। उन्होंने मंशियात के नेटवर्क्स के खात्मे के लिए 4 नुकात पर मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो नशीले मादों के गलत इस्तेमाल से दूर रहें और एक सेहतमंद और बाउसूल जिंदगी गुजारें। उन्होंने सोशल मीडिया के तामीरी इस्तेमाल पर जोर दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने भारत के बढ़ते हुए स्टार्टअप इको निजाम को मेट्रोपॉलिटन मरकजों से आगे तक वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने मजबूत तर साइंस, स्टार्टअप्स और सनअती राबतों पर जोर दिया है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी ने शेंजेन में पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। आज दोपहर नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक कसीर मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और बहुत से लोग मलबे में दब गए। दिल्ली की वज़ीरे आला रेखा गुप्ता ने जाय हादसा का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि अभी तक 11 अफराद को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये इमारत पुरानी थी और इसकी तजदीद और तामीर का काम जारी था। मोहतरमा गुप्ता ने कहा है कि इस हादसे के कसूरवार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा, खा वो इमारत का मालिक हो या कोई अफसर।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: वजीर आला ने कहा कि सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं और हर एक की तवज्जह लोगों को महफूज तरीके से बचाने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू जाय हादसा पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिका एजेंसियों को मुकम्मल तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी ताकि तेज तर बचाव कोशिशों को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल पर करीबी नजर रखी जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जरूरतमंदों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमारत मुनहदिम होने के इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुक्काम जाय हादसा पर काम कर रहे हैं और मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। वज़ीरे आज़म ने मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। इसी दौरान वज़ीरे दाखिला अमित शाह ने वज़ीरे आला रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और NDRF के डायरेक्टर जनरल से बातचीत करके सूरत हाल का जायजा लिया है। वज़ीरे दाखिला ने यह भी कहा कि मकामी इंतजामिया और NDRF करीबी तालमेल के साथ बचाव कार्रवाई अंजाम दे रही हैं और जख्मियों को सभी तरह की जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। NDRF के IG एनएस बुंदेला ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि एनडीआरएफ की दो टीमें जो अमले के 70 अफराद पर मुश्तमिल हैं जाए हादसा पर काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये टीमें फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और मकामी लोगों के साथ मिलकर अपना काम अंजाम दे रही हैं।
3: दो टीम में करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
1: इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी तक 6 अफराद को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया कि मकामी तफ्तीश के दौरान पता चला है कि यह इमारत 40 से 50 साल पुरानी थी और हादसे के वक्त इमारत के तहखाने में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज भारत को 2029 तक नशीले मादों से पाक बनाने का एक 3 साल खाका जारी किया। उन्होंने नशीले मादों की रोकथाम की तालमेल के साथ अंजाम दी जाने वाली कौमी सतह की एक मुहिम के लिए कहा। जनाब शाह गोवा के अपने 3 रोजा दौरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2019 से कानून लागू करने, एजेंसियों के माबैन एक दूसरे को सुराख फराहम करने, माली तहकीकत और बाज आबादकारी के इकदाम को मुस्तहकम बनाया है। 2014 से 2024 तक की मुद्दत में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा नशीले मादे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 1,89,000 करोड़ रुपए है, जबकि 48,66,000 किलोग्राम नशीले मादों को खत्म किया गया।
4: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26,00,000 किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
1: जनाब शाह ने कहा कि इस खाके के 4 सुतून हैं: सुराग रसानी और कार्रवाई पर मबनी कानून का निफाज, पेशगी मालूमात और मसनूई तौर पर तैयार किए गए नशीले मादे, मांग और नुकसान में कमी, ने सलाहियत साजी और तालमेल।
4: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: हुकूमत ने अगले 3 साल में नशीले मादों के बैन अल-अक़वामी और बैन रियासती सतह के 100 नेटवर्क्स को खत्म करने, नशीले मादों के कारोबार में मुलविस 100 फरार अफराद को भारत लाने और नशीले मादों से मुतालिक 100 खुफिया लेबोरेटरीज को तबाह करने का मकसद तय किया है। बाद में वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्यनिकेतन इमारत इन्हदाम की जगह से बचाए गए और तिब्बी इलाज के लिए लाए गए अफराद से मुलाकात के लिए एम्स के ट्रोमा सेंटर का दौरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी तलबा का इलाज जारी है। उन्होंने डॉक्टरों की टीम को हिदायत दी कि वो हर जरूरी मेडिकल इमदाद को यकीनी बनाएं। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मुतासरीन के कुनबों के साथ भी रबते में है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो सेहतमंद और उसूल पसंदाना जिंदगी गुजारें, नशीले मादों से दूर रहें और नशा मुक्त भारत की तामीर में ताउन दें। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया को तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करें और इसे हद से ज्यादा वक्त न दें। वो आज गुवाहाटी में सेहत उलूम की श्रीमंत शंकरादेव यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के सालाना जलसे से खिताब कर रहे थे।
5: Wherever I go, I always urge all the students to say no to drugs. And restrict your social media usage. Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
1: नायब सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि तालीमी इदारों को चाहिए कि वो तलबा को उनकी पेशावराना जिंदगी से आगे बढ़कर तैयार करें और जमहूरियत और समाज के लिए जिम्मेदार शहरी बनाने पर तवज्जो दें। आज गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्वालिटी तालीम, तहकीक और किरदार साजी मुल्क की तरक्की के लिए लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया ने आला तालीम में खवातीन की बढ़ती हुई हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए इसे खुशाइन तब्दीली और नारी शक्ति का इजहार करार दिया। नायब सदर जमहूरिया आज से आसाम के दो रोजा दौरे पर हैं। साइंस

और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी ने शिंजेन में पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

6 सितंबर 1949 को मुंबई में जन्मे राकेश रोशन, संगीतकार रोशनलाल नागरत के पुत्र और संगीतकार राजेश रोशन के भाई हैं और ऋतिक रोशन के पिता हैं। और अब तो राकेश रोशन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशकों में शुमार होता है। लेकिन पिता संगीतकार रोशन के अचानक देहांत के बाद राकेश रोशन के लिए अपने करियर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए निर्माता निर्देशक मोहन कुमार। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को राकेश रोशन का नाम सजेस्ट किया एक्टिंग के लिए और आखिर 1970 में फिल्म घर घर की कहानी से राकेश रोशन की एक्टिंग की कहानी शुरू।

ये गाना जो अभी आपने सुना, अभिनेता जलाल आगा पर फिल्माया गया था। इस फिल्म घर घर की कहानी में राकेश रोशन सपोर्टिंग रोल में थे। बतौर अभिनेता उन्होंने अधिकतर सपोर्टिंग रोल्स ही किए। सोलो हीरो के रूप में उनकी कम ही फिल्में आईं, लेकिन जो भी आईं वो भी यादगार रहीं और उनका संगीत तो सुपर डुपर हिट रहा।

0: दोनों ही फिल्मों में हालांकि मुख्य भूमिकाओं में देवता में संजीव कुमार थे और जख्मी में सुनील दत्त, लेकिन राकेश रोशन ने अपनी उपस्थिति बहुत ही पुरजोर तरीके से जाहिर की। उसके बाद फिल्म खट्टा मीठा में गोविंदिया गोस्वामी के साथ इनका ये गीत आज भी लोगों का दिल जीत लेता है।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं। इनमें एक फिल्म याद आती है, फिल्म खूबसूरत। हालांकि फिल्म में टाइटल रोल रेखा का था, लेकिन राकेश रोशन और रेखा की जोड़ी ने बहुत ही कमाल अभिनय किया।

ऐसी ही और भी फिल्में हैं जिनमें राकेश रोशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन इससे राकेश रोशन खुश नहीं थे। इसीलिए 1980 में राकेश रोशन ने स्थापित की अपनी फिल्म निर्माण संस्था फिल्म क्राफ्ट और फिल्म बनाई आ

ये फिल्म कामचोर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया था और यहीं से शुरू हुआ राकेश रोशन की फिल्मों में क शब्द का कमाल। यहां से आगे राकेश रोशन ने जो भी फिल्में बनाई उनका शुरुआती अक्षर क रहा और अब तो राकेश रोशन एक ब्रांड बन गए। राकेश रोशन ने 1987 में निर्देशन की कमान भी संभाल ली। फिल्म थी खुदगर्ज।

सफलता की गारंटी माने जाने लगे। खून भरी मांग 1988 में रेखा के साथ, फिर किशन कन्हैया 90 में, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, और इसके बाद कुछ वर्षों तक बतौर अभिनेता कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आए। लेकिन सन 2000 में बिग बैंग के साथ आए अपने बेटे को लेकर ऋतिक रोशन के साथ कहा, कहो ना प्यार है।

इस फिल्म कहो ना प्यार है की सफलता को तो सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस फिल्म का नाम है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। इसके बाद राकेश रोशन ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी ने सफलता का एक नया मकाम हासिल किया। यहाँ ये भी बता दें आपको कि खूबसूरत फिल्म में रेखा के साथ अभिनय करने वाले राकेश रोशन ने अपनी दोस्ती को निभाया और रेखा को कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में बहुत ही दमदार भूमिका दी। तो अब वो फिल्में जिन्होंने सफलता का इतिहास रचा, कोई मिल गया।

0: कलाकार राकेश रोशन पर केंद्रित इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी स्वर्णिम यात्रा 2026। संकलन एवं वाचन संतोष कुमार और प्रतिमा

0: वर्मा का, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।
1: प्रस्तुत है आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम स्वर्णिम यात्रा। वाचन स्वर संतोष कुमार एवं प्रतिमा वर्मा। कार्यक्रम प्रस्तुत करता है प्रशांत गौरव।
2: आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्षों से आकाशवाणी डाल्टनगंज ने अपनी विश्वसनीय आवाज के माध्यम से लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया है। ये यात्रा हमारे श्रोताओं के स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं थी। इस विशेष अवसर पर हम अपने पूरे श्रोता परिवार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह संकल्प दोहराते हैं कि भविष्य में भी आकाशवाणी डाल्टनगंज विश्वसनीय, सार्थक और रोचक प्रसारण के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। आपका प्रेम, विश्वास और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आकाशवाणी डाल्टनगंज परिवार की ओर से स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहें आकाशवाणी डाल्टनगंज के साथ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, पलामू की पृष्ठभूमि पर आज का दिन एक गौरवशाली महत्व रखता है। जी हाँ, एक ऐसा विशिष्ट दिवस जो पलामू या फिर इसके सीमावर्ती सूबे अथवा दूर दराज के गांव-गांव, हर कस्बा या फिर चप्पा चप्पा को संयुक्त रूप से जोड़कर एक मिसाल कायम करता है।
3: जी हाँ श्रोताओं, यहाँ की मिट्टी से युक्त लोक संस्कृति, इसकी सौंधी खुशबू, संरचनात्मक विकास, जन शिक्षा, जन स्वास्थ्य, खेती बाड़ी एवं मनोरंजन के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों से एक अपार जनसमूह को जोड़ने एवं उन तक तत्काल पहुँच कायम करने के लिए 6 सितंबर 1993 को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय प्रसारण की एक बहुत बड़ी इकाई आकाशवाणी का शुभ उद्घाटन पलामू की धरती पर किया गया, जिसकी बुनियाद डाल्टनगंज में रखी गई।
1: इस शुभ उद्घाटन दिवस के अवसर पर आप तमाम श्रोता दोस्तों को आकाशवाणी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही संतोष कुमार
3: एवं प्रतिमा वर्मा की ओर से शुभ नमन।
1: प्रतिमा, कार्यक्रम स्वर्णिम यात्रा के इस दौर में हम अपने श्रोताओं को यह अवगत कराते हुए आगे चले। आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र, जिसका प्रसारण FM 103 MHz के ध्वनि तरंगों पर किया जाता है, पलामू सहित गढ़वा, लातेहार एवं चतरा जिले के बिहड़ गांव के अतिरिक्त गढ़वा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश का रेणुकूट या फिर मध्य प्रदेश के कटनी के बाद गया जिले के डुमरिया जैसे गांव भी आकाशवाणी डाल्टनगंज के प्रसारण की परिधि में आते हैं।
3: बेशक इतने बड़े क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रसारण को पहुंचाना केंद्र द्वारा निश्चय ही एक चुनौतीपूर्ण भरा कार्य भी है। और संतोष, स्वर्णिम यात्रा कार्यक्रम के इस सफर में बातों की हसीन शुरुआत 6 सितंबर 1993 की उस मध्याह्न बेला से। जी हाँ श्रोताओं, वो बेला थी उद्घाटन समारोह की, एक सुखद एहसास की, एक अद्भुत और इंद्रधनुषीय आनंद की।
1: श्रोताओं, फिर क्या था, जनसमूह में एक लहर सी दौड़ गई, उमंगे हिलोरियां लेने लगी। ऐसा लगा जैसे सूचना की दिशा में यहाँ के अपार जनसमूह के लिए एक बहुत बड़ी मंशा पूरी हो गई हो।
3: सचमुच एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास, मानो यहाँ के अपार जनसमूह को कदम कदम पर साथ चलने वाला कोई हमसफर या फिर कोई साथी मिल गया हो।

प्रतिमा उस वक्त डाल्टनगंज केंद्र का प्रसारण समय हुआ करता था शाम 5 बजे से रात्रि के 11:10 तक, और अपने मुख्य मुख्य कार्यक्रम थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन, युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युवावाणी और रोजगार समाचार। इसके साथ ही लघु नाटिका का कार्यक्रम प्रहसन, मघी एवं भोजपुरी गीतों का कार्यक्रम धरती के गीत, सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वर सरिता, किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी, वनस्पत इसके फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हुआ करता था चित्रपट संगीत, चित्रमाला आज शाम और रजनीकांत।

0: श्रोताओं, कहा जाता है जो चीजें हमें मांग कर मिलती है उसे हम मन्नत कहते हैं, जो चीजें चाह कर मिलती है उसे हम चाहत कहते हैं, और जो चीजें पास हो उसे हम अमानत कहते हैं। किंतु कार्यक्रम के सफर में जब अच्छे श्रोता दोस्त मिल जाएं तो उसे अपनी किस्मत कहते हैं।
1: निसंदेह, और प्रतिमा हम करते हैं अपनी किस्मत पर नाच।

श्रोता दोस्तों तक अपनी पहुंच बनाने अथवा उनकी राय समझने जानने के लिए खतों का एक जोरदार सिलसिला शुरू किया गया वर्ष 1994 से। खत हमारे अनेकों कार्यक्रमों की बेहतरी के लिए एक सरल माध्यम साबित हो गए, अपितु श्रोता दोस्तों की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाने लगा आपकी पसंद।

0: अपने ढेर सारे कार्यक्रमों के बावजूद विशेष रिले कार्यक्रमों की सेवा भी हमारे श्रोताओं को दी जाती रही है, जिनमें मुख्य है प्रादेशिक समाचार और इसका रिले प्रसारण केंद्र आकाशवाणी पटना हुआ करता था। पर जब से झारखंड राज्य की स्थापना हुई, तब से रिले कार्यक्रमों की सेवा आकाशवाणी रांची द्वारा ली जाने लगी। बनिस्पत इसके हिंदी समाचार के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की पहुंच को साफ सुथरा एवं कर्णप्रिय बनाने में भी केंद्र पीछे नहीं हटता। और बात जब रिले कार्यक्रमों में समाचारों की चली है, तो हम अपने श्रोताओं को यह भी बता दें, हिंदी समाचारों के अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रसारण की एक और सेवा अंग्रेजी समाचारों की उनको दी गई 1 जुलाई 2000 से।
1: श्रोताओं, समाचारों के संबंध में जानकारी देने के क्रम में हम क्रमवार वर्तमान में अनुप्रसारित किए जाने वाले समाचारों की सूची हम आपको बता दें। सुबह तड़के 6 बजे हिंदी में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 मॉर्निंग न्यूज, 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10:05 पर हिंदी में समाचार, दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, पुनः 2 बजे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 हिंदी में समाचार, रात्रि 9:45 हिंदी में समाचार, रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 उर्दू में समाचार, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करते हैं अपने दिल्ली केंद्र से। और क्षेत्रीय समाचारों की प्रसारण सूची इस प्रकार से: प्रातः 8:30 प्रादेशिक समाचार, दोपहर 1:10 पर प्रादेशिक समाचार, 2:55 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार, 4:00 मुख्य प्रादेशिक समाचार, 5:00 मुख्य प्रादेशिक समाचार, शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल, जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।
0: इस प्रकार राज्य अथवा देश या फिर अपने वतन की तत्कालीन खबरों को मुहैया कराने में हम कतई पीछे नहीं हटते। और श्रोताओं, पल पल गुजरता हुआ ये क्षमा कहता है, आज की रात स्वर्णिम यात्रा के इस सफर में गीतों का साथ हम बिल्कुल ना छोड़ें।

0: श्रोताओं, हम आपका पुनः आगाज करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस पर आधारित विशेष कार्यक्रम स्वर्णिम यात्रा।
1: श्रोताओं, इस स्वर्णिम यात्रा के दौर में हमने समाज के अनेक वर्गों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए उनकी विशिष्टताओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेकों कार्यक्रमों को सौगात स्वरूप उन तक समर्पित करते रहे।
0: जहाँ युवा जगत के दोस्तों को अपने केंद्र से जोड़ने के लिए युवाणी कार्यक्रम वर्ष 1993 से लेकर अब तक प्रस्तुत किया जाता रहा है। वर्तमान में युवाणी कार्यक्रम महीने के प्रति रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि युवा दोस्तों को रोजगार परक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए इस शुक्रवार को ठीक 7:45 पर हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम उड़ान।

0: श्रोताओं, समाज, गांव, कस्बा अथवा किसी भी राष्ट्र अथवा देश की रीढ़ महिलाएं होती हैं। खासकर महिला वर्गों को आकाशवाणी से जोड़ने के उद्देश्य से आरंभ से लेकर अब तक पुरजोर प्रयास किए जाते रहे हैं। इनके लिए महीने के प्रति सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को घर आंगन कार्यक्रम तथा रविवार को जननी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है।
1: कार्यक्रमों की श्रृंखला में जो कार्यक्रम 1993 से लेकर अब तक बदस्तूर जारी रखे गए, उनमें हिंदी साहित्य से जुड़ा मुख्य कार्यक्रम रहा खुला आकाश। यह कार्यक्रम मंगलवार को प्रसारित किया जाता है और कार्यक्रम की अवधि होती है 15 मिनट की। यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम सिद्ध हुआ जिसमें जाने माने साहित्यकारों को केंद्र से जोड़ने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ।
0: श्रोताओं, बातें यही नहीं थमती। हमने अपने पर्यावरण को जीवंत बनाए रखने के लिए 1 मई 2000 से शाम 5:15 बजे से पर्यावरण से जुड़ी वार्ता दैनिक कार्यक्रम के रूप में श्रोताओं को परोसे हमारा परिवेश। बाद में इस कार्यक्रम का शीर्षक रखा गया विविधा 1 जुलाई 2000 से। कार्यक्रम में श्रोताओं की रुचि बढ़ने के साथ ही इसका प्रसारण दैनिक कार्यक्रम के रूप में ही प्रसारित किया जाने लगा 5 अप्रैल 2003 से।
1: श्रोताओं, 5 अप्रैल 2003 को ही एक और कार्यक्रम की शुरुआत की गई जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ा कार्यक्रम रहा, स्वास्थ्य चर्चा। इसका

0: प्रसारण वर्तमान में प्रातः
1: 6:45 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अवधि 10 मिनट।
0: ऐसे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां हम श्रोताओं को कल्याणी कार्यक्रम के माध्यम से भी देते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम का प्रसारण महीने के प्रति सोमवार एवं बुधवार को 7:45 किया जाता है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रमों की एक बौछार सी लगी है आज की रात। कार्यक्रमों पर बातें अभी और भी बाकी हैं, पर स्वर्णिम यात्रा के इस सफर में सिलसिला ये गीत नहीं थमा।

0: श्रोताओं, गीत के बाद हम पुनः लौटते हैं कार्यक्रमों पर। हमने बच्चों के उत्तरोत्तर विकास एवं उनके मनोरंजन के लिए आरंभ से ही उनको सुनवाते रहे बाल सभा कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, गीत गजलों की खुशबू आरंभ से ही गजल प्रेमियों तक पहुंचाई जाती रही है। श्रोताओं द्वारा भेजे गए खतों के आधार पर इस कार्यक्रम के समय में भी फेरबदल किया गया। अक्टूबर 2004 से गीत गजलों का प्रसारण समय रहा शाम 7:15 बजे से। वर्तमान में यह कार्यक्रम सुरांजनी शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है प्रति शनिवार और रविवार को।

करेगी। जब गीत गजलों की बात चली है तो सुगम संगीत की चर्चा भी हम कर लें। कार्यक्रम सुगम संगीत का प्रसारण समय पूर्व से ही प्रति सोमवार एवं गुरुवार को शाम 7:45 किया जाता रहा है, परंतु 1 जुलाई 2000 से कार्यक्रम के समय में परिवर्तन कर 7:05 पर प्रातः से कर दिया गया। बहरहाल ये कार्यक्रम 7:45 पर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मैं डॉक्टर अवरोज चौधरी, डाल्टनगंज में मैं लगभग दो पोस्टिंग थी मेरी। मैं 2005 में था, 2013 से मैं रहा, और इस दौरान काफ़ी अच्छा अनुभव मेरे डाल्टनगंज का केंद्र का रहा है। लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है, मेरे कैजुअल अनाउंसर्स मेरे साथ रहे हैं। पूरा इलाका नेतरहाट रहा, महुआ डांड, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा, जपला, हुसैनाबाद जिसको कहते हैं, मैंने पूरा इलाका कार्यक्रम किया है। सिर्फ स्टूडियो में नहीं,

0: स्टूडियो के बाहर में भी किया है। स्टूडियो में अगर बोला जाए तो मैं काफ़ी कार्यक्रम किए हैं। उसके बाद उस कार्यक्रम के तहत मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जो था रूबरू कार्यक्रम, जिसमें वहाँ के MP, MLA, मिनिस्टर, इनका 1 घंटे का मैंने कार्यक्रम मैं करता था, खुद करता था। ये पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम था और बीच बीच में गाना भी चलता था, उनके पसंद के गाने दिए जाते थे, उनसे बातचीत होती थी। इसके बाद ये स्टूडियो में काफ़ी समय हुआ, लोकगीत के कार्यक्रम भी हुए थे, कुछ अलग अलग कार्यक्रम भी होते रहते थे। इसके अलावा काफ़ी रूपक फीचर्स हमने वहाँ बनाया है। हुसैनाबाद जपला में खरबाद राज के ऊपर सोन नदी के तट पर जो है पूरा राज, उसका जो राज है वो पहले का हिस्टोरिक एक पूरा आर्काइवल वो था। मैंने वो कार्यक्रम किया था, वो इसमें मैंने वो हमारे साथ शेखर चट्टोपाध्याय, मैंने हम दोनों ने काफ़ी दिनों तक जपला में जा जा कर हम लोगों ने कार्यक्रम किया था और उसका पूरा बाइट लाया था पूरा जपला से। फिर नेतरहाट विश्वविद्यालय जो है, नेतरहाट विद्यालय जो एक ऐतिहासिक विद्यालय है, झारखंड का एक इज्जत है या शान है, वहाँ पर जाके मैंने कार्यक्रम बनाया था। नेचर, ये सब जो कार्यक्रम जितने होते थे ये हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के तहत होते थे और सभी केंद्र उसको सुनते थे, केंद्र के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी लोग सुनते थे। उस समय बिहार को भी साथ दिया जाता था और उसके अलावा आपके आकाशवाणी के माध्यम से लोग बाहर में भी सुनते थे। उसके बाद हमने वहाँ के राज शेरो राज पर और वहाँ के धरोहर है उसके ऊपर आप कार्यक्रम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। पलामू किला पर हमने काफी कार्यक्रम किया, इस पे संतोष कुमार जी हमारे साथ थे। पुराना किला, नया किला, बेतला पे काफी कार्यक्रम हुआ था। बेतला पे हमने बहुत कार्यक्रम किए हैं, कुछ संतोष जी के साथ, कुछ साइकत जी के साथ भी किए हैं और फिर बांके बिहारी मंदिर पर भी हमने किया था जाके। वो समझ लीजिए हमने नेतरहाट को पकड़ा और नेतरहाट से हम महुआ डांड, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा, जपला और एक दूसरे छोर तक चले जाते थे और किसान वाणी के तहत हमने काफी कार्यक्रम किया। चारों तरफ जाते रहे पूरे इलाके में। पलामू जिले का सबसे बड़ा भीषण जल संकट है पर जल संकट को भी के ऊपर भी हमने कार्यक्रम किए हैं। डैम पर संतोष जी के साथ हमने कार्यक्रम किया है। जितने तरह के डैम हैं अभी हाल में, अभी डैम की समस्या समाप्त हो रही है डाल्टनगंज में। ज्यादा दिन तक वहाँ पर केंद्र अध्यक्ष और उसके बाद कार्यक्रम प्रमुख भी था। अब दोनों कार्यक्रम प्रमुख और केंद्र अध्यक्ष का किया, लोगों का सहयोग, वहाँ के लोग, कार्यरत लोग, वहाँ के कैजुअल अनाउंसर जिन लोग हमारे आकस्मिक घोषक रहे हैं, जो रीडर रहे हैं आकाशवाणी के, उनके साथ हमारा बहुत सहयोग रहा है। हम आशा करते हैं आकाशवाणी डाल्टनगंज दिनों दिन और ऊंचाई छूते रहे और नाम करते रहे। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी डाल्टनगंज के वर्तमान कार्यक्रम प्रमुख प्रशांत गौरव।
2: आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्षों से आकाशवाणी डाल्टनगंज ने अपनी विश्वसनीय आवाज के माध्यम से लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया है। ये यात्रा हमारे श्रोताओं के स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं थी। इस विशेष अवसर पर हम अपने पूरे श्रोता परिवार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह संकल्प दोहराते हैं कि भविष्य में भी आकाशवाणी डाल्टनगंज विश्वसनीय, सार्थक और रोचक प्रसारण के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। आपका प्रेम, विश्वास और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आकाशवाणी डाल्टनगंज परिवार की ओर से स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहें आकाशवाणी डाल्टनगंज के साथ। धन्यवाद।
3: संपूर्ण राष्ट्र के गलियारों में बसा गांव हमारी वास्तविक संस्कृति का परिचय देता है। किसी भी गांव की खुशबू उसकी लोक संस्कृति से ही मिलती है। बेशक श्रोताओं, लोकगीतों की महक आप तक पहुंचाने के लिए हमने धरती के गीत कार्यक्रम पेश किए। यह कार्यक्रम शुरुआती दौर से ही किया जाता रहा है। लोकगीत के कार्यक्रमों की पहचान अनेकों नाम से हुई, माटी की महक, माटी के संग, धरती के गीत।
4: श्रोताओं, लोकगीतों का कार्यक्रम वर्तमान में महीने के प्रति सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किया जाता है प्रातः ठीक 7:15 बजे, जिसे हम पलाश के नाम से जानते हैं, और शाम 7:45 बजे प्रति रविवार को प्रसारित करते हैं, जिसे हम महुआ के नाम से जानते हैं।

0: श्रोताओं, संगीत की कसौटी पर हम भारतीय संगीत की चर्चा किए बिना भी कैसे रह सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में वाद्य धुन अथवा गायकी को दिल से पसंद करने वाले श्रोताओं के लिए राग रंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।
1: प्रातः 7:15 प्रति मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को। श्रोताओं, इस प्रकार संगीत के विविध आयामों से हमने जादू बिखेरे आप तक। ऐसे भी आकाशवाणी आवाज की एक जादू ही है, जिसमें ध्वनि तरंगों के माध्यम से आप तक संपर्क बना लिया जाता है।

अपने हर वर्गों के श्रोताओं की चाहत को अपनी चाहत मानते हुए अक्टूबर 2013 से हमने शुरू किया विविध क्षेत्रीय फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो बांग्ला, मराठी और पंजाबी भाषाओं का एक संगम बन जाता है। यह कार्यक्रम शनिवार को प्रस्तुत किया जाता है

0: बावजूद इतने सारे कार्यक्रमों के
1: हमारे भारतीय किसानों अर्थात प्रदेश के किसानों के लिए जमीन से जुड़ी खबरें हम उन तक समर्पित करते रहे हैं। सोमवार बुधवार और शनिवार को प्रातः ठीक 6:50 पर और कार्यक्रम होता था खबरें खेती की, जिसका शुभारंभ हुआ अक्टूबर 2013 से। बहरहाल कार्यक्रम का नाम बदलकर दिनांक 1 सितंबर 2020 से किया गया खेती की बातें और प्रसारण समय 6:05 पर निर्धारित किया गया, जिसे हम दैनिक रूप से अब प्रसारित करते हैं। श्रोता मित्रों, बात चूंकि कृषक भाइयों की चली है इसलिए बातें यही नहीं थमती। हम आपको बताते चले, वर्ष 1994 से कृषक भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम हमने समर्पित किया ग्रामीण सभा, जो अब तक जारी है। हम यह भी बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी की सेवा आपको दी गई 3 अक्टूबर 2005 से जुलाई 2026 तक। फिलहाल सितंबर 2025 से 6:02 पर हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम खेती बारी, जो कृषि पर आधारित होता है, और 6:30 से कार्यक्रम ग्रामीण सभा, जो ग्रामीण बुनियादी सवालों पर आधारित होता है। इस प्रकार किसान भाइयों के लिए वर्तमान में हम लगभग 1 घंटे की सेवा बदस्तूर देते हैं।
2: क्रमवार खास खास कार्यक्रमों के संपादित अंश इस प्रकार से।
0: खेतों में संघर्ष करते किसानों से भेंट की एक झलक।
3: आपका नाम हुआ रामेश्वर यादव।
4: हाँ।
3: ये कहाँ, कौन सा गाँव है?
4: पुकचू है।
3: पुकचू।
4: लालमात पुकचू।
3: रेडियो सुनते हैं?
4: हाँ।
3: जो बैल रखे हुए दो,
4: हाँ।
3: कहाँ से लाए थे?
4: घर है।
3: बलबल का मेला उसे लाए थे?
4: ना ना, ये घर का माल है।
2: चिलचिलाती पीली धूप में धान रोपनी करती किसान महिलाओं से भेंट के अंश।
5: जी
6: सुमंती मिंज
5: जी, खेतों में धान रोपनी का कार्य कर रही हैं मिंज, आपको इस वक्त आप कैसा अनुभव कर रही हैं?
6: हमको बहुत खुश लग रहा है।
0: खेती के दरमियान महिला किसानों के मुख से फूटते हुए गीतों के सुर।

0: टोकरी बुनकर महिलाओं से बातचीत के अंश।
1: नागो देवी
2: जी, नागो देवी आप कितने सालों से ये बुनकर का कार्य कर रही हैं?
1: जब से ही हम लोग के यही रोजगार है तो क्या करेंगे, यही नहीं करते हैं।
2: इसके लिए बांस आप कहाँ से लाती हैं?
1: देहात से खरीद के।
2: खरीद कर लाती हैं? एक बांस कैसे पड़ जाता है?
1: 30 रुपये।
3: उद्योग जगत में मिसाल कायम करती सफल रेशम धागा रीलर महिलाओं से भेंट के अंश।
4: सगुप्ता खातून।
2: सगुप्ता खातून आप पे इसमें कितने दिनों से जुड़ी हुई हैं?
4: हम 1.5 साल से काम से जुड़े हुए हैं। हम लोग पूरे परिवार इस काम में मतलब सब मशगूल रहते हैं।
0: कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत के अंश।
5: आज हमारे साथ है डॉक्टर राजीव कुमार, वैज्ञानिक पौधा संरक्षण कृषि विज्ञान केंद्र चिया की पलामू। आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को बताएं कि खरीफ फसलों में
6: धान के जो रोग है, साथ ही साथ इसमें लगने वाले कीटाणु, जिससे कि फसल का जो है वो काफी नुकसान होता है, और इस क्षेत्र में धान, मक्का, अरहर।
3: बेशक खेती बाड़ी की दिशा में एक जमीनी संपर्क, फसल उत्पादन से लेकर फूलों की खेती तक का सफर।
0: श्रोताओं, हम एक बात और आपको बता दें, दूरस्थ एवं बिहड़ गांवों के ग्रामीणों या फिर अपने रास्ते से भटक चुके लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के वास्ते हम एक विशेष कार्यक्रम आपको सुनवाते हैं, उजाले की ओर, प्रति गुरुवार को ठीक 7:45 पर। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 2015 से।
3: सचमुच एक भरा पूरा कार्यक्रम।

0: दोस्तों विज्ञान से जुड़ी ताजी तरीन खबरें हम श्रोताओं को उपलब्ध कराते हैं महीने के प्रति शनिवार को ठीक 7:45 बजे कार्यक्रम विज्ञान जगत के माध्यम से।
1: श्रोताओं आज की रात हम अपने पुराने कार्यक्रमों से लेकर अब तक के कार्यक्रमों का जिक्र आपसे कर रहे हैं, अपने उन तमाम कार्यक्रमों के फूलों की महक को ताजा कर रहे हैं आज की रात।

श्रोताओं, स्वास्थ्य, विज्ञान, इतिहास और खेलों की दुनिया पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है जोहार पलामू, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 से की गई। यह कार्यक्रम पलामू प्रमंडल की ताजा तरीन खबरों से जुड़ा है। कार्यक्रम की अवधि लगभग 30 मिनट और प्रसारण समय प्रातः 9 बजे। श्रोताओं, कुल मिलाकर हम आपको ये संदेश प्रेषित कर दें कि अपनी 33 वर्षों की यात्रा के दौरान एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की झड़ी हमने लगा दी वर्ष 1993 से 2026 तक में।

श्रोताओं, जिस तरह की फूलों की कोई खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह की बहते हुए झरने या फिर ठंडी हवाओं के झोंकों का कोई मस्कन या घर, गांव या कोई वतन अथवा देश नहीं होता। जिस तरह की उभरते हुए सूरज की किरणों का या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक वैसी ही हमारी आपकी बेपनाह दोस्ती।

0: फिलहाल में फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। प्रातः 8:45 पर कार्यक्रम होता है गीत गुंजन। शाम 7:15 से 7:45 तक कार्यक्रम एक रंग, सोमवार से शुक्रवार तक। शाम 8 से 8:30 तक कार्यक्रम चित्रपट से, और रोजाना रात्रि 10 से 11 तक कार्यक्रम रजनीगंधा।
1: श्रोताओं, इस प्रकार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में गीतों का सफर कालजयी गीतों से लेकर 70 या फिर 80 या 90 के गीतों को समेटते हुए आधुनिक समय के गीतों को भी विशिष्ट परिस्थितियों में कारगर रूप से प्रस्तुत किए गए, जो रेडियो सेट पर जज्बात की थिरकन पैदा कर दी।

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं मनोज कुमार आकाशवाणी डाल्टनगंज की स्थापना दिवस के अवसर पर अपना बधाई संदेश भेज रहा हूं। मैं आकाशवाणी डाल्टनगंज में 2 टर्म पोस्टेड रहा, कार्यालय प्रमुख यानी कि हेड ऑफ ऑफिस और दूसरा कार्यक्रम प्रमुख के रूप में। वहां के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। वहाँ के लोगों का समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, लगन और उत्साह से परिपूर्ण सभी कंपियर और उद्घोषक को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। उनकी लगन, मेहनत, निष्ठा से ही ये केंद्र चल रहा है। सभी के अलावे जो विशेष बधाई का पात्र हैं, वो हैं सैकत जी और संतोष जी। संतोष जी का मैनेजमेंट लाजवाब है। वो उनके द्वारा किया गया बहुत सारी व्यवस्था बहुत ही सराहनीय है। पलामू दर्पण का कार्यक्रम मैंने शुरू किया था, जिसमें पलामू यानी कि लातेहार, गढ़वा और डाल्टनगंज से जुड़ी सारी घटनाओं का विवरण साप्ताहिक वीकली लेवल पर इसकी एक रिपोर्ट बनती है। और ये प्रोग्राम सैकत जी को हमने साइन किया शुरुआत में ही। वहाँ के कंट्रोल रूम के सारे दोस्तों को मैं बधाई देता हूँ। हम केवल अपने उद्घोषक कंपियर की बदौलत सक्सेसफुली पूरी तरह से ट्रांसमिशन चलाते रहे। उस दौरान में अनेक VIP रिकॉर्डिंग्स हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी का कवरेज हुआ, गवर्नर साहब का कवरेज हुआ, दीक्षांत समारोह हुआ और बंसीधर समारोह हुआ, रेडियो रिपोर्ट कई बार कई राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रसारित हुए। विशेष रूप से बहुत सारे कार्यक्रम जो कि डाल्टनगंज से जुड़े हुए रहे, कई प्रमुख अतिथियों को बुलाया गया, इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज यानी कि जो वहां के विशिष्ट अतिथि हैं उनको बुलाया गया, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर और उसके जो पैनल में थे और वहाँ के स्थानीय विधायक भी रहे और चतरा के सांसद रहे श्री इंदर सिंह नामधारी जी, उनका साक्षात्कार प्रसारित हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारी रिकॉर्डिंग, बहुत सारे कर्तव्यनिष्ठ लोग। और उस दौरान में सबसे बड़ी बात हुई कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन का भी आगमन हुआ और उनके कवरेज का, उनकी व्यवस्था का पूरी तरह से, अच्छी तरह से हम लोगों ने, पूरे डाल्टनगंज केंद्र के लोगों ने मिल के काम किया। आज बधाई का दिन है, हमारी स्थापना दिवस का समारोह है। 6 तारीख डाल्टनगंज के सितंबर महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इससे स्थापना का, बधाई का। और मेरा चूंकि उस केंद्र से बहुत जुड़ाव रहा है, हम सारे लोगों को, जितने लोगों का नाम ले सका, जो लोगों का नाम नहीं ले सका, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और विशेष रूप से डाल्टनगंज क्षेत्र के, पलामू क्षेत्र के सभी श्रोताओं का हृदय से आभार और मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
1: हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स एंड वार्म विशेस टू ऑल आवर वैल्यूड लिसनर्स ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ आकाशवाणी डाल्टनगंज। ओवर द ईयर्स आकाशवाणी डाल्टनगंज हैज कनेक्टेड विद पीपल थ्रू इट्स ट्रस्टेड वॉइस, ब्रिंगिंग देम इंफॉर्मेशन, education, entertainment, and the rich cultural heritage of the region. This journey would not have been possible without the affection, trust, and continued support of our listeners. On this special occasion, we express our sincere gratitude to our entire listener family and reaffirm our commitment to continue serving society with credible, meaningful, and engaging broadcasting. Your love, trust and support are our greatest strength. Once again, a warmest wishes from the Akashwani Daltonganj family on its foundation day. Keep connecting with Akashwani Daltonganj. Thank you.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम स्वर्णिम यात्रा के इस दौर में प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त लेखा जोखा पेश कर रहे हैं।
3: अब यह उल्लेखनीय हो जाता है कि पूर्व से लेकर अब तक हमारे अपने कार्यक्रमों का दायरा या फिर रिले किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों का दायरा किस प्रकार बढ़ता गया।
4: जी हां श्रोताओं, 6 सितंबर 1993 से 5 अक्टूबर 1996 तक अपने कार्यक्रमों की सेवा आपको हम देते रहे, शाम 5 बजे से रात्रि के 11 बजे तक।
3: तत्पश्चात 6 अक्टूबर 1996 से प्रसारण की अवधि बढ़ाकर दिन के 3 बजे से रात्रि के 9:16 तक किया गया, दिनांक 30 जून 2000 तक।
4: और इस पूरी अवधि में दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक जोड़ा गया मुंबई से प्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों में मनोरंजन की एक मुख्य सेवा विविध भारती को।

0: श्रोताओं, अब यह बता देना लाजमी हो जाता है कि 1 जुलाई 2000 से ही हमने आपको सुबह की सेवा देना प्रारंभ किया। उस समय सेवाएं दी जाती थी सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक, जिसमें जोड़ा गया श्री रामचरितमानस गान के दैनिक कार्यक्रमों को, और यह कार्यक्रम हमारे श्रोताओं की एक खास पसंद साबित हुआ। तदुपरांत 14 मार्च 2012 से सुबह की सेवा थोड़ी और बढ़ा दी गई 9:15 बजे तक।
1: इस प्रकार 15 अगस्त 2014 को एक ऐतिहासिक परिवर्तन प्रसारण में हुआ। सुबह की सेवा प्रातः के 6 बजे से रात्रि के 11:10 तक कर दी गई। जी हां श्रोताओं, जोड़ दिया गया भारत के लोकप्रिय मनोरंजन सेवा विविध भारती को आकाशवाणी मुंबई के साथ।
0: अब हम यह स्पष्ट कर दें, विविध भारती की अनुप्रसारण सेवा 30 जून 2000 के बाद 1 मार्च 2012 से 14 अगस्त 2014 तक सुबह के 11:05 से शाम के 5:30 तक हमने आपको दी।
2: श्रोता मित्रों, विविध भारती के कार्यक्रम में पुनः फेरबदल किया गया और इसकी अवधि बढ़ाकर दिन के 10:10 से कर दी गई शाम 5:30 बजे तक।
0: यानी कुल मिलाकर अब आकाशवाणी डाल्टनगंज आपको सेवाएं देती है पूरे 17 घंटे 10 मिनट की। एक कठिनतर सेवा अपने श्रोता दोस्तों की दोस्ती पर एक अनूठा पैगाम।

0: श्रोताओं,
1: हमारे आपके बीच जो क्षण गुजरे, जो पल बीत गए, वो आज 6 सितंबर की रात समयातीत होकर उभर गए। ये क्षण हमारी आत्मा का उच्छ्वास है, एक सुखद स्मृतियां हैं, जिनमें कार्यक्रमों के विस्मयकारी तथ्य भी उभर कर सामने आ गए।
2: कार्यक्रमों में आपका सहयोग अर्थात रेडियो सेट के साथ हमेशा बने रहना उन तमाम यादों के फूलों की महक को आज की रात एक बार फिर ताजा कर दी है। आपका साथ बने रहना ही हमारी सफलता है।

श्रोताओं, हम अपनी जिंदगी में अपने दामन से हमेशा बांधे रखेंगे आपको। ऐसे भी एक बार जो अपने दिल में आते हैं, वो चाहकर भी अपने दिल से जुड़ा नहीं हो पाते। अपने कार्यक्रमों के साथ वही चाहत का सिलसिला आपका और हमारा है, जो हमें कभी दूर नहीं करेगा।

0: श्रोताओं, हम फिर लेकर आएंगे कार्यक्रमों की नई सौगात।
1: तब फिर शुरू होगा बातों का सिलसिला,
0: मगर आज का यह स्वर्णिम यात्रा का सफर बस यहीं तक।
1: श्रोताओं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें सूचित करें इस पते पर। केंद्र निदेशक आकाशवाणी डाल्टनगंज, पिन संख्या 822101। फिलहाल आप दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति।
0: और हाँ, कार्यक्रम स्वर्णिम यात्रा के इस दौर में हम सफर बने रहने के लिए आपको
1: शुक्रिया,
0: शुभ नमन, नमस्कार।
2: आकाशवाणी डाल्टनगंज के वर्तमान कार्यक्रम प्रमुख प्रशांत गौरव।
3: आकाशवाणी डाल्टनगंज के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्षों से आकाशवाणी डाल्टनगंज ने अपनी विश्वसनीय आवाज के माध्यम से लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया है। ये यात्रा हमारे श्रोताओं के स्नेह, विश्वास और निरंतर सहयोग के बिना संभव नहीं थी। इस विशेष अवसर पर हम अपने पूरे श्रोता परिवार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह संकल्प दोहराते हैं कि भविष्य में भी आकाशवाणी डाल्टनगंज विश्वसनीय, सार्थक और रोचक प्रसारण के माध्यम से समाज की सेवा करता रहेगा। आपका प्रेम, विश्वास और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आकाशवाणी डाल्टनगंज परिवार की ओर से स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहें आकाशवाणी डाल्टनगंज के साथ। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस पर आधारित विशेष कार्यक्रम स्वर्णिम यात्रा। वाचन स्वर संतोष कुमार एवं प्रतिमा वर्मा। कार्यक्रम प्रस्तुत करता थे प्रशांत गौरव।
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी डाल्टनगंज के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी स्वर्णिम यात्रा 2026। संकलन एवं वाचन था संतोष कुमार और प्रतिमा वर्मा का, प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं कुछ अब फिल्मी गीत।

थानेदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम पे ही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।